ठीक 10 सेकंड हुए हैं। साथियों लीजिए, प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे ध्रुपद गायन, प्रस्तुत किया है नवल किशोर मलिक ने। आपने प्रस्तुत किया है राग रामकली।

Yeah.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वररंजनी में अभी आप सुन रहे थे नवल किशोर मलिक का गाया ध्रुपद, राग थी रामकली। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling will be held at 11 polling stations of Magrahat Pashchim Assembly constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly constituency in the state. More from our correspondent.
3: The Election Commission of India has ordered re-polling in 11 booths in Magrahat Pashchim and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituencies in South 24 Parganas district of West Bengal. Commission has taken the decision after analyzing the reports of returning officers and observers. The re-polling will start on 7 a.m. in the morning and end on 6 p.m. in the evening. Kollan Laha reporting from Kolkata.
2: Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG lead at refineries and we increased our domestic production by 60%. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, which came into force 4 years ago, has created a transformational opportunity for Indian farmers, MSMEs and other businesses. In a social media post, Mr. Goyal noted that bilateral merchandise ties between India and UAE have grown strongly, crossing $100 billion, with services trade also rising steadily and opening new markets and greater value. The minister also highlighted that expansion across key sectors like gems and jewellery, engineering goods, electronics and agriculture is delivering tangible gains. He underlined that the foreign direct investment inflows from the UAE and India's overseas investments further reflect the deepening economic linkages of the two nations. Field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. U.S. President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 7 wickets at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. Today, Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at M.H. Chidambaram Stadium, Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हनुमान अस्तक। और चलिए अब आपको बता देते हैं कौन से कार्यक्रम जिन्हें की आज आप सुन पाएंगे हमारी सभा में। 6:40 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम चिंतन, जिसमें कि आज आप सुनेंगे सुकरात का दर्शन। 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस, जिसमें कि आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 43। 6:55 का समय रहेगा संस्कृत में समाचारों का। 7:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन सुकरात का दर्शन।
1: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता सुकरात का दर्शन। आलेख डॉक्टर विजयानंद का और वाचन स्वर है नीलम मलकानिया का।
2: दार्शनिक सुकरात एथेंस यूनान में 470-399 ईसा पूर्व सोफ्रोनिक्स और आइफाइना रीति के घर जन्मे एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें पाश्चात्य दर्शन के संस्थापक और पहले नैतिक दार्शनिकों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए उन्हें मुख्य रूप से शास्त्रीय लेखकों, विशेष रूप से उनके छात्रों और क्सेनोफोन के मरणोपरांत वृत्तांतों के माध्यम से जाना जाता है। उनके प्रिय शिष्य प्लेटो द्वारा रचित ये वृत्तांत संवाद के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें सुकरात और उनके वार्ताकार प्रश्न और उत्तर की शैली में किसी विषय की समीक्षा करते हैं। उन्होंने सुकरातीय संवाद साहित्यिक शैली को जन्म दिया। सुकरात ने अपनी पूछताछ के तरीके और अज्ञानता को ही सच्चा ज्ञान कहा। उनके महत्वपूर्ण विचारों और दर्शनों में प्रथम है आत्मज्ञान। सुकरात का मानना था

0: कि सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान से शुरू होता है। उन्होंने लोगों को अपने आप को जानो के लिए प्रेरित किया, ताकि आप अपने विचारों, मूल्यों, जिज्ञासाओं और कमियों को समझ सकें। दूसरा पूछताछ का तरीका। सुकरात जाल नामक एक अनूठी पूछताछ पद्धति के लिए प्रसिद्ध थे। वे लोगों से सरल प्रश्न पूछते थे और धीरे धीरे अनुवर्ती सवालों के माध्यम से उनके तर्क में विरोधाभास उजागर करते थे। इस प्रक्रिया से व्यक्ति अपनी गलत धारणाओं को पहचान सकता था और नए ज्ञान के लिए खुला हो सकता था। उनका तीसरा तथ्य था परिभाषाओं का महत्व। सुकरात का मानना था कि स्पष्ट परिभाषाएं सार्थक चर्चा के लिए आवश्यक हैं। पुण्य और सदाचार सुकरात का चौथा महत्वपूर्ण चिंतन है। पुण्य और सदाचार सच्चा सुख, ज्ञान और सदाचरण से प्राप्त होता है। उनका मानना था कि सही काम करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है और सही काम करने से ही व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। सुकरात ने लोगों को हर चीज पर सवाल उठाने और आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने परंपरा और अधिकार को सत्य मानने की बजाय स्वतंत्र रूप से सोचने पर बल दिया। राजनीतिक दर्शन पर उनका मानना था कि अच्छे शासकों को ज्ञानी और नैतिक रूप से सक्षम होना चाहिए। उन्होंने ऐसे शासकों का समर्थन किया जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। राजा अगर ज्ञानी, पराक्रमी, ईमानदार और सत्यनिष्ठ नहीं होगा तो प्रजा मनमानी करती रहेगी। वो एक ही ईश्वर को मानते थे। उन्होंने मौलिक शिक्षा, आचार, व्यवहार पर ज्यादा जोर दिया। सोचने, सीखने, तर्क शक्ति के प्रति सभी को चिंतन करना चाहिए, ये उनका मूल विचार था। सुकरात का मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान पाना नहीं, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा का सिद्धांत है कि वो दूसरे को दी जाती है, परंतु जब तक उसे सच्चे मन से एकाग्र होकर ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा हवा में तिनके की भांति उड़ती रहेगी।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुकरात का दर्शन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे बालकांड भाग 43।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहाँ मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिव जी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिव जी ने उन्हें अपनी बाई ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज आपने सुना बालकांड भाग 43। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालस्य 15 मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। मगरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रस्य 11 केन्द्रेषु तथा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रस्य 4 अद्य पुनः मतदानं भविष्यति। एतेषु केन्द्रेषु प्रातः 7 आरभ्य सायं 6 यावत् मतदानं भविष्यति। आयोगेनोक्तं यत् एतेषु मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानस्य निर्णयः पर्यवेक्षकाणां निर्वाचनाधिकारिणाञ्च प्रतिवेदनमालक्ष्य प्रदत्तः। एतेषु मतदानकेन्द्रेषु बुधवासरे विधानसभानिर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय मतदानं जातमासीत्। प्रतिवेदनानामाधारे आयोगेन एतेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्वाचनं निरस्तीकृतमासीत्। आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ेषु अस्य वर्षस्य जनगणनायाः प्रथमचरणस्य अन्तर्गतम् अद्यारभ्य गृहसूचीक्रमः, गृहगणना च प्रारब्धा अस्ति। गृहमन्त्रालयेनोक्तं यत् इदं कार्यम्

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के

0: प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The Election Commission has ordered for repolling in 15 polling stations of West Bengal today. Repolling is being held at 11 polling stations of Mogarhat Paschim Assembly Constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly Constituency in the state. Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders. Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts

संगीतिका में आइए अब सुनते हैं कबीर दास का लिखा भजन सोजन हमको भावे। आवाज है ब्रजेश मिश्र की।

संगीतिका कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनिए मीराबाई का लिखा ये भजन। स्वर है बृजेश मिश्र का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना ब्रजेश मिश्र के गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30 और लगभग 50 सेकेंड होने को हैं, और ये समय है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जी हाँ, सुबह का वक्त हमारे लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि कहते हैं कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन, यानी शुरुआत अच्छी हो

दोस्तों कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियां भी बड़ी अजीब होती हैं, दिल सीने से निकलकर आंखों में धड़कता है। जी हाँ, इंतज़ार का आलम वही समझ सकता है जिसे किसी का इंतज़ार बेसब्री से हो। एक रात वो गया था जहां बात रोक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रोक के।

श्रोताओं, दो इंसानों का बेगरज लगाव एक अजीम रिश्ते की बुनियाद होता है जिसे दोस्ती कहते हैं। दोस्तों का वक्त पर काम आना, उसे अपना राजदार बनाना और उसकी अच्छाइयों पर भरोसा रखना दोस्ती को और मजबूत कर देता है। तो आइए सुनते हैं दोस्ती पर ये गीत।

दोस्तों कहते हैं कि वादा करो तो उसे निभाओ भी, क्योंकि वादा करना तो आसान होता है पर उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। कहते हैं आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया।

दोस्तों कहते हैं कि सच्चा प्यार वो है जिसमें आप दूसरों के गम को अपना गम समझते हैं, किसी की परेशानी को खुद पर ले लेते हैं। अपनी मुस्कान देकर किसी के आंसू ले लेना ही सच्चे मायनों में प्यार होता है।

0: श्रोताओं, ये थी गीतू भरी गुड मॉर्निंग आपके दोस्त हो सिद्धार्थ सिंह के साथ। उम्मीद है कि आपको गीतू भरी कहानी पसंद आई होगी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी। और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर-17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।

0: ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपी इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटे ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए KL राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC Under-17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। रीपोलिंग बिगिंस इन 15 पोलिंग स्टेशंस ऑफ 2 असेंबली कंस्टिट्युएंसीज इन वेस्ट बंगाल। Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under-17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
6: Among these, 11 are in Poshchim Mograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallo Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the Trinamool Congress's petition, stating that the court cannot interfere in the Election Commission's decision on recruitment of counting personnel. In response, the party rushed to the Supreme Court. Despite today being a holiday, the Apex Court has constituted this special bench to ensure the matter is heard without delay. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
5: Field operations for house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 have commenced from yesterday in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This follows the completion of the notified 15-day self-enumeration period in these states.

0: GST revenue hits record rupees 2.43 lakh crore in April, writes The Hindu. Lockdown in strong room areas after TMC-BJP clash, writes The Times of India. The Hindustan Times under the caption Labour Day, heat awareness, the cost of labour in a simmering city, carries a picture of workers creating murals depicting problems they face while working in the heat. The Asian Age mentions, Trump says Iran dying to make a deal rules out fresh airstrikes. The Economic Times on its editorial page talks of a cobot experiment in Japan. Travelers with poor experience of airport baggage handling will be particularly interested in Japan Airlines' experiment with giving jobs to robot at Tokyo's Haneda Airport. Trials beginning this month will use Unitree's humanoid robots to move baggage, cargo and equipment across the airport. Depending on how they perform, their role could be widened to other ground handling services like cleaning aircraft cabins. If the experiment is successful, it will offer a solution to Japan's aging population and a surge in tourism. And finally, the Financial Express takes note, placement season seeing higher number of new age companies as traditional tech firms scale down recruitment. Startups cushion IT hiring slow down. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Repolling begins in 15 polling stations of two assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under-17 Women's Asian Cup after 21 years in China. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरी बंगाल में दो असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। आईएमडी ने शिमाल मशरकी खित्ते और जनूबी जजीरा नुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की तजवीज मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। और फुटबॉल में भारतीय खवातीन की टीम चीन में 21 साल बाद 17 साल तक की उम्र के खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए तैयार है। खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने मगरी बंगाल के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए हैं। रियासत में मगराहट पश्चिम असेंबली हलके के 11 पोलिंग स्टेशनों और डायमंड हार्बर असेंबली हलके के 4 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। चुनाव कमीशन ने कहा है कि यह फैसला मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और मुशाहिदीन की जानिब से मौसूल रिपोर्टों की बुनियाद पर किया गया है। मगरी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में इन पोलिंग स्टेशनों पर बुध के रोज वोट डाले गए थे। रिपोर्टों की बुनियाद पर कमीशन ने इन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाले चुनाव का कल अदम करार दिया। कमीशन ने इस सिलसिले में मगरी बंगाल के आला चुनाव अफसर को तहरीर भेजी है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मगरी बंगाल के दो हलकों के 15 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया। चुनाव कमीशन ने बेजाबतगियों की इतलात मिलने के बाद इन मराकज पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए थे। इस दौरान एक और वाकये में सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता हाईकोर्ट के खिलाफ अपील की फौरी सुनवाई के लिए खसूसी बेंच कायम की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने गिनती के मराकज पर सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के जरिए गिनती कराए जाने का हुक्म दिया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच आज सुबह 10:30 पर इस मामले की सुनवाई करेगी।

0: वोटों की गिनती का अमल पीर को किया जाएगा। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी। जुमेरात को कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की अर्जदाश्त को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि अदालत गिनती के अमल की तकरूरी के बारे में इंतखाबी कमीशन के फैसले में दखलअंदाजी नहीं कर सकती। इसके जवाब में पार्टी ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कल छुट्टी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की बिला ताखीर सुनवाई को यकीनी बनाने के लिए एक खसूसी बेंच तश्कील दी। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल से मकानात की फहरिस्तबंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इन रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों में अजखुद शुमारी के अमल के मुकर्रर 15 दिन मुकम्मल होने के बाद ये काम शुरू हुआ। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: उमूर दाखिला की वजारत के मुताबिक ये अमल इस माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान तरबियत याफ्ता अमला घर घर जाकर आदाद शुमार इकट्ठा करेगा। मरदमशुमारी 2027 के तहत अजखुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके बाद 16 मई से 14 जून के और इन रियासतों और मरकज के दरमियान के जेर इंतजाम इलाकों में घर घर जाकर मकानात की फहरिस्तबंदी का अमल अंजाम दिया जाएगा। मरदमशुमारी 2027 के लिए अपनाए गए डिजिटल तरीके के हिस्से के तौर पर अब तक तकरीबन 82 लाख घरों ने सरकारी पोर्टल se.census.gov.in के जरिए खुद शुमारी की सहूलत से इस्तेफादा किया है। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने खाम तेल के वसीले की बुनियाद को 41 मुल्कों तक तौसी दे दी है। पहले इन मुल्कों की तादाद 27 थी। ये तौसी तवानाई के आलमी बहरान के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। जुनूबी गुजरात में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ने बहरान से निमटने में बुनियादी किरदार अदा किया है। घरेलू पैदावार में इजाफा करने के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि रिफाइनरीज में एलपीजी की ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और हमने घरेलू पैदावार में 60% तक इजाफा कर दिया है। ये पैदावार पहले 36,000 मीट्रिक टन रोजाना थी, जबकि अब यह पैदावार 54,000 मीट्रिक टन रोजाना हो गई है। जनाब पुरी ने आलमी कीमतों में इजाफे से अपने सारफीन को महफूज रखने के लिए किए गए इकदाम का भी जिक्र किया।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमरीका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाज़े को ख़त्म करने की ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुज़ाकरात पर मबनी एक हल्के मंजरनामे पर शक का इजहार किया है और मज़ीद कशीदगी के ख़तरे का इंतबाह दिया है। ईरान ने अपनी असर नौ पेशकश सालिसों के जरिए दी थी, जिसकी तस्दीक सरकारी मीडिया ने की। ट्रंप ने एतराफ़ किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त की है, अलबत्ता उन्होंने कहा कि वो पेश की गई शराइत से मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जो वो कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने ईरान की क़यादत को बेरब्त करार दिया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार गैरएतमादी का इशारा मिल रहा है। फारस खबर एजेंसी समेत ईरान के सरकारी राबते वाले मीडिया ने बताया है कि मुल्क की क़यादत अंदरूनी गैर इस्तेहकाम की कयास आराइयों से निमटने की निगरानी में पूरी तरह मसरूफ है। यह सिफारती तातुल लबनान में तशद्दुद में इजाफा हो जाने के दौरान पेश आया है। लबनान में इसराइल के हमलों में एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इत्तला है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिससे अमरीका की सालिसी वाले पिछले महीने के जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इन हमलों में जनूबी शहर सूर में शहरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जबकि कई सरहदी कस्बों में लोगों से इलाके को खाली करने के अहकाम जारी किए गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं, जिनमें एक ड्रोन हमला भी शामिल है, जिसकी वजह से शिमाली इलाके में इसराइली फौजी जख्मी हो गए। लबनान में इस सरहदी जंग में अभी तक 2,000 से ज्यादा लोग हलाक और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो

चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने असम, मेघालय, सिक्किम और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने अलबत्ता साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक और तमिलनाडु में आज गर्म मरतूब मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहेगा और अगले तीन दिन में गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर इस दौरान किसानों से कहा गया है कि वो खेतों में अपना कामकाज मुअत्तल रखें। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज से जम्मू और कश्मीर वादी के दरमियान मुसलसल रेल खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी हैं। सुबह 6:20 पर यह रेलगाड़ी जम्मू से रवाना हुई जो इस खित्ते में रेल राब्तों को मजीद बेहतर करने की समत एक अहम कदम है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस रेल खिदमात का जुमेरात को इफ्तिताह किया था। एटमी तवानाई के इंजबाती बोर्ड AERB ने कुडमकुलम न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्ट के यूनिट 5 और 6 में अहम आलात नस्ब किए जाने का इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस इजाजत के तहत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अख्तियार हासिल हो गया है कि वो रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर्स और कूलेंट पंपों के प्लांट्स पर अहम आलात नस्ब कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकरीबन 3 साल पहले 2000 रुपए के करेंसी नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था जिनमें से 98.47% नोट वापस लिए जा चुके हैं। RBI ने करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक अपने कामकाज के हिस्से के तौर पर 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस रकम में बहुत तेजी से कमी आई है और ये 30 अप्रैल 2026 को 5,451 करोड़ रुपये थी। 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सहूलत RBI के 19 दफ्तरों में उसी वक्त से दस्तयाब है जब से इन नोटों की वापसी का ऐलान किया गया था। पंचायती राज की वजारत आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल से मुतालिक एक वर्कशॉप का एहतमाम करेगी। हर एक तक रसाई से मुतालिक इस वर्कशॉप में आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम के विजन, मकासिद और अमलावरी के फ्रेमवर्क के बारे में शराकतदारों को रोशनास कराया जाएगा। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज की वजारत की पहल है। पंचायती राज की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज अपने कलीदी खुतबे में प्रोग्राम के विजन का खाका पेश करेंगे। इस मौके पर आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल के कामकाज का बराह रास्त मुजाहरा पेश किया जाएगा। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुतहदा अरब अमारात जामे इक्तसादी शराकतदारी माहदे CEPA से जो 4 साल पहले अमल में आया था, भारतीय किसानों, MSMEs और दीगर तरह के कारोबार को यकसर तब्दीली लाने वाले मौके हासिल हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और मुतहदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात में काफ़ी मजबूती आई है और यह तजारत 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई है। बैडमिंटन में आज डेनमार्क के हॉर्सेंस शहर में थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल्स में चीनी ताइपाई को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन ने बेहतरीन शुरुआत की और एक सनसनीखेज मुकाबले में आलमी नंबर 6 खिलाड़ी को 18-21, 22-20, 21-17 से शिकस्त दी, जबकि सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी ने एक सख्त मुकाबले में चियोसियांग शी और वैंग ची लिन की जोड़ी को 23-21, 19-21, 21-12 से हराकर सबकत हासिल की। फुटबॉल में भारत 2005 के बाद से अब तक 17 साल की उम्र तक के AFC खवातीन एशियाई कप में अपनी पहली कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। आज भारतीय टीम का मुकाबला चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 5 बजे शुरू होगा। टेनिस में मैड्रिड ओपन में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में 9वीं सीड की मेरा एंड्रीवा का मुकाबला यूक्रेन की मार्टा क्योत्सक से होगा। 9वीं सीड की मेरा ने स्पेन की राजधानी में जुमेरात के रोज़ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को शिकस्त दी थी, जबकि मार्टा कोस्तेक मैड्रिड में जारी WTA 1000 मुकाबले में पहली मरतबा फाइनल में पहुंची हैं।
मर्दों के सिंगल्स में आला दर्जे के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में

0: जगह बना ली है। ये उनकी 22वीं जीत थी। बोत्सवाना के शहर गैबरोन में आज से शुरू होने वाले आलमी एथलेटिक्स रिलेज 2026 में 21 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय टीम 5 मुकाबलों में हिस्सा लेगी। ये मुकाबले 3 मई को इख्तिताम पजीर होंगे। भारतीय टीम 6 में से 5 मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल की 2 असेंबली सीटों के 15 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा पोलिंग की खबर को शहसुर्खी बनाया है। खबरों के मुताबिक ईवीएम से छेड़छाड़ और तशद्दुद की शिकायत के पेश नज़र इंतखाबी कमीशन ने यह फैसला लिया है। रोजामा इनकलाब और प्रताप ने राजधानी दिल्ली में डिजिटल मरदमशुमारी के आगाज़ की खबर को अहमियत दी है। इस बार इस अमल में RWA को भी अहलकारों की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक भारत और तंजानिया के दरमियान माली साल 2025-26 में दोतरफा तजारत $9 बिलियन से तजावुज़ कर गई। भारत के चीफ जस्टिस सूर्याकांत ने सिक्किम को मुल्क की पहली पेपरलेस रियासती अदालत करार दिया। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खजाने के वजीर मुल्कत पंकज चौधरी ने 70वें इन्फोर्समेंट डे की तकरीब में ईडी की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि माली जराइम के खिलाफ ईडी मजबूत ढाल की तरह काम कर रहा है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल में 2 असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। IMD ने शिमाल मशरकी खत्ते और जनूबी जजीरा नुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की तजवीज मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। और बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा भार्गव। आप एक होम्योपैथ हैं और साथ ही साथ आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल जो डिजीजेस होती हैं, यानी जीवन शैली जनित जो रोग होते हैं, उनका होम्योपैथी से कैसे उपचार किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
4: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ।
3: हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हमारे जो श्रोता है जिनको इंतजार रहता है कि हम तरह तरह की विषयों पर उनको जानकारी देते हैं, तो आज ये एक बहुत जरूरी विषय है। और आजकल जीवन शैली जनित जो रोग हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस किन किन को कहा जाता है।
4: जी, तो अगर हम जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें तो नाम से ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लाइफ प्लस स्टाइल, जो हमारे जीने का, जैसे हम रोज की जो हमारा रूटीन है उसके ऊपर ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इसके ऊपर निर्भर करती हैं। यानी कि जैसे आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हुआ, कि ज्यादा आपका काम जो है वो बैठने का हुआ, ज्यादा आप चल फिर नहीं रहे, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज नहीं हो रही, या फिर जैसे आप रेगुलर वॉक पे नहीं जा रहे, तो उसका एक कारण ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये कॉज होती हैं। दूसरा एक कारण है कि डाइट इसका, यानी कि जो आपका खान पान है वो अगर आप नियमित रूप से नहीं खाते, या अगर आप जैसे बाहर ज्यादा जंक खाते हैं, ज्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, उससे भी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। तीसरा जो कारण है, बेसिकली सबसे ज्यादा एक और इम्पॉर्टेंट कारण है, वो है स्लीप। यानी कि आपकी अगर नींद भी, अगर आप टाइम से नहीं सोते या आपकी नींद जैसे साउंड नहीं है, तो भी उसके कारण भी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। एंड आखिर में जो सबसे बड़ा कारण आजकल देखा गया है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस

0: आजकल के ज़माने में आप देखते हैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, बूढ़ा है, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस एक रेगुलर पार्ट है। तो उसके कारण भी ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं ये कॉज होती हैं। तो अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बारे में बात करें तो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, या जैसे ये हार्ट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो हार्ट की ब्लॉकेड होती हैं, या डायबिटीज़ है, या ओबेसिटी यानी कि मोटापा, या PCOD, हाइपोथायरायडिज्म, ये सारी जो डिजीज़ेस हैं जो हम कहते हैं कि एक दूसरे से फैलती नहीं हैं बट हमारे लाइफस्टाइल के कारण जो क्रिएट होती हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहलाती हैं।
1: और जिन जिन बीमारियों का आप नाम ले रही हैं डॉक्टर पूजा, वो बीमारियां आजकल बहुत कॉमन है और ये बीमारियां धीरे धीरे हम देखते हैं कि बढ़ती भी जा रही हैं कम होने की जगह। और इसका कारण मैं आपसे जानना चाह रही थी, लेकिन आपने काफी कुछ विस्तार से पहले ही बता दिया कि क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही बहुत बिगड़ती जा रही है, उसका कारण बहुत सारे हैं, उन कारणों पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये इससे पहले जानना चाहूंगी कि बच्चों में भी लाइफस्टाइल डिजीजेस अब आ रही हैं, तो इसका कारण यही है कि लाइफस्टाइल उनका बिगड़ रहा है, उनका सोना खाना पीना, या कोई और कारण भी हो सकता है?
0: इसके पीछे आप खुद भी, जैसे हम बहुत सारे लोग, हम ये नोटिस करते हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, सारा दिन जैसे कुछ थोड़ा सा उन्होंने स्कूल से आए, पढ़ाई कर ली, देन फिर वो खुली हवा में जाके अपने दोस्तों के साथ खेलते थे।
1: जी
0: बट अब क्या है, अब वो सारा दिन यही गैजेट्स हैं, चाहे लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ, तो उनका जैसे बाहर घूमना फिरना, खुली हवा में जाना, ये बिल्कुल बंद हो गया है। और अगर हम जैसे बड़ों की बात करें, जैसे आप अगर नॉर्मल एडल्ट्स की बात करो, तो आगे क्या होता था, पुरानी अगर हम जीवन शैली देखें तो हम एक दूसरे के साथ अपना मन खोलते थे, जैसे चाहे रिश्तेदार हो चाहे हमारे दोस्त हो, पर अब क्या है, अब हम सब अपनी ही एक जीवन में सिमटे हुए हैं।
1: जी
0: एक मतलब आप देखो कि टाइमलाइन कितनी होती है, कि ये अचीव करना है, इतना कंपटीशन है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर हम जैसे अपने दोस्तों के साथ अपना दिल खोल लें तो सर्जन के पास जाके हमें अपना दिल
1: खुलवाने
0: खुलवाने
1: की
0: की
1: जरूरत।
0: जरूरत
1: जी
0: ना
1: बिल्कुल
0: पड़े।
1: सही आपने बोला। आजकल जैसा आप बता रही हैं, मैं और मेरा मोबाइल, दुनिया वहां पे सिमट के रह गई है और लोग डिजिटल या वर्चुअल वर्ल्ड में ही अब रह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि मिलजुल नहीं रहे हैं, सोशल नहीं हो रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, और एक ही घर में रहते हुए माँ बाप और बच्चे आपस में नहीं घुल मिलकर बात कर रहे हैं, अपने मन की बात नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसी कारण से शायद जो आपने कहा इसका एक रीजन स्ट्रेस भी है, तो वो स्ट्रेस एंग्जाइटी जो बढ़ रही है वो भी इसका कारण बन रही है। मुझे ये बताइए कि ये बढ़ रही है और बहुत व्याप्त है लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये तो हम मान गए, क्या एक बार ये हो जाए तो इसको रिवर्स किया जा सकता है? क्या इंसान ठीक हो सकता है?
0: जी बिल्कुल, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन के प्रति आपको वो सजग होना है कि आपको देखना है आप कैसा आपका लाइफस्टाइल है। थोड़ा सा वक्त आपको उसमें अपना, जैसे थोड़ा चलना फिरना, थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज, योगा आजकल भारत में इतना ज़्यादा प्रचलित है,
1: जी जी
0: तो योगा के लिए मेडिटेशन हुआ, ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान रखें, और उसके साथ साथ अगर हम जैसे अपना खाना पीना वो भी हम नियमित रूप से जैसे खाएं, और एक ये है कि बहुत ज़्यादा जंक या तला हुआ ये चीज़ें अगर हम नहीं खाते, अगर हम अपनी नींद ठीक रखें, तो हम देखेंगे कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये इतना ज़्यादा जैसे आगे बढ़ेंगी नहीं, तो ये रिवर्सिबल है। तो इसका मेजर जो आप क्या कर सकते हैं वो यही है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो जैसे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है इसको हम टैकल कर
1: तो
0: सकते हैं।
1: इससे हम ये समझें क्या डॉक्टर पूजा कि अगर किसी को लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है और वो मेडिकेशन पे है, तो अगर वो अपनी लाइफस्टाइल सुधार ले तो मेडिकेशंस बंद हो सकते हैं?
0: जी जी
1: अच्छा
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ के क्रिएशन में, उसके जैसे पैदा होने में यही एक बड़ा कारण है। तो अगर हम उसको सही कर लें तो धीरे धीरे, जैसे जैसे आप मान लो डायबिटीज के केस में लोग कि लोग इंसुलिन पे आ जाते हैं, तो अगर वो अपना जैसे लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक करें तो धीरे धीरे इंसुलिन की डोज जैसे कम होते होते बिल्कुल बंद भी हो जाती है,
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: रिवर्सिबल है।
1: जी तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने लोग सुन रहे हैं, बहुत जरूरी ये जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है और लाइफस्टाइल डिजीजेस को जीता जा सकता है। मुझे ये बताइए, आप एक होम्योपैथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप बताएंगे कि पोषण के दृष्टि से अगर हम बात करें, लेकिन पहले मैं यही जानना चाहूंगी क्या होम्योपैथी में इसकी दवाई है लाइफस्टाइल डिजीजेस की, अगर है तो किस तरह से ली जाती है?
0: जी, अगर मैं जैसे होम्योपैथी की बात करती हूँ, होम्योपैथी में हम जो है हम बीमारी को ठीक नहीं करते, हम इंसान को ठीक करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम जैसे होम्योपैथ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा शुरू से लेके आखिर तक हमसे बहुत सारे सवाल पूछता है। हमें लगता है कि अरे ये मतलब बिल्कुल कोई इन सवालों का इतना ज्यादा कि आपको क्या अच्छा लगता है, कैसे गर्मी लगती है, बट इन सब का एक कारण है, हम इंसान को अलग से जानते हैं कि क्या ऐसी चीज उस इंसान में है जो दूसरे इंसान से उसको सेपरेट करती है।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए होम्योपैथी जो है वो जड़ से वो चीज, मान लो अगर आप डायबिटीज लेते हो, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई स्ट्रेस है जिसके कारण ये डायबिटीज डेवलप हुई, या जैसे कई बार आप डिप्रेशन, एक वो भी आजकल बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है।

0: के शिकार हो रहे हैं, तो उसमें भी एज अ होम्योपैथ मैं उस जैसे उस पेशेंट की पूरी प्रॉपर केस टेकिंग लेती हूँ, ये जानती हूँ कि क्या कारण रहा होगा कि जिसके कारण उनको ये डायबिटीज या जैसे ये डिप्रेशन की दिक्कत हुई, तो वो पूरी एक प्रॉपर उस पेशेंट की डिटेल्ड केस हिस्ट्री ली जाती है, उससे जाना जाता है कि क्या कोई ऐसा उसको स्ट्रेस था, क्या उसका खान पान बिगड़ा, या क्या चीज है जिसके कारण ये डायबिटीज या ये जैसे और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये डेवलप हुई।
1: अच्छा, तो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद आप उनको डोजेस देते हैं।
0: जी
1: तो ये बताइए कि ये डोज जो वो चलती है उनकी दवाइयाँ, ये कितनी लंबी चलती हैं, कितने समय में आराम मिल जाता है, और एक बार शुरू होने के बाद क्या ये बंद हो जाती हैं या इनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है?
0: अगर आप दवाई के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करते हो, अगर आप प्रॉपर जैसे अपना खान पान सुधारते हो, या जैसे आप थोड़ा सा रेगुलर वॉक करते हो, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया जिससे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, एंड साथ में आप रेगुलरली जब होम्योपैथी दवाई लेते हो तो आप देखते हो कि बहुत जल्दी आपको ये आराम लगता है। अगर आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो आपके नॉर्मल आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर की जो भी आपकी दिक्कत है वो आपकी नॉर्मल आती है, तो जैसे अगर ये आप वो कह सकते हो कि जो दवाई है मेडिसिन और जो आपका लाइफस्टाइल है उन दोनों का मिलाप करके हम जैसे ये जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है दवाई। अगर आप जैसे होम्योपैथी ने क्या करना है, आपके अंदर जो एक वाइटल फोर्स होती है, जो आपके अंदर एक अंदर आपकी आंतरिक शक्ति होती है, उसको जगाना है। तो जब आप उसको वो जगा लेते हो तो उसमें इतनी वो आ जाता है अंदर पावर कि वो खुद ही जो आपकी डिजीजेस है उसको क्योर करती है।
1: अच्छा, ये बताइए, अप्रैल को पोषण पखवाड़ा के रूप में हम लोग मनाते हैं, और उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बताएं कि न्यूट्रिशन की बहुत वैल्यू है, अगर आप सही खान पान रखते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, और यही आप कह रही हैं, और आप एक
0: जी
1: न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो किस तरह का पोषण होना चाहिए, किसको आप सही पोषण मानती हैं?
0: देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम जैसे न्यूट्रिशन की बात करें या पोषण की बात करें, उसमें जो अलग अलग जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुए, विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, प्रोटीन्स हुए, फैट्स हुए, सबका अपना अपना एक कार्य है। तो आपको वो सब एक बैलेंस डाइट के हिसाब से लेना है कि आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन मिनरल चाहिए। तो वो आपके बॉडी के वेट के हिसाब से, बॉडी के आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से ये नापा जाता है।
1: तो ये बैलेंस डाइट आपने बताई, लेकिन जैसे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ बदलाव होता है उनके खान पान में? आप कुछ ऐसा डाइट भी प्रिस्क्राइब करते हैं जब आप होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं जिसको लाइफस्टाइल डिजीजेस हो उनको?
0: जी, जैसे इसमें अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी में हमें क्या करना चाहिए कि हमें जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो उसकी क्वांटिटी है वो हमें कम करनी है, और जो प्रोटीन है जैसे अंडा हुआ, दूध हुआ या पनीर हुआ, ऐसी चीजें जिसमें सोयाबीन हुआ जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमें ज्यादा खानी है। जिससे क्या है कि अगर ये जैसे हम जो कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे तो फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैट जो डिपोजिशन होता है वो हमारी बॉडी में नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके और प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा लेना है।
1: जी बिल्कुल, मैं अब यही जानना चाह रही थी कि ओबेसिटी भी आपने बताया लाइफस्टाइल डिजीज है, और ओबेसिटी से भी बहुत सारी लाइफस्टाइल और बीमारियों हमें मिल जाती हैं, तो इसको कम करना बहुत जरूरी है, और इसको करने के लिए एक बैलेंस डाइट, या आपने कहा प्रोटीन को बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट को कम करना, ये जरूरी है। लेकिन क्या कोई दवाई भी ऐसी है होम्योपैथी में जो मोटापा कम कर सकती है?
0: जी, होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयां हैं। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि जब किसी को डायबिटीज होता है तो वो जामुन खाने को बोलते हैं, तो ऐसे ही होम्योपैथी में एक मेडिसिन है साइजीजियम जो जामुन से बनती है। ऐसी और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लाइकोपोडियम हुई या नेट्रमेयर हुई, बट ये क्या है कि ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो हमारे पास 10 पेशेंट आए तो 10 पेशेंट को हम ये नहीं है कि एक ही मेडिसिन साइजीजियम देंगे, वो डिपेंड करेगा कि उस पेशेंट की अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है, उसके हिसाब से मेडिसिन होती है। तो मेडिसिन बहुत सारी है, वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट क्या हमें सिम्टम बताता है, क्या उसकी दिक्कत है, उसको क्या सिम्टम्स हैं।
1: तो सुन के सिर्फ ये दवाई है और इसको ले लिया, ये नहीं करना है, आपको किसी होम्योपैथी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा और वो आपके सिम्टम्स को जज करके आपकी हिस्ट्री लेके आपको बताएगा कि ये आपको सूट करेगी और तभी आपको फायदा होगा।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ये भी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई लोग सुनी सुनाई चीजों पर भी करते हैं तो वो नुकसान भी हो सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो एक और मेरा दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि जैसे आपने बीपी का बताया, थायराइड थायराइड का बताया कि ये भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और इनकी दवाइयां बहुत

0: दिखती हैं। अगर हम देखें मार्केट की सर्वे करें तो बीपी बहुत कॉमन है, थायराइड बहुत कॉमन है, तो इनकी दवाइयां जो एलोपैथी में चल रही हैं, क्या उसके साथ साथ होम्योपैथी की जा सकती है कि उसे छोड़कर फिर होम्योपैथी लेनी पड़ेगी?
1: जी, उसका भी मैं आपको, जैसे इसके पीछे एक डिटेल्ड लॉजिक है। जैसे अगर आप मान लो कोई भी आपसे ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, इसका काम होता है कि वो जैसे आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करता है। तो जब भी आप मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं, कोई भी जैसे ये हाई ब्लड प्रेशर के हुए, वो ऑलरेडी मेडिसिन पे चल रहे होते हैं एलोपैथी, तो बेसिकली होम्योपैथ, हम एज अ होम्योपैथ हम क्या करते हैं कि उनको वो दवाई एकदम से बंद नहीं कराते, क्योंकि अगर वो इंसान है वो कितने टाइम से वो दवाई लेता आ रहा
0: बॉडी
1: है
0: यूज
1: तो
0: टू
1: बॉडी
0: हेल्थ।
1: उसके यूज टू हो
0: जी
1: जाती है,
0: बिल्कुल,
1: एक उसको आदत पड़ गई
0: हाँ
1: होती है।
0: जी,
1: तो हमारा क्या उसमें वो क्राइटेरिया होता है कि हम अपनी मेडिसिन उसको जैसे देते हैं, साथ में एलोपैथी भी चलती है, और उन दोनों मेडिसिन के बीच में थोड़ा सा हम गैप रखते हैं। जैसे पेशेंट को बोलते हैं आप 1 से 2 घंटे का गैप रखें, एंड धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे वो हमारी मेडिसिन लेगा तो उसका जो बेसिकली रूट कॉज है वो रिमूव होगा, तो हम साथ के साथ जो उसकी एलोपैथिक मेडिसिन की डोज वो कम होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि वो होम्योपैथी लेगा तो एलोपैथी उसकी बंद हो जाएगी, एंड फाइनली जब होम्योपैथी अपना पूरा काम कर लेगी तो होम्योपैथी की मेडिसिन भी बंद हो जाएगी।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो जितने लोग बहुत पुरानी दवाइयां ले रहे हैं वो भी होम्योपैथी के जरिए उससे निजात पा सकते हैं। तो चलते चलते कुछ और आप कहना चाहें हमारे श्रोताओं को?
1: श्रोताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप किसी भी बीमारी की वेट मत कीजिए, आप पहले ही अपने जैसे अपनी जीवन शैली में सुधार लाइए। रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर खुली हवा में वॉक कीजिए, एंड खाना पीना अपना अच्छा रखिए, एंड नींद के लिए आप जैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा सजग हो जाइए कि हाँ कोशिश कीजिए कि आप 6 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें, एंड स्ट्रेस के लिए जो आजकल बहुत एक बड़ा भयंकर रूप जिसने धारण किया है, उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें या प्राणायाम करें, जिससे अगर आप अपनी जीवन शैली पहले से ही सुधार लेंगे तो ये बीमारियां आप बिल्कुल भी आपको आपके नज़दीक आएंगी भी नहीं।
0: जी, और बीमारियां नहीं आएंगी तो इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: जी
0: प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: या
0: धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पूजा भार्गव को। आप एक होम्योपैथ हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए और लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड होम्योपैथी पर इतनी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
4: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
3: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
4: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
0: आयुर्वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या आयुर्वेद, योग और व्यायाम को अपनाकर मोटापे को जीता जा सकता है? बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर महेश व्यास। आप डीन PhD हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर महेश व्यास। आयुर्वेद की दृष्टि से हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें सुधार करना चाहिए अपने खान पान में और जीवन शैली में, जिससे मोटापा ना हो। स्वागत है, नमस्कार।
5: जी नमस्कार।
0: तो सबसे पहले तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इसके क्या मुख्य कारण हैं?
5: देखिए, मोटापे का मेन कारण जो है वो लाइफ स्टाइल है कि व्यक्ति को हमेशा जो है अपनी जीवन शैली जो है वो एक्टिव रखना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में खास तौर से कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, घर से गाड़ी में निकले, ऑफिस में भी बैठने का काम, वापस गाड़ी से घर आ गए, मैंने उनकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रहती है, तो अगर शरीर चेष्टायुक्त रहेगा तो शरीर में ओबेसिटी कभी नहीं बढ़ेगी। और आयुर्वेद उसके लिए कहता है व्यायामम आचरेत नित्यम, मैंने आप कोई भी काम करते हो अगर प्रतिदिन व्यायाम करते रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे। और मोटापा इस कारण से होता है कि खास तौर से हम चेष्टायुक्त हमारी जीवन शैली नहीं रहती है। तो मेरा कहना है कि अपन क्या काम करते हैं उसके अनुसार निर्धारित कर लें कि प्रतिदिन मैं व्यायाम करूंगा। अगर दिन में हमारी जो क्रियाशीलता है वो ज़्यादा है तो आप थोड़ा कम व्यायाम करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो थोड़ा सा व्यायाम की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर ओबेसिटी से युक्त है, मोटापे से युक्त है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस जो है वो बाधित होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो हम BMI की बात करते हैं वे 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आयुर्वेद एक और कहता है कि प्रातःकाल जो लोग जल्दी नहीं उठते हैं वो भी मोटापा बढ़ने का कारण है। अच्छा। कि अगर सुबह ज्यादा देर तक सोते रहते हैं, और दूसरा खाने पीने का जो है वो विशेष रूप है, क्योंकि आयुर्वेद ने तो यहां तक कहा कि शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरक कर्तुम निरामय। अगर हम डाइट और लाइफस्टाइल के नियमों का पालन करें तो व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें से डायबिटीज भी एक है। जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उन सब में जीवन शैली की मुख्य कारणता है, माने आहार और विहार। तो ओबेसिटी में भी आहार की एक अपनी भूमिका है, और आहार में खास तौर से जो गुरु पदार्थ रहते हैं, जो स्निग्ध चीजें रहती है, वो वजन को ज्यादा बढ़ाती है, और उसमें से ऑयल भी एक है जो स्निग्ध गुण से युक्त होता है।
0: आयुर्वेद की दृष्टि से कौन सा तेल सही होना चाहिए खाने के लिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए?
5: देखो, आयुर्वेद में कहा गया कि घृतात अष्टगुणम तेलम मर्दने न तो भक्षणे, मैंने तेल को श्रेष्ठ बताया है मर्दन अभ्यंग व्यायाम मालिश के लिए। खाने के लिए घी को श्रेष्ठ बता रखे गोघृत अगर मिलता है तो, लेकिन आज जितनी आवश्यकता उस मान से अगर वो नहीं मिल पाता है तो तेल का भी प्रयोग करते हैं। और उसमें तेल के प्रयोग में बेस्ट बता रखा तिल का तेल। उसके साथ में अलग अलग प्रदेशों में, जैसे कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो जिसका स्वभाव शीत रहता ऑयल का, जैसे कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल जो रहता है, नारियल का तेल, वो शीत स्वभाव का रहता है, तो साउथ में विशेष करके उसका प्रयोग किया जाता है। जिन प्रदेशों में थोड़ी ठंड का मौसम रहता है वहाँ पर सरसों का तेल या तिल का तेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य बात ये नहीं कि आप कौन सा तेल उपयोग कर रहे हैं, मेन बात है कि आप तेल की क्वांटिटी कितनी उपयोग कर रहे हैं। अगर आप अधिक मात्रा में तेल का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ओबेसिटी को बढ़ाने वाला है।
0: किस तरह से खाने को बनाया जाए जिससे कि वो खाना हमारे शरीर को सही तरह से लगे, यानी हमारे मोटापा ना बढ़ाए?
5: बिल्कुल। तो देखिए, भोजन की एक प्रॉपर विधि है
0: जी।
5: और उसमें भी भोजन निर्माण की विधि है कि बाहर जो अपन भोजन करते हैं उसमें एक ही ऑयल का उपयोग वो कई बार करते हैं तो ट्रांसफैट बढ़ता है, और वो केवल ओबेसिटी को नहीं बढ़ाता है, वो डायबिटीज को बढ़ाता है, हृदय रोग को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इवन यहाँ तक कि कई बार कैंसर तक की जो व्याधियाँ होती है उनकी भी उत्पत्ति इनके कारण होती है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि डीप फ्राई की हुई चीज़ों का कम प्रयोग करें। दूसरा ये कहने का कि जो अपन फ्राई करते हैं कोई भी चीज़ें घर में उसमें तेल की क्वांटिटी कम हो। हम कई बार देखते हैं कि अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है प्रतिदिन 1 से 1.5 चम्मच छोटी वाली जो रहती है टेबल स्पून, उतनी मात्रा शरीर के लिए पर्याप्त है। यानी 10 ml से 15 ml तक आप ले लें, मैक्सिमम 20 ml, इससे ज़्यादा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हम अगर ध्यान रखें कि घर में 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, तो उनके मान से अगर कैलकुलेशन किया जाए कि एक महीने के इतने ऑयल की जरूरत है, उससे भी थोड़ा और कम ऑयल अगर हम परचेस करके लेके आए, और जो भोजन बनाते हैं वो अगर ध्यान रखना शुरू कर दे कि मैं हर दिन जितना ऑयल का प्रयोग करती हूँ तो सिर्फ 10% कम कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। और ऐसा हम अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अगर बोले कि आप थोड़ा सा ऑयल का उपयोग कम कर दें तो निश्चित रूप से ये ओबेसिटी के क्षेत्र में हम क्रांति ला सकते हैं छोटे से प्रयास से। क्योंकि आयुर्वेद तो कहता है आहारो महाभैषज्यम, भोजन के जो छोटे छोटे नियम है जैसे ऑयल का उपयोग कम करना, व्यायाम प्रॉपर करते रहना, समय पर भोजन करना। कई बार क्या होता है, दिन में 3 बार अपन भोजन कर रहे हैं, भूख नहीं लगी फिर भी भोजन कर रहे हैं, मिठाई का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ओबेसिटी हो ही नहीं सकती है। और जहाँ पर ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ती जाती है, आज अगर देखें तो 8 व्यक्तियों को अगर देखें तो अपने को हर 8वां व्यक्ति ओबेसिटी के साथ मिलता है, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो ओबेसिटी को कम करने के लिए आहार का ध्यान रखें, और खास तौर से आहार में ऑयली चीज़ें इनका प्रयोग कम करें, मिठाई वगैरह को भी आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करें, नियमित व्यायाम करते रहें और ताज़ा बना हुआ भोजन लें तो निश्चित रूप से देश को ओबेसिटी से बचा सकते हैं।
0: बच्चे जो हैं आजकल वो भी बहुत मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी उनमें भी आ रही है, तो ये क्या कारण है आपको लगता है कि बच्चों में ये आदत आ रही है?
5: आजकल बच्चों में अपन देखते हैं तो काफ़ी बच्चों में ओबेसिटी मिलती है और उसका मेन कारण है तो फास्ट फूड, इसका सेवन थोड़ा सा कम करें। इसलिए सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए कि घर का बना हुआ खाना खाएं, बच्चों की जो इच्छा वो घर पे बना के दें, बाहर का खाना नहीं खाएं। उसमें भी खास तौर से फास्ट फूड हैं जो अपन कहना चाहिए कि डीप फ्राई वाली चीजें हैं, ऑयली चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, बच्चों को आइसक्रीम

0: बहुत पसंद आती है, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद रहते हैं, तो एक तो स्निग्ध और मधुर, ये दो चीज़ें ओबेसिटी को बढ़ाती हैं। तो स्निग्धता में ऑयल ज़्यादा हो गया अगर उसका उपयोग कर रहे हैं, और मधुरता में जितनी भी स्वीट वाली चीज़ें इनका प्रयोग अगर ज़्यादा करते हैं तो ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। तो बच्चों में खास तौर से मीठा खाने की प्रवृत्ति को थोड़ा कम करवाएं और ऑयल का उपयोग कम करवा दें। अगर उनमें भी ऑयली चीज़ें खाना कम हो जाती है तो इससे अपन रोक सकते हैं, और बच्चों को डीप फ्राई की हुई चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो हम थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान रखें कि उनको फ्रूट्स खिलाएं। अगर फल खाते हैं अपन तो फल जो है वो ओबेसिटी को नहीं बढ़ने देते हैं, जैसे गुआवा है, पपीता है, ड्रैगन फ्रूट है, ऑरेंज है, ये सब चीज़ें ऐसी है कि जो शरीर में फाइबर जो है उनके द्वारा पहुंचता है और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो मेरा कहने का कि चॉकलेट, आइसक्रीम या ऐसी स्वीट चीज़ों को खाने के बजाय फल खाएं, और फल में भी ऋतु फल खाएं जो जिस सीजन में फल उपलब्ध हैं। अगर बच्चों की आदत हम फल की डालते हैं, ऑयल की उपयोग थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें भी ओबेसिटी को हम रोक सकते हैं।
1: तो योग और ध्यान का क्या महत्व है?
0: देखिए, योग तो व्यक्ति को हर रूप में स्वस्थ करने में काम करता है, माने चाहे वो शारीरिक व्याधि हो या मानसिक व्याधि हो। तो शारीरिक में अपन कह सकते हैं कि मोटापा ज़्यादा होता है, और मोटापे को कम करने में नियमित व्यायाम और नियमित योग अगर करते हैं, किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। और नियमित व्यायाम के रूप में योग, प्राणायाम, आसन, हर एक व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है। अब अगर अपने पास में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो या कोई योग सेंटर हो तो वहाँ पर जा करके, और अगर अपने को वजन कम करना है उसके लिए विशेष रूप का व्यायाम है, उसके लिए एक अलग प्रकार के आसन है, उसके लिए अलग प्रकार का प्राणायाम है। तो अपने को क्या करना है, अगर आप वेट बढ़ा हुआ नहीं है केवल स्वस्थ रहना है तो उसके लिए परामर्श ले लें, अगर अपना वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए प्रतिदिन कौन कौन से आसन करना है उनका अपन जो है खास तौर से परामर्श लें और उनका अगर पालन करें तो योग की भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका है व्यक्ति को स्वस्थ रखने में। जिस प्रकार से हम बीमार होने के बाद औषधि का प्रयोग करते हैं, अगर हम योग का प्रयोग करें तो हम बीमार ही नहीं होंगे। तो उचित आहार, उचित व्यायाम, योग, प्राणायाम, ये अगर देश में हर एक व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।
1: क्या ऐसी तकनीक करी जाती है आयुर्वेद में जिसके जरिए मोटापे को कम किया जाता है?
0: जी देखिए, पहला तो आहार के द्वारा, उसके साथ में कुछ औषधियों का प्रयोग।
1: अच्छा।
0: अब मोटापा जब आता है तो वो केवल मोटापे तक सीमित नहीं रहता है, उसके कारण व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ हो जाती है, डायबिटीज की उसको तकलीफ होने लग जाती है, कई लोगों को कैंसर तक की, क्योंकि डाइट का ध्यान नहीं रखते उसके कारण कैंसर भी हो जाता है। उसी प्रकार से जो हड्डियां रहती है ये कमजोर होने लग जाती है, और उसको अगर अपन देखें कि जो पित्ताशय उसकी बीमारियां कई होने लग जाती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लग जाता है, और अगर देखें तो लीवर और फैटी लीवर होने लग जाता है ओबेसिटी के कारण ही। उसी प्रकार से नींद, स्लिप एपनिया जो बोलते हैं, या कहना चाहिए कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, गठिया बात, हड्डियों की बीमारी होने लग जाती है, और कई लोगों में तो जैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो होती है ये भी ओबेसिटी के कारण होती है, थायराइड की प्रॉब्लम, माने ओबेसिटी अपने साथ में कितनी बीमारियों को लेके आता है। तो एक तो केवल ओबेसिटी है, तब हम थोड़ा सा डाइट में ध्यान रखें कि मीठी चीज़ें, मधुर चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ों का थोड़ा अवॉइड करें और एक्सरसाइज रोज करते रहें। अगर बाकी और कोई व्याधियाँ हो गई तो उन व्याधियों के मान से अपनी डाइट को ध्यान रखें, क्योंकि हर एक व्याधि के लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक डाइट बता रखी है। और आयुर्वेद में तो आचार्य चरक ने औषधियों का प्रयोग बाद में बताया, उनने शुरू में ही दूसरा चैप्टर अपामार्ग तंडुली एक चरक संहिता का सेकंड चैप्टर है उसमें पहले 28 यवागु बताई, माने खाने पीने की रेसिपी कि जिससे अलग अलग बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो ओबेसिटी से उसके द्वारा बचे, और साथ में हम थोड़ा सा व्यायाम आदि करते रहें, और कुछ औषधियाँ जैसे अपने कहना चाहिए कि हमारे घर में प्रायः रहती है, त्रिफला का चूर्ण है, वो बहुत अच्छा ओबेसिटी को कम करता है। पर मेरा सबको एक अनुरोध है कि औषधि का प्रयोग किसी भी चिकित्सक के परामर्श से लें, ताकि आपको कितनी मात्रा में कब लेना है, क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि उनको गर्म पानी के साथ लेने पर उनका परिणाम अलग है, उनको ठंडे पानी के साथ लेने पर उनका परिणाम अलग है। तो आपको और कौन कौन सी व्याधि है, ओबेसिटी है, तो चिकित्सक से परामर्श ले लें। और त्रिफला चूर्ण है, गिलोय है, अलग अलग छोटी छोटी रेमेडीज है जो हमारे घर में रहती है, हम तो कहते हैं कि किचन रेमेडीज जो रहती है उनका का हम प्रयोग कर सकते हैं, पर वो सब चिकित्सक की परामर्श से अगर लें तो न केवल ओबेसिटी, अभी तो ओबेसिटी के कारण होने वाला डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो या और कई प्रकार की बीमारियां हो, उनसे भी सामान्य नियमों का पालन करके हम बच सकते हैं।
1: एक चलते चलते प्रश्न और करना चाहूंगी कि हमने बहुत सुना है आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, ये कुछ क्रियाएं होती हैं, तो क्या वो भी मोटापा कम करने में सहायक होती हैं?
0: जी, मोटापा कम करने के लिए पंचकर्म भी एक बेस्ट चिकित्सा है।
1: अच्छा,
0: तो जैसे जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है, जैसे थोड़ा बहुत अगर बड़ा हुआ वेट है तो उसको तो अपन डाइट से भी ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिनमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी है फिर उनमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और उनमें पंचकर्म बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, तीन दोष होते हैं, एक वात, पित्त और कफ। जब भी शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है माने मोटापा फिर बढ़ता है, और उसको कम करने के लिए आयुर्वेद में वमन कर्म बता रखा है। उसी प्रकार से विरेचन कर्म है, कुछ प्रकार की बस्ती है जिसको निरूह बस्ती बोलते हैं, कई प्रकार का डिकॉक्शन बस्ती के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों ही पद्धतियां मोटापे को कम करने में बहुत प्रभावी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश।
1: धरती आकाश में आप सबका स्वागत है। पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण सतत विकास के लिए अनिवार्य है। शिक्षा और वैज्ञानिक जागरूकता के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों को विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझकर ही हम प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग कर सकते हैं। ये जागरूकता प्रदूषण नियंत्रण, आवास बहाली और प्रजातियों के विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनिए ये परिचर्चा, पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जागरूकता। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी और शिक्षाविद, कहानीकार, सांस्कृतिक विशेषज्ञ मालविका जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दिलीप झा।
2: आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि अनुसंधान पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, तो वर्तमान में जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान चल रहे हैं उसमें आपका अनुभव क्या है, आप किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उसका आम जनों के लिए क्या महत्व है?
4: नमस्कार। सबसे पहली बात तो कृषि अनुसंधान में आपने बोला कि बहुत सारगर्भित काम हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत मूलभूत हमारी आवश्यकता है कि कृषि से जुड़े हुए जितने भी आयाम है हमें हर समय उनकी जरूरत पड़ती है। आम जनता को अगर हम कृषि से अलग करके देखें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कृषि के साथ साथ आजकल स्वास्थ्य की चिंताएं कर रहे हैं। हमने कोविड के बाद से देखा कि लोग बाग हेल्थ के लिए अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम दिन पे दिन अब चर्चा करने लगे हैं पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग की हम बात करने लगे हैं। इसके साथ साथ हम चर्चा करने लगे हैं कि हम समय अनुकूल चीजों का हम अगर ग्रहण करें, पोषण करें, तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता के कारण हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता रहेगा। तो मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक वैज्ञानिक हूँ और इस क्षेत्र में भारत की जो पूरी कृषि की व्यवस्था है और कृषि की जो वैज्ञानिक सोच है वो बहुत अच्छे से एक प्रगतिशील मार्ग पर चल रही है। हम एक तरफ हम ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं जो कि बदलते वातावरण के परिदृश्य में आगे के लिए तैयार रहे कि हमारी क्रॉप के ऊपर, हमारे लाइव स्टॉक के ऊपर, हमारे सीड के ऊपर, हमारे प्लांट सिस्टम के ऊपर अगर वातावरण बदल रहा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको हम कैसे लड़ सकते हैं, उसके ऊपर एक पूरे की पूरी टीम काम कर रही है। उसके साथ साथ हम ये भी काम कर रहे हैं कि कैसे करके हम अपनी पूरी क्रॉप्स को पेस्टिसाइड और फंगिसाइड फ्री बना सकें जिससे कि हम कम से कम केमिकल का प्रयोग कर सकें। इसके साथ साथ क्योंकि कृषि में हम लाइव स्टॉक को अलग नहीं कर सकते तो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, प्रधानमंत्री ने इस मिशन की भी लॉन्च की है कि हम एक तरफ अपनी भूमि की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम ह्यूमन के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम पर्यावरण के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये सतत प्रगतिशील तरीके से काम कंटिन्यूअसली चलता रहे क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हो गए हैं। तो हमारे ऊपर एक महती जिम्मेदारी ये भी है कि कैसे हम अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पेट में हम पोषण युक्त भोजन दे सकें। तो इन सारे विषयों पर काम चल रहा है।

0: और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं।
1: मालविका जोशी जी, आपका स्कूली शिक्षा बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा अनुभव रहा है। आप खुद भी साइंस बैकग्राउंड की ही हैं। आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को बताइए कि इस क्षेत्र में जब हम शिक्षा की बात करते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा की बात करते हैं, तो उसका क्या महत्व हो जाता है, और जो अनुसंधान की बात करते हैं, प्रतिफल की बात करते हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए आप किस किस तरह के माध्यमों को उचित मानती हैं और उसका अनुभव आपका क्या है?
2: देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि यदि कोई चीज हमें आगे तक लेके जानी है तो वो बच्चों के माध्यम से ही हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि कच्ची मिट्टी को ही गढ़ा जा सकता है, जो पकी मिट्टी है उससे तो कुछ नहीं होगा। तो जो टीचर्स हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को ये बात बताएं, उनको समझाएं कि उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। हर चीज का एक माप होता है। अब जैसे मौसम के अनुसार यदि आप खाते हैं तो आपको वो सब पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं आपके शरीर को। यदि इस समय अमरूद का सीजन है तो आप अमरूद खाइए। अब अमरूद के सीजन में आप एप्पल खाना चाहेंगे तो वो एप्पल आपको कोल्ड स्टोरेज का मिलेगा और उसके पोषक तत्वों में कमी 100% आएगी। यानी आप दाम भी ज्यादा दे रहे हैं और आपके फायदा भी,
1: पौष्टिकता भी कम मिल रही है।
2: तो ये बात हम हर अनाज के बारे में, हर सब्जी के बारे में, हर जगह के बारे में जब हम कहते हैं और बच्चों को समझाते हैं तो वो अपने घर जाके बताते हैं। हर एक क्षेत्र में ऐसा ही होता है। और जब आप घर जाके बच्चा बताता है, क्योंकि बच्चे के लिए टीचर होती है सबसे सही, तो टीचर का अपना एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए बिना किसी टैबू के कि हाँ ये ऐसा होना है और बच्चे को मैंने ये सिखाया है। मैंने कहा हाथ से खाना खाओ। हाथ से क्यों खाना खाओ? तो मैं कांटे चम्मच से खा रही हूँ और मैं बच्चे को बोलूंगी कि नहीं बेटा हाथ से खाना चाहिए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि बेटा मैं भी हाथ से खा रही हूँ, हाथ से खाने के क्या फायदे हो सकते हैं, दाल चावल ही खा रहे हैं, पर दोनों में पोषक तत्वों का जो शोषण है बॉडी में उसमें फर्क पड़ता है। आप स्टील के चम्मच से खाएंगे और आप अपने हाथ से खाएंगे तो, और बाकी चीजें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों को बताना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए आपको करना होता है, परिवार को करना होता है। परिवार की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पहले सब गेहूं, अब चावल, और चावल से अब हम अपने मोटे अनाज पे आ गए हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, तो क्यों? और बच्चा भी आजकल खाना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों से आप पूछिए, न्यूट्रिशनल फूड मामा, न्यूट्रिशनल फूड। तो ये न्यूट्रिशनल फूड मामा को भी पता होना चाहिए ना। तो मामा को पता चले, परिवार को पता चले, उसके लिए हम जैसे टीचर्स काम करते हैं, साइंटिस्ट से हम सीखते हैं और हम परिवार को बताते हैं।
1: डॉक्टर अमित जी, आप एक वैज्ञानिक हैं फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर डिवीजन में, इसीलिए पता लगता है बहुत सारे डिवीजन होते हैं कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान विकास के लिए। जब हम फूल की और फलों की बात करते हैं, वर्तमान में ये एक बहुत बड़ा बाजार है और ये बहुत पुराने समय से दुनिया में रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज है मनुष्य को हमेशा प्रिय रही है और हमेशा उसके लिए लाभकारी है। इसमें वर्तमान अनुसंधान इस क्षेत्र में क्या है, वो किस तरह से किए जा रहे हैं?
0: देखिए, फल एक ऐसी चीज होती है कि जो बहुत रीजन स्पेसिफिक होती है, तो बहुत अच्छे एक विजनरी माइंडसेट से आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ लीची का अनुसंधान बनाया गया, अभी मखाने का अनुसंधान बनाया गया, मध्य प्रदेश में खरपतवारों का भी अनुसंधान है, सॉइल का भी अनुसंधान है, हमारे पास फार्म मशीनरी का अनुसंधान है, महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ अनार पे मिलेगा आपको, अंगूर पे मिलेगा, संतरे पे मिलेगा या सिट्रस वर्गीय पे मिलेगा, आप और आगे जाएंगे कश्मीर जाएंगे तो वहाँ टेम्परेट फ्रूट्स में है। तो पूरे देश के अगर आप मैप को अपनी आंख से बंद करेंगे तो हर राज्य में ICAR के अनुसंधान केंद्र है। ये तो रही बात की हम फलों की स्पेसिफिक, हम क्लाइमेट के से हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, और उन अनुसंधान केंद्रों में आज की और आज से 50 साल के आगे की जो भी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंडेटरी वो काम शुरू हो चुके हैं, जिससे कि जलवायु के परिवर्तन के क्या इंपैक्ट रहेंगे और इससे हमारी फलों की गुणवत्ता में, फलों की क्वालिटी में, फलों की उत्पादकता में, या किसी भी तरीके से रोग एवं कीट व्याधियों में या एबायोटिक स्ट्रेसेस जितने भी हैं उन सब के ऊपर सिस्टमैटिकली बड़े प्लांट तरीके से काम हो रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर के सप्लायर थे, उसके पीछे क्या था, उसके पीछे व्यापार था और हमारी गुणवत्ता थी। तो अब ICAR ने अपने विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के साथ में कोलैबोरेशन करके तो एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया भारत सरकार ने, जिसमें देश की जितनी भी रिसर्च की लैब्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, पूरे देश की। ICAR सिर्फ अकेले नहीं काम करेगा, DST अकेले काम नहीं करेगा, DBT अकेले काम नहीं करेगा, हम इसरो के साथ भी हमारे कोलैबोरेशन होंगे। सो अब क्या होगा कि जैसे कोई भी रिसर्च का आउटपुट जो आएगा वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, बहुत जल्दी आएगा और वो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। एक तो ये काम हो गया कि हमारी रिसर्च का हमारे इम्पैक्ट एनालिसिस से क्या काम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज पे कैसे काम हो रहा है, इसके साथ साथ जो आपने बात बोली कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसकी चर्चा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं करेगा, इसकी चर्चा आप जैसे सोशल रिफॉर्मर को भी करनी चाहिएगी। ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से भी हम देश के दुनिया के सेकेंड ओबेसिटी के देश बन रहे हैं। उसके पीछे देखिए हमारी दादी नानी माँ बहन पत्नी बेटियां बेसिकली यही हमारे डॉक्टर्स थे, इनके दिया गया जो पोषण था, जो हमारी रसोई थी, हमारी उस रसोई में प्रोसेस फूड कितना खाना है, फ्रेश फूड कितना खाना है, इस रेशो को कौन बताता है? इस रेशो को तो जो मार्केट में सब्जी लेने वाले दादाजी जाते हैं, पापा जी जाते हैं, या हम जैसे लोग जाते हैं, उनको अपने उस सब्जी की थैली में अपना शेयर डिसाइड करना है कि इसमें प्रोसेस फूड कितना रहेगा और इसमें फ्रेश फूड कितना रहेगा। जब ये हम डिसाइड कर लेंगे तो अपने आप ही हमारे फ्रीजर में, हमारे रेफ्रिजरेटर में उसकी संख्या धीरे धीरे अनुपातिक रूप से कम रहेगी। देखिए हमारे पास अचार हुआ करते थे, हमारे पास शहद हुआ करते थे, हमारे पास पापड़ हुआ करते थे, हमारे पास बड़ी हुआ करती थी, हमारे पास दालें हुआ करती थी, हमारे पास में सारी सूखी सब्जियां हुआ करती थी, ये भी भाई साहब प्रोसेसिंग का पार्ट था। अब प्रोसेसिंग का मतलब सिर्फ केमिकल के अंदर इम्प्रेसमेंट करके या डीप फ्राइंग करके या डीप फ्रीजिंग करके, वो प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं था, वो तो अपन को स्टोरेज की एक ऐसी विधि हो गई कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो भी यूज कर लो। सो हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हमें उनकी रिवाइवल के ऊपर उन पर भी चर्चा करने की जरूरत है।
1: और निश्चित रूप से इस तरह की चर्चाएं चलती रहती है और यही एक विज्ञान संचारक का काम होता है। इसीलिए आकाशवाणी के जो प्रसारण केंद्र है वहाँ डेडिकेटेड साइंस सेल होता है, एक उसका ऑफिसर होता है, प्रोग्राम अधिकारी होता है, जो अपने हिस्से का काम करता रहता है कि किस तरह से विज्ञान की बातों को लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से स्थानीय लोगों की भाषाओं में पहुँचाते रहना चाहिए। मल्विका जी, एजुकेशन में इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशनल ट्रेंड है वो कितना प्रभावी है बच्चों को शिक्षित करने और उनको जागरूक करने के लिए, एक दीर्घकालिक उनके फायदे के लिए और समाज के फायदे के लिए?
2: जिस समय कोविड का सब चल रहा था तो मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली एक एनजीओ के साथ, जो जैविक खेती पर उन्होंने कुछ गांव अडॉप्ट किए और उन गांवों को, वहां के बच्चों को वो एजुकेट करना चाह रहे थे जैविक खेती के बारे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको करिए। तो अब ऑनलाइन जुड़ तो गए सब, आप समझिए कितनी बड़ी स्क्रीन है, उस पे 100 बच्चा है। तो मैं क्योंकि एक क्लासरूम टीचिंग से हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर बच्चे का चेहरा दिखना चाहिए, जिससे कि मेरी बात वहां तक पहुंच रही है कि नहीं, इसको मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, ये जानूं। पर ऑनलाइन में अधिकतर कैमरे बंद रहते हैं और आपको पता नहीं होता, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स बन के रह जाता है कि आपकी अटेंडेंस लग गई है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 20 लेक्चर्स में जैविक खेती को मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। अब उन्होंने उसी में कैमरा एक दिन ले गए खेत के ऊपर और वहां खेत पर दिखाया कि देखिए ऐसी जमीन है। अब वो जमीन मैं आंख से देख रही हूँ, पर जमीन आंख से देखने की चीज नहीं होती, जमीन को फील करना होता है कि वो कैसी जमीन है। उसको फिर हम टेस्ट करेंगे कि क्या नेचर है उस जमीन का और उसमें फिर हम क्या उगा सकते हैं। उस जमीन की टोपोग्राफी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उस टोपोग्राफी के हिसाब से हम उसमें फसलें या जो भी पेड़ पौधे हैं वो उगाएंगे, हमारे फ्रूट्स उगाएंगे या सब्जियां उगाएंगे। कई बार होता है हम लेयर्ड फार्मिंग कर लेंगे या कुछ भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन में इस तरह की जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको लेके चलना, तो मुझे हमेशा लगता है कि इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है, आपके अंदर की महत्वाकांक्षा को जगाने के लिए ठीक है ऑनलाइन क्लास, पर जब आप सच्ची में बहुत ज्यादा यदि आप फोकस्ड हैं और आप करना चाहते हैं तो कितनी भी प्रॉब्लम है आपको ऑन ग्राउंड होना पड़ेगा।
1: अमित जी, जब हम भारतीय प्रदेश में बात करते हैं जहाँ की हमारी इतनी सारी जैव विविधता है, इतनी तरह के फल है, हर क्षेत्र का एक फल विशेष भी है, और आपने पपीते पे भी काम किया है, अमरूद पे भी किया है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो फल है वो किस तरह से पौष्टिक है? और अगर हम तुलनात्मक रूप से अपने लोगों को, अपने जनता को, अपने छात्र छात्राओं को बताना चाहें तो किस तरह से बताएंगे कि ये फल इस तरह से महत्वपूर्ण है और उनको किस सीजन में फलों का सेवन करना चाहिए?
0: भारत भूमि को देखेंगे आप तो कश्मीर में केसर भी हो रहा है, कश्मीर के एकदम कॉर्नर में जाएंगे वहाँ खुबानी भी हो रहा है। किसी ने सीबक थॉर्न का नाम सुना है, इसको हम बद्री फल कहते हैं। सीबक थॉर्न लोगों को पता है, बद्री फल नहीं पता है। बद्रीनाथ में जाने वाले यात्रियों को बद्री फल मिला करता है। आप सोचिए उसमें की पी टेमाइन करके एक सब्सटेंस होता है जो लोगों के इमोशनल सिंड्रोम को बैलेंस रखता है। अब उस हिली ट्रैक्ट पे भी भगवान ने ऐसा फल दिया है जो की वहाँ पे आइसोलेशन में लोगों के घर रहते हैं, इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं, एक एक किलोमीटर तक एक एक मकान होता है, तो वहीं पे एक ऐसा फल भी दे दिया कैप्सूल कैप्सूल की तरह जो आपके इमोशनल उसको बैलेंस को मैनेज करके रख रहा है। उसके नीचे आएंगे आप लोगों को तो पूरा प्लेन का, तो उसमें आप आड़ू मिलेंगे, आपको बढ़िया नाशपाती मिलेगी, बाकी सारे अमरूद आपको 20 राज्यों में हो रहे हैं। सेब भी खाइए, सेब को सेब के सीजन में खाइए। जो किन्नौर का सेब होगा वो आपको नीचे लोअर बेल्ट के सेब में वो मजा नहीं आएगा, लेकिन लोअर बेल्ट के सेब में और भी बहुत सारे हैं। प्लम मिलेगा आपको, पियर मिलेगा, पीच मिलेगा, उसके और

0: जाएंगे, लीची मिलेगा, मैंगो मिलेगा, बेर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है. जब हमारे पास में इतनी सारी डाइवर्सिटी अवेलेबल है तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं भाई. उनके रेट भी अच्छे मिल जाते हैं, रेट भी ऐसे नहीं है कि हमें कोई एक फल महंगा मिलता है बाकी सब सस्ते मिलते हैं. और नो डाउट हमारे उस समय जब एप्पल इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, एट दैट टाइम विट्सन्स वाज देयर. और विट्सन्स के रहने के कारण, क्योंकि उनकी जलवायु एक ही टाइप की थी तो उनके पास में बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं था. लेकिन हम अगर मान लीजिए हम बोले कि हम तो इतने पुण्य भूमि में पैदा हुए हैं, क्यों अपने आप को सीमित रखे, हमको तो सारी चीजें खानी चाहिए. मजे की बात यह है कि जितने भी आपके ड्राई एरिया के फ्रूट्स हैं वो मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं.
1: देखिए हमारे जो भी घर में पूजा पाठ कहीं भी होती है, पांच फल चढ़ाना है तो वो सीजनल पांच फल चढ़ेंगे. ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ेंगे. तो ये क्या है, इस बहाने आप वो सब चीजें खाते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन मिलेगा, और चढ़ाएंगे वही जो वहाँ मिलेगा कहीं दूर से. तो आप
0: अपनी डाइट में शहद कम कर दिया, बल्कि हमारे पास में दुनिया का सबसे बड़ा मिशन चला पड़ा है शहद के ऊपर. केसर हमारे पास में बहुत है. हमारे महिलाएं, जो आज की महिलाएं, कितने लोग जानते हैं कि जायफल को किसके कब खिलाना होता है, कब अपन को छुआरे को किसके खिलाना है, मुनक्के का क्या काम है, दाग का क्या काम है. इसके कारण हमारी दवाइयों की दुकानों पर चक्कर ज्यादा हो रहे हैं. हर छोटी छोटी बीमारियों में हम अपने ट्रेडिशनल विजडम को छोड़ के हम केमिकल विजडम पे जा रहे हैं. हमको बैलेंस रखना है, मेरा ये कहना है.
2: डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी और मालविका जोशी जी, जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया.
1: बहुत धन्यवाद.
3: पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जागरूकता, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे. प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी और शिक्षाविद, कहानीकार और सांस्कृतिक विशेषज्ञ मालविका जोशी. परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दिलीप झा. इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक सम्पन्न होता है. वाचक स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हाँ मैं जसपाल कौर। अज दे प्रोग्राम विच असी सुनांगे एक वार्ता ते इस तो अलावा माता दियां भेटां भी सुनांगे। अज 2 मईए ते अज दा दिन विश्व टूना दिवस दे तौर ते मनाया जांदा है। ए दिन टूना मच्छी दी महत्ता, इना दी सांभ संभाल अते मच्छी फड़न दे टिकाऊ तरीकियां बारे जागरूकता वधाउण लई मनाया जांदा है। संयुक्त राष्ट्र वल्लों 2016 नूं 2 मई दा दिन विश्व टूना दिवस वजो मनाए जाण दा ऐलान किया गया सी। 2017 नूं विश्व पद्धर ते पहला टूना दिवस मनाया गया सी। ए दिन टूना मच्छियां दी आबादी नूं बचाउण अते उन्हां दे सेहत लाभां बारे लोकां नूं जागरूक करन दा एक विशेष उपराला है। इसलिए विश्व टूना दिवस इन्हां मच्छियां अते इन्हां वर्गियां होर प्रजातियां दे शिकार नूं रोकण अते समुंदरी इकोसिस्टम नूं सुरक्षित रखण ते जोर दिंदा है। टूना मच्छी दी सांभ संभाल आर्थिक अते वातावरण नूं सुरक्षित रखण दे तौर ते बहुत महत्वपूर्ण है। ए तां गल होई विश्व टूना दिवस बारे, ते आओ प्रोग्राम दे शुरू विच सुणदे हां ए वार्ता सद्भावना अते सांझीवालता। वार्ताकार ने अमरदीप कौर।
1: कहिंदे ने कि दीवा दीवे नूं जगाउंदा है ते मुहब्बत दिलां नूं जोड़दी है। अज दी इस भज दौड़ भरी जिंदगी विच जेकर कुछ गवाच रहा है तां ओह है साडा अपनापन। ना तेरा है ना मेरा है, ए जग सांझा रहण बसेरा है। क्यों वंडियां पा के बैठे हो, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡੇਰਾ।

माता दी ए भेंट तुसी परवेज पेजी ते सलीम दियां आवाजां विच सुन रहे सी। हुण सुनदे आं अमरजीत बिजली दी गाई माता दी ए भेंट। तेरा दित्ता खाई दा, तेरा दित्ता पाई दा, तेरे बच्चियां नू नहीं हो कुछ होर चाहिदा।

सरल कवि दी लिखी ते अमरजीत बिजली दिगाई माता दी ए पेंट हुण तुसी सुनी। हुण प्रोग्राम दे अखीर विच पेशे सुदेश कुमारी दिगाई माता दी ए पेंट। डर ते सवाली खड़िया मगल पाके लाल चुनिया,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी जो 31 मई तक चलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदाय के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। कल श्रीकाकुलम जिले के एराकुलम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीदी नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य भर के विद्यार्थियों को सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने

0: $1 in oil revenue, according to a report by Axios, citing Pentagon. Highlighting the report, Sean Parnell, assistant to the Secretary of War for Public Affairs, said the U.S. operation is intended to maintain sustained economic pressure on Tehran. Prime Minister Narendra Modi has expressed concern over the health of Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai. In a social media post, the Prime Minister said that he wished Mr. Rai speedy recovery after reports of his illness surfaced. The Meteorological Department has said Jammu and Kashmir is likely to witness generally cloudy sky with spells of light to moderate rainfall and thundershowers next 3 days, accompanied by gusty winds of 40 to 50 km per hour at a few locations. The weather agency also issued an advisory asking farmers to suspend farm operations during the period. In football, India will mark their first appearance at the AFC Under-17 Women's Asian Cup since 2005, ending a 21-year wait at this level as the Under-17 national team kick off their campaign against Australia in China today. The match is scheduled to start at 5 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 20 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश, अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है ip.radiodehli@gmail.com। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरी साथ मेरी को होस्ट हैं।
2: बिल्कुल दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती शर्मा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: और मेरा यानी सिद्धार्थ का भी प्यार भरा नमस्कार। और अब हम रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम आपकी पसंद में और सुनवाएंगे आपके पसंदीदा गीत। और आप जब हमें अपने आपके बहुत सारे संदेश हमें यहाँ पर दिख रहे हैं ईमेल में आरती, और सबसे पहला संदेश किसका आया है
2: जी? तो सबसे पहले संदेश की बात करें तो ये हमें भेजा है छत्तीसगढ़ से, और ये पहांदा पलारी से हमें मैसेज कर रहे हैं। मैसेज करने वाले का नाम है तनुजा देवगन, और इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखन लाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन। ये कह रहे हैं कि किसी भी गीत में आप हमें शामिल कर लें।
1: बिल्कुल, तो आपको हम शामिल करेंगे, ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि ये है आपका अपना कार्यक्रम। और इसके बाद एक संदेश आया है लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद जी का। और ये कहते हैं कि आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, तो आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। ये लिखते हैं कि किसी भी गीत के में शामिल कीजिए और इस कार्यक्रम का इनको इंतज़ार रहता है। इसके अलावा अगर आरती, हमारा अगला मैसेज किसका है
2: जी? तो अगले मैसेज की बात करें तो ये हमें भेजा है मोहाली चंडीगढ़ से, और भेजने वाले हैं टीडी मल्होत्रा। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। और कालका से हमें भेजा है मैसेज शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने।
1: जी हाँ, बजाज फैमिली ने ये मैसेज हमें भेजा है, और चंडीगढ़ से, साथ में मोहाली से। और इसके बाद मैं जिस नाम को देख पा रहा हूँ इस समय, लिखा है कि सलाम जी, बिल्कुल सलाम आपको, वसीम आसमा दलाल, अकरम आसमा दलाल, असलम आसमा दलाल, अल्ताफ आसमा, रेलवे कॉलोनी लखनऊ से। तो शहर तहजीब से आपने हमको मैसेज किया है, तो बिल्कुल बहुत बहुत आदाब। और हम आपको आपका पसंदीदा गीत ज़रूर सुनवाएंगे। और हमारा जो ये जो सॉन्ग हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, ये भी कुछ ऐसा ही कुछ कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है।

जी हाँ, आपके अनुरोध पर हमने आपको ये गीत सुनाया और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चल रहे सब लोग लेकिन आपसी गतिरोध है, राह का रोड़ान बनिए, आपसे अनुरोध है, आप भी हैं एक पथिक हैं, जानते संघर्ष को, राह में बाधा बहुत ये आपको भी बोध है। तो कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितने भी संघर्ष करना पड़े।

0: लेकिन हमें यूं ही चलते रहना होगा। और इस समय हमारी स्क्रीन पर बहुत सारे मैसेजेस ब्लिंक कर रहे हैं। आरती, अगला मैसेज किसका है?
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं और बता दें कि ये मैसेज हमें भेजा है रविंद्र मोहनदास ने, और ये कह रहे हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। किशनगंज बिहार से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है आशा देवी ने।
0: बिल्कुल, आशा देवी जी ने ये फरमाइश भेजी है। और इसके बाद अगला जो मैसेज है ये लिखते हैं कि बिल्कुल तो इन्होंने तो आरती को बोला है, आरती जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। इन्होंने लिखा है कि उषा राय, ओम प्रकाश राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जी हाँ, आपके बहुत सारे रिपीट मैसेजेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगला मैसेज आया है मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल का। आपने भी अनुरोध किया है अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपना संदेश भी हम तक पहुंचाएं। आज है शनिवार और शनिवार के दिन बहुत सारे लोगों की छुट्टी भी होती है, कुछ लोग अपने ऑफिस में हमें सुन रहे होंगे, लेकिन हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि आज आप अपने दिन को कैसे प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ खास आज आप करने वाले हैं, वो आप हमसे साझा कर सकते हैं अपने संदेश के साथ। और आरती, ये किसका संदेश है?
1: देखिए मैसेज में दिखा रहा है कि सिद्धार्थ जी और आरती जी, तो ये मैसेज हमें लिख रहे हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, और मैसेज भेजने वाले का नाम है रविंद्र सिंह छाबड़ा। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने।
0: बिल्कुल, तो और इसके बाद हम अगले मैसेज पर नज़र डालते हैं। ये मैसेज आया है, बिल्कुल ये लिखते हैं कि प्रिय प्रसारक सिद्धार्थ और आरती जी, आपको हमारा प्यार भरा आदाब। तो हमारा भी आदाब आपको बोल करें। और ये भेजने वाले हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसीर अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। इन्होंने, इनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आरती, ये किसका संदेश है?
1: ये संदेश हमें भेजा है, ये हमें भेज रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, और ये मैसेज कर रहे हैं हमें जमशेदपुर से। और दोस्तों इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया ने।
0: जी हाँ, और इसके बाद हमारे पास बहुत सारे मैसेज फ्लैश हो रहे हैं लगातार, और जिन लोगों ने मैसेज भेजा है उनसे मेरा कहना ये है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें दोबारा मैसेज भेजने के पहले, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो मैसेज भेज रहे हैं, उनका जो मैसेज है उसे भी कार्यक्रम में शामिल करना ज़रूरी है। और हमारे एक श्रोता हैं अनु जी ने, लिखती हैं मुंबई से कि वक्त से ना हारे जाते हैं ना जीते जाते हैं, वक्त से सिखाया जाता है, वक्त खुशबू है बिखर जाता है। कितनी अच्छी बात आपने कही है अनुजी, और वक्त वाकई में खुशबू है जो बिखर जाता है, और वक्त गया, वक्त कभी वापस नहीं आता। तो बिल्कुल भी बिना वक्त गवाएं हम आपके लिए सुनवाते हैं ये गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, आपके लगातार संदेश ही हमारे पास आ रहे हैं और हम और आरती इस समय देख रहे हैं इतने सारे मैसेजेस ब्लिंक्स हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। और आरती, हमारा अगला संदेश कहाँ से आया है?
1: अगला संदेश हमें ये सिद्धार्थ भेजा है, राजेश जैन हमें भेज रहे हैं मैसेज। ये ढाका से हमें मैसेज कर रहे हैं और इनके साथ हमें फरमाइश की है बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभ चंद्र ने।
0: बिल्कुल, तो इनकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करने कर रहे हैं और इस लिख रहे हैं, आज हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो बिल्कुल, मिलन तो हो गया, हम आपसे मिल गए। ये लिख रहे हैं हमें इंदिरा चौक दिल्ली से, अजीम वक़ार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम। बिल्कुल, हम आपसे मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिलेंगे। और हमारा अगला संदेश आया है आरती, कहाँ से?
1: ये हमें मैसेज कर रहे हैं राम नरेश चिक, और इनके साथ हमें फरमाइश की है रेखा चिक ने, करण चिक, रघु चिक, राघव चिक, सृष्टि यादव, सावी यादव, और ये हमें मैसेज कर रहे हैं संगम विहार हनुमान मंदिर दिल्ली से।
0: बिल्कुल, और आरती जिस तरह से आपने इसको पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने बड़ा आर्टिस्टिक वे में
1: बिल्कुल
0: सबके नाम लिखे हैं, जिसे पढ़ना थोड़ा बड़ा ट्रिकी था, लेकिन बिल्कुल आपने। और अगला मैसेज जलालाबाद विस से सुरेश गगनेचा, पूनम गगनेचा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने भेजा है। इन्होंने लिखा है कि 2 दिन से सुबह और रात के प्रोग्राम में मैसेजेस शामिल नहीं कर रहे, क्या कोई गलती हो गई हमसे? जनाब, आपसे गलती नहीं, गलती तो हमसे हो सकती थी आपका मैसेज ना शामिल करके, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप हमारे बहुत ही प्रिय और दिल के करीब हैं। आपका मैसेज हम इग्नोर नहीं कर सकते, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। और आरती, किसका संदेश है अगला?
1: अगला ये संदेश हमें भेज रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, और ये हमें मैसेज किया है जिला मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश से हमें ये मैसेज कर रहे हैं। मैसेज भेजने वाले का नाम है मुकेश कश्यप, इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
0: बिल्कुल, तो आप हमें सुन रहे हैं, पूरा परिवार जब साथ में बैठकर सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा अगला मैसेज है, ये लिखते हैं कि प्रिय प्रस्तुतकर्ता जी, सादर प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। ये कहते हैं कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है और इन्होंने जो मैसेज भेजा है सरगुजा मैनपाट से, रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, अदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमार वाली थापा और कुमारी डब्लू थापा ने ये संदेशा भेजा है। और यहाँ पे अब ये मैसेज कहाँ से आया है आरती?
1: ये मैसेज हमें भेजा है, ये लिख रहे हैं नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार, और मैसेज भेजा है हमें रेलवे कॉलोनी कानपुर से, और मैसेज हमें भेजा है आफ्ता उल्लाह डोम के साथ साथ हमें फरमाइश की है वली उल्लाह डोम, डब्लू उल्लाह डोम, और ये इलाहाबाद से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। फरमाइश भेजने वाले का नाम है रेशमा नाज डोम बेबी अंसारी डोम।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारे आपके संदेश आ रहे हैं, लेकिन आपके फरमाइशी गीत भी हमको सुनवाने हैं, तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: खा रहे हैं और ये जो मैसेज है कुछ खास है, ये लिखते हैं कि एक शिकायती मैसेज है एक्चुअली, ये लिखते हैं कि क्या आपको हमारा मेल नज़र नहीं आता आरती जी और सिद्धार्थ जी? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है, तभी तो पढ़ रहे हैं। लिखते हैं आदाब अर्ज कर रहे हैं, आज हम सीपी में जश्न मनाने जा रहे हैं, आप भी आइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बिल्कुल हम सीपी के एकदम पास ही हैं और आपने आपको स्टूडियो से याद भी कर रहे हैं। हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। तो आज आप सीपी में पार्टी करिए, मुलाकात होगी आपसे रेडियो के ज़रिए, तो हम आपसे मिलते ही रहते हैं। और आरती, अगला संदेश किसका है?
1: देखिए, अगला मैसेज हमें भेज रही हैं ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, यानी कि दिल्ली से हमें ये मैसेज कर रही हैं। और मैसेज किया है हमें प्रोमिला सिंह ने, इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है हेमा और अंतरा सिंह ने, और ये कह रहे हैं कि आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर लें।
0: बिल्कुल, तो हमने आपको शामिल कर लिया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको शामिल ना करें। और लिखते हैं कि नमस्कार आरजी सिद्धार्थ और आरती, आपकी आपकी जो बिल हो, ये लिखते हैं कि हमें हम आपकी तारीफ़ नहीं करें तो हमारा मैसेज शामिल नहीं करें। जी नहीं, आप हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे तो भी हम आपका मैसेज शामिल करेंगे।
1: करेंगे
0: और बिल्कुल आपका, आप देखिए आपकी नाराज़गी हमने दूर कर दी है, और इतना प्यारा सा मैसेज, और शिकायत भी तो वही करते हैं जो दिल के बेहद करीब होते हैं। तो ये मैसेज आया है खेल बाजार पानीपत से नरेश, लक्ष्य लाडो नानक और पिताजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, कोयल और नानू, और पूरा इनका परिवार हमें इस समय सुन रहा है। और आरती, अगला मैसेज पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया है?
1: ये मैसेज हमें भेज रहे हैं बोधराज खोरवाल, और ये उत्तम नगर नई दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं। इनके साथ फरमाइश हमें की है कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने।
0: बिल्कुल, तो इनके मैसेज के बाद हम अगले मैसेज की, ये लिखते हैं कि आदरणीय होस्ट आरती और सिद्धार्थ जी, सादर नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और लिखते हैं कि किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल करें, तो शामिल तो आपका नाम हो गया। और ये हमें लिखा है चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान और साथ में तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन के साथ पूरा मस्कीन परिवार। आप अक्सर हम आपका नाम लेते रहते हैं, आप जुड़े रहते हैं हमारे साथ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। और अभी अगला मैसेज किसका आया है आरती?
1: अगले मैसेज की बात करें तो ये मैसेज हमें कर रहे हैं रमेश चौहान, ये हमें जोधपुर से मैसेज कर रहे हैं, और इनके साथ हमें फरमाइश की है मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष ने।
0: बिल्कुल, और इस समय मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग, दिल्ली के बाहर तो बहुत गर्मी है और फिलहाल दिल्ली में थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई है आरती, उससे
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, तो आपको बाहर निकलने में भी उतनी फ़िलहाल उतनी दिक्कत नहीं है। और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं आदरणीय प्रसारक जी, आपको मेरा नमस्कार। जी हाँ, बहुत बहुत नमस्कार आरती जी, हम भी आपको सुन रहे हैं, हमें नज़रअंदाज क्यों करती? तो आरती जी देखिए, आपसे शिकायत है, जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, देखिए हम आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे जो मैसेज को पढ़ रहे हैं। और देखिए अब तो आपकी नाराज़गी भी दूर होगी होगी क्योंकि हमने आपका नाम जो शामिल कर लिया है।
0: बिल्कुल, तो इनको, इनकी नाराज़गी हम दूर करते हैं और अपने गीत के माध्यम से इनको हम कुछ स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं, आप लीजिए।

0: जी हाँ, आपके लगातार संदेश हमें मिलते जा रहे हैं और एक से एक बढ़कर आप हमें संदेश दे रहे हैं। और हमारा अगला संदेश आया है, लिखते हैं सिद्धार्थ जी, आरती जी, हमारा भी संदेश शामिल करें। तो बिल्कुल, हम आपका संदेश शामिल कर रहे हैं। हम आपके हैं कौन सॉन्ग, बिल्कुल तो हमने आपको सुना दिया। और ये कह रहे हैं कि जो चॉकलेट की बात इस सॉन्ग में है, इनको बहुत पसंद आ रही है। अगर और ये लिख रहे हैं कि चॉकलेट अगर चाहिए तो ले आते हैं, बिल्कुल आपकी चॉकलेट हमें मिल गई है इस गाने के माध्यम से। और ये हमें लिख रहे हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी, ये लिख रहे हैं जालंधर से हमें ये संदेश। और आरती, हमारा अगला संदेश क्या है?
1: देखिए, ये संदेश हमें एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी मेल को शामिल कर लीजिए। और देखिए, प्लीज़, इन्होंने 3 बार लिखा है सिद्धार्थ, और ये मैसेज
0: हाँ
1: हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव से, और मैसेज भेजने वाले का नाम है वलीउल्लाह।

0: अंसारी, इनके साथ फरमाइश करने वाले हैं सोनम वली और अस्मा वली।
1: बिल्कुल, तो आपने अपनी फरमाइश बताई हमें, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि आज का दिन आप कैसे बिताने वाले हैं, आप कोई संदेश देना चाहते हैं अपने इसके माध्यम से तो आप वो भी दे सकते हैं। और मैं इंतज़ार में हूँ, नमस्कार, आप हमारा संदेश शामिल करिए। तो शामिल तो हो गया, मुसर्रत जहानाज, तल्लत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफ़त जहानाज और नुजहत सरजिया नाजिया। और बिल्कुल तो लिखा है कि हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, तो हमने आपको अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। और अगला संदेश किसका है?
0: अगला, ये जो मैसेज हमें कर रही हैं, मैसेज भेजने वाले का नाम है कमल पाठक, ये लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई, आपको भी गुड मॉर्निंग। और इनके साथ दोस्तों हमें फरमाइश भेजी है कमल पाठक, सुनील पाठक, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक।
1: जी हाँ, और आपके लगातार संदेश हमें मिल रहे हैं। अगला संदेश है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम, मुस्कान मास्टर, ये लिखते हैं कि इनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आरजे सिद्धार्थ जी और आरती जी की प्रस्तुति इनको अच्छी लग रही है। जी हाँ, और हमें आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। और ये लिखते हैं कि इनका एक एक मैसेज भी भेजा है कि मन को हमेशा शांत रखो और आदत को सरल बनाओ। तो बहुत बड़ी बात है ये, एक्चुअली मन को शांत करना रखना बहुत ज़रूरी है, पर ये इतना आसान भी नहीं। तो बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है। अगला आरती संदेश किसका है?
0: जी अगला संदेश हमें भेज रहे हैं सुदर्शन मुखी और ये लिख रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं आपके कार्यक्रम को सुनकर और आप हमारे जो भी मेल है उसको प्लीज़ शामिल कर लीजिए और अपनी पसंद का कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। और इनके साथ दोस्तों हमें फरमाइश भेजी है अनीता मुखी, सिमरन मुखी और ये हमें मैसेज कर रहे हैं शांति नगर सोनीपत से।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही हमारे पास संदेश आया है राम राम जी, आप दोनों की गीत हमको बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमें भी आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। और इन्होंने कुछ बात लिखी है जो बहुत क्लियर नहीं है, पर करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और स्प्रीत शर्मा, विनीता वमा, नीलू जी, आपका संदेश हमने शामिल कर लिया है। और इसके साथ ही हम आपको एक प्यारा सा ये गीत सुनवाते हैं।

0: जी हाँ, आपके संदेश लगातार हमें मिल रहे हैं। संदीप मक्कड़ जी हमें अपना संदेशा भेज रहे हैं, लेकिन जगह का नाम मिसिंग है। आप अपने साथ अपनी जगह का भी नाम भेजिए। और इसके अलावा हमें परिहार जी का मैसेज मिला है, भोपालगढ़ राजस्थान से। आप लिखते हैं कि कार्यक्रम आपकी पसंद में, आप दोनों को हार्दिक नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत इंतज़ार हो गया, आखिर कितना इंतज़ार करें, हम अभी तक प्रतीक्षारत हैं। ना तो फरमाइश का गीच बज पा रहा है, ना हमारा मैसेज शामिल हो रहा है, तो सिर्फ इंतज़ार ही इंतज़ार होता है। तो देखिए, इंतज़ार का जो मज़ा होता है वो एक अलग होता है। आपका इंतज़ार पूरा हुआ और हम पहुंच गए भोपालगढ़ राजस्थान में आपके पास, और आपका नाम हमने अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। और आरती, अगला संदेशा किसका है?
1: ये फरमाइश हमें भेजी है राजकुमार दूधी जी, हमें कर रहे हैं ये गांव फरांसी जिला हिसार से हमें मैसेज कर रहे हैं। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है राजकुमार प्रमोद कुमार डूडी ने और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने।

0: हमें मैसेज कर रहे हैं, और ये मैसेज उन्होंने हमें भेजा है पंजाब से। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, और ये लिख रहे हैं कि हम आपका प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, आप कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए।
1: बिल्कुल, और हम आपकी फरमाइश लाइव पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, लेकिन समय कम है। अगर हम इस मैसेज को देखते हैं, बहुत सारे कुछ रिपीट मैसेजेस भी हमारे पास आपके आते हैं। दतरेंगी के भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा, आपने लिखा है कि कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है। और अगला मैसेज किसका है आरती?
0: ये हमें मैसेज भेजा है अहमद फूल वाले ने, और ये कह रहे हैं कि आप हमारी मेल को शामिल कर लीजिए। और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, और कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से फरमाइश भेजी है बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंताशा, आशु अहमद फूल वालों ने।
1: बिल्कुल, तो फूल वाली फैमिली का संदेश हमने शामिल कर लिया है, और आपके लिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रस्तुति, आपकी पसंदीदा गीत हमने आपको सुनवाए कार्यक्रम आपकी पसंद में, और उम्मीद है कि सिद्धार्थ और आरती के साथ आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ही हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बस यूं ही मुस्कुराते रहें और गुनगुनाते रहें।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी आपसे बातें करने का, आपके संदेशों को
1: जी
0: शामिल करने का इस कार्यक्रम में हमें मौका मिलता है, और जब आप हमें अपने खूबसूरत संदेश भेजते हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि इतने सारे श्रोतागण

0: हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें भी, हमारी भी हौसला अफजाई होती है, हमें भी अच्छा लगता है और इसी तरह से आपसे हम रूबरू होते हैं इस कार्यक्रम में। और दोस्तों अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है और समय चूँकि रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है और अब धीरे धीरे समय हो चला है हम इस चैनल पर आपको बीच बीच में देश दुनिया के समाचार सुनवाते रहते हैं। तो अब से कुछ ही देर में आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर उसके बाद अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी जो 31 मई तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के रामोन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रानुकम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
2: We diversified our sources.
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया। ये कदम यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा ट्रंप के टर्नबेरी गोल्फ कोर्स में हुए समझौते के 1 साल से भी कम समय बाद उठाया गया है। इसके अंतर्गत अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% शुल्क निर्धारित किया गया था। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत मुराद अली का राग वृंदावनी सारंग।

0: उद्योग से जुड़े ग्रामीण कारीगरों की भी मदद कर रहे होते हैं। यानी छोटी सी खरीदारी किसी परिवार की बड़ी मदद बन सकती है दोस्तों। और ऐसे में हमारे घरों में ये परंपरा तो पहले से चली आ रही थी, पर चूंकि हम बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी हो चुके हैं इसलिए हम भूल रहे हैं इन बातों को। और यही मेरी कोशिश है कि हम फिर से याद करें इन बातों को, इन समाधानों और इन परंपराओं का पालन करने की ओर हम आगे बढ़ें, पर्यावरण की मदद भी करें, सेहत की देखभाल और वोकल फॉर लोकल हुनर यानी तीनों को सपोर्ट करने वाला ये रास्ता हम अपनाएं। तो इस गर्मी थोड़ा देसी बनते हैं, जब लाइट गुल हो जाए तो एक्सरसाइज करते हैं, क्या कहना है आपका?
1: पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि ही आराम में उठते ही लो, अरे पुरवा के झोंकवा में

0: साथियों, ये अंतिम गीत आप सुन रहे हैं गोदान फिल्म से, और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से आप अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा बोस को दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिए, अलविदा, नमस्कार। घर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणना कर्मी का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले 2 घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Magho.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती और जैसे ही उनका नाम आता है सुनते ही दिल सीधे हमें अपने कॉलेज के दिनों में ले जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक फिल्म की जिसने ना तो सिर्फ यारी दोस्ती को खूबसूरती से दिखाया बल्कि स्पोर्ट्स के जोश और जुनून को भी बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया। ये कहानी है सपनों की, खुद को साबित करने की और उस जज्बे की जो हार मानना नहीं जानता। 90s का वो दौर जब ये फिल्म आई और हर यंग दिल की धड़कन बन गई। इसकी कहानी में हर किसी को अपना एक हिस्सा दिखा, किसी को दुख किया था और चाचा नासिर हुसैन ने फिल्म को प्रोड्यूस की थी और कहानी भी नासिर हुसैन और मंसूर खान ने मिलकर लिखी थी। सिनेमेटोग्राफी नजीब खान की थी और एडिटिंग जफर सुल्तान और दिलीप कोटलगी ने संभाली।

श्रोताओं, कहा जाता है कि ये कहानी हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग अवे से इंस्पायर्ड थी, लेकिन जिस तरह से इसे भारतीय अंदाज में ढाला गया वो इसे बिल्कुल अलग बना देता है। और अगर कहा जाए कि ये 90s की सबसे यादगार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में से एक है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर की। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है जो जीता वही सिकंदर। तो श्रोताओं, आप हमें मेल कीजिए iPRADIODELHI@gmail.com पे और बताइए कि आपको इस फिल्म का कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है। और हाँ, क्या आपको भी ये फिल्म अगर आपने देखी है तो देखने के बाद क्या आपको अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं या नहीं? मुझे तो आते हैं भाई। तो अगर आपको आते हैं और आपका पसंदीदा सॉन्ग क्या है वो हमें मेल ज़रूर कीजिएगा।

जी हाँ श्रोताओं, फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ये टाइटल ट्रैक यहाँ के हम सिकंदर, इंग्लिश रॉक बैंड द हू का मशहूर गाना पिनबॉल विजर्ड से प्रेरित माना जाता है। अगर आप पिनबॉल विजर्ड सॉन्ग ध्यान से सुने तो आपको इस प्रेरणा की झलक साफ महसूस होगी। आइए अब इस फिल्म के कास्टिंग से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। मुख्य भूमिका में नजर आए थे आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी और कुलभूषण खरबंदा, और इनके साथ सहायक भूमिकाओं में असरानी, देवेन भोजानी और आदित्य लाखिया थी। शुरुआत में विलेन शेखर मल्होत्रा का जो किरदार था मिलन सोमन निभा रहे थे और उन्होंने फिल्म का लगभग 75% शूटिंग भी पूरी कर ली थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद ये रोल दीपक तिजोरी को मिला। दिलचस्प बात ये है कि इस किरदार के लिए अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनके जो फुटबॉल सीन को देखते हुए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हीरो के तौर पर आमिर खान पहले से ही तय थे, लेकिन उनकी हीरोइन को लेकर काफ़ी बदलाव हुए। शुरुआत में गिरजा सेट्टार को कास्ट किया गया था और उन्हें आप एक सॉन्ग जवां हो यारों में देख सकते हैं, उनके कुछ शॉट्स भी उस गाने में हैं, मगर निर्देशक मंसूर खान उनके अभिनय से खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म के मुख्य भूमिका अंजलि के लिए जूही चावला को ऑफर मिला था, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से बात नहीं बनी। फिर प्रतिभा सिन्हा और नगमा को भी अप्रोच किया गया, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने भी फिल्म नहीं की। आखिरकार ये रोल आयशा जुल्का को मिला और उन्होंने इसे यादगार बना दिया। इन सभी बदलाव की वजह से फिल्म लगभग 80% हिस्सा दोबारा शूट करना पड़ा, जिससे इसकी लागत और मेहनत दोनों बढ़ गई। एक और ख़ास बात, इस फिल्म में आमिर खान के भतीजे इमरान खान ने बाल कलाकार के रूप में छोटे आमिर खान का किरदार निभाया था, जो उनका शुरुआती स्क्रीन डेब्यू भी था। कुल मिलाकर इस फिल्म की कास्टिंग में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर कलाकार ने अपने किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया और यही वजह है कि फिल्म आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो फिल्म है वो है जो जीता वही सिकंदर। तो श्रोताओं, आइए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। देहरादून के अलग अलग कॉलेजों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा और उसी के बीच एक बड़ी साइकिल रेस, यहीं से शुरू होती है जो जीता वही सिकंदर की कहानी। मॉडल कॉलेज के रतन यानी मामिक सिंह और राजपूत कॉलेज के शेखर यानी दीपक तिजोरी के बीच मुकाबला होता है जिसमें रतन हार जाता है। वहीं रतन का छोटा भाई संजू यानी आमिर खान एक बेफिक्र मस्तीखोर लड़का जिसकी जो जिंदगी को हल्के में लेता है, लेकिन एक हादसा जब कुछ सब कुछ बदल देता है। रतन के घायल होने के बाद संजू पहली बार जिम्मेदारी समझता है और फिर अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए वो साइकिल रेस में उतरता है। कड़ी मेहनत, संघर्ष और हिम्मत के साथ आखिरकार संजू वो कर दिखाता है जो सबको नामुमकिन लगता है। वहीं शेखर को हार कर जीत हासिल करके अपने परिवार और कॉलेज का नाम रोशन करता है। यही है उस कहानी की असली जीत, जब एक लापरवाह लड़का जिम्मेदारी निभाते हुए सिकंदर बन जाता है। तो चलिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है जो जीता वही सिकंदर। श्रोताओं, अब इस फिल्म के गाने, म्यूजिक और सिंगर्स के बारे में बात करें तो जतिन ललित का ये एल्बम उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल और आदित्य नारायण, साधना सरगम, अलका याग्निक, अमित कुमार, विजेता पंडित और जतिन पंडित जैसी आवाज़ों ने इन गानों को खास बना दिया। यही वजह है कि इस फिल्म का हर गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। और अब बात करते हैं इस एल्बम के सबसे आइकॉनिक गाने पहला नशा की। ये गाना उस दौर का एक अलग ही फील लेकर आया था और देखते ही देखते एक कल्ट सॉन्ग बन गया। और अब इससे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको बताते हैं कि इस गाने की कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी, लेकिन किसी कारणवश वो इस गाने की

शूटिंग के दौरान मौजूद नहीं रह पाई। उस वक्त फराह खान उनके साथ असिस्ट कर रही थी, तो उन्होंने ही इस गाने की कोरियोग्राफी संभाली। पूजा बेदी डांसर नहीं थी तो उन्हें डांस करवाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए फरहा ने एक क्रिएटिव तरीका निकाला। उन्हें कार पर खड़ा किया और फैन से उनके ड्रेस पर हवा मारी और स्लो मोशन में आमिर खान का कूदना, दौड़ना और डांस करना दर्शकों को इतना पसंद आया कि ये सीन आइकॉनिक बन गया। सच कहे तो इस गाने से फराह खान को एक कोरियोग्राफर के तौर पर पहचान मिलना शुरू हुई। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इसी खूबसूरत गीत को।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारे पास आपके मेल आ चुके हैं, तो हम फटाफट आपके मेल पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना हर्षित गोस्वामी का। राम बालकदास पश्चिम बंगाल कोलकाता हुगली जिला गुराब स्टेशन बाजार से लिखते हैं। नमस्ते राखी बैनर्जी जी, मैंने पहली बार आपका प्रोग्राम एक ही फिल्म से ट्रेन में सफ़र के दौरान सुन रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। इस फिल्म को देखने से कॉलेज के दिनों की मस्ती की बात याद आ जाती है। इस फिल्म का सुमधुर गीत मुझे भाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ट्रेन में बैठे हुए भी हमारा गीत प्रोग्राम सुन रहे हैं। और ये हैं संजय साहू पोटली कला दुर्ग से, और पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हैं हमारे साथ। और ये हैं हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटा पारा से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज फिल्म जो जीता वही सिकंदर, फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारियां व इस फिल्म की बेहतरीन गीत सुनने को मिला, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा एक ही फिल्म से जो जीता वह सिकंदर ये कहते हैं कि ये भी सुन रहे हैं और इनको अच्छा लग रहा है। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा दंतरेगी से। गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी हैं। और ये है भोपालगढ़ राजस्थान।

से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार जी। और ये है वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार। और ये लिखते हैं कि ये जो जीता व सिकंदर के, इनको सारे ही गाने बहुत पसंद हैं। और ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखती हैं रेस्पेक्टेड राखी बैनर्जी जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्थी सैटरडे, गुड आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम एंड टुडे योर डिस्कशन ऑन जो जीता वही सिकंदर मूवी, सॉफ्ट स्वीट प्रेजेंटेशन, रेयर एंड वैल्यूएबल फिल्म नॉलेज एंड हिट सॉन्ग्स ऑफ नॉटी 90s एरा। योर बिग थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच टू यू टू। और ये है ज्योति मक्कर, संदीप, मन्नत, भारत और कमल सहानी जी। और ये है राजकोट से परवीन बानो, रेशमा बानो, शकीला बानो, आसमा सुल्तान, सायरा बानो सुल्तान। तो श्रोताओं, ये थे हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के मेल। और थोड़ा सा कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें मैं आपको बताती हूँ कि फिल्म की कहानी भले ही देहरादून पर आधारित है और शुरुआत में वहाँ के कॉलेजों का जिक्र भी होता है, लेकिन असल में इनकी ज़्यादातर शूटिंग खूबसूरत लोकेशन ऊटी में की गई थी। और अगर आपने जवा हो यारो गाना ध्यान से देखा होगा तो उसमें एमटीवी की पूर्व वीजे मारिया गोरेटी भी एक छोटे से डांस रोल में नजर आती हैं। वहीं अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म ने अपनी छाप वहां भी छोड़ी। नासिर हुसैन को फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिला और वहीं जफर सुल्तान और दिलीप कातलगी ने बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम किया। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये एक हिट फिल्म रही भले ही उस वक्त इसे ब्लॉकबस्टर ना कहा गया हो, लेकिन पहला नशा जैसे गाने और दिल को छू लेने वाली कहानी की वजह से ये धीरे धीरे एक कल्ट क्लासिक बन गई और आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह से बसी हुई है। तो चलिए चलते हैं, इस प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं।

दोस्तों, जो जीता वही सिकंदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दोस्ती, प्यार, हार जीत और खुद को साबित करने की एक खूबसूरत कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर बार देखने पर वही कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा कर जाती हैं। इसी के साथ आज का ये खास सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन याद रखिएगा, ज़िंदगी की रेस में वही सिकंदर है जो हार कर भी जीतना जानता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए गीत और गुनगुनाते रहिए संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: 2 फिर हाजिर होवांगे फौजी वीरां लई कुछ होर गीतां दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां ते इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहलां चोणवीआं खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणां च वोटां दी गिणती लई केंद्र सरकार दे मुलाजमां दी नियुक्ति नूं चुनौती देण वाली तृणमूल कांग्रेस दी

पिटीशन विच दखल देने तो इनकार कर दिता है। पछमी बंगाल के दो विधानसभा हल्कों विच 15 वोट केंद्रों ते अज मुड़ पोलिंग हो रही है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा मैंबर संदीप पाठक खिलाफ गैर जमानत की धाराओं तहत FIR दर्ज की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साल 2026-27 लई चार संसदीय कमेटियां का पुनर्गठन किया है। IPL क्रिकेट विच चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस नाल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल विधानसभा चोणां विच वोटां दी गिणती लई केंद्र सरकार दे मुलाजमां दी नियुक्ति नूं चुनौती देण वाली तृणमूल कांग्रेस दी पटीशन विच दखल देण तों इनकार कर दिता है। जस्टिस PS नरसिम्हा ते जयमाले बागची दी एक विशेष बैंच ने कहा कि चोण कमिशन नूं गिणती लई कर्मचारियां दी नियुक्ति करन दा पूरा अधिकार है अते 13 अप्रैल 2026 दे सर्कुलर जिस विच केंद्र सरकार दे कर्मचारियां नूं शामिल करन दा निर्देश दिता गया सी गलत नहीं ठहराया जा सकदा। चोण कमिशन ने अदालत नूं दस्सिया है कि सर्कुलर च स्पष्ट तौर ते केंद्र ते राज सरकारां दे मुलाजमां दे मिश्रण दी व्यवस्था कीती गई है। कमिशन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ते बेनेमियां संबंधी डर बेबुनियाद ने। बैंच ने कहा कि कमिशन केंद्र सरकार दे मुलाजमां समेत इको पूल तों गिणती मुलाजमां दी चोण कर सकदा है। 294 मैंबरी पश्चिमी बंगाल विधानसभा लई पोलिंग 23 अप्रैल ते 29 अप्रैल नूं दो गेड़ां विच होई सी। वोटां दी गिणती 4 मई नूं होएगी। इस तों पहलां कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC दी पटीशन नूं इह कहिंदिआं खारिज कर दित्ता सी कि चोण कमिशन ते राज सरकार दे कर्मचारियां दी बजाए केंद्र सरकार अते सरकारी खेतर दे अदारिआं दे कर्मचारियां नूं गिणती सुपरवाइजर ते सहायक नियुक्त करन दे फैसले विच कुझ वी गैर कानूनी नहीं है। पछमी बंगाल के दो विधानसभा हल्कों में 15 वोट केंद्रों से अज मुड़ पोलिंग हो रही है। इन्हें मगराट पछमी विधानसभा हल्के से 11 वोट केंद्र और डायमंड हार्बर विधानसभा हल्के से 4 वोट केंद्र शामिल ने। सवेरे 7 बजे शुरू हुई पोलिंग शामी 6 बजे तक जारी रहेगी। सवेरे 11 बजे तक मगराट पछम च लगभग 37% ते डायमंड हार्बर च 35.92% पोलिंग दर्ज की गई। उधर केरला विच 140 हल्कों च पईआं वोटां दी गिणती लई सारे प्रबंध मुकम्मल कर लए गए ने। मुख चोण अधिकारी रतन यू केलकर ने दस्सिआ कि गिणती सवेरे 8 बजे 43 थावां ते स्थापित 140 गिणती केंद्रां ते होएगी। सरकार ने स्वदेशी तकनालोजी की वरतों करते हुए नागरिकां नूं तुरंत आफत चेतावनियां प्रदान करने लई एक सैल प्रसारण प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली की जांच करने लई अज दोपहर 12 बजे के करीब नागरिकां दे मोबाइल फोनां ते सायरन दे नाल एक सूचना भेजी गई। संदेश विच लिखिआ सी अलर्ट सिटीजनज सेफ नेशन। यह संदेश टैसटिंग लई है, इस लई जनता नूं इसका जवाब देने की कोई लोड़ नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा है कि इस संदेश नाल नागरिकां नूं घबराउण दी कोई लोड़ नहीं है। यह भारत दे नवें मोबाइल आधारित आफत संचार प्रणाली लई एक टैस्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि इस नूं दूरसंचार विभाग वालों सैल प्रसारण तकनालोजी की वरतों करके राष्ट्रीय आफत प्रबंधन अथार्टी के सहयोग नाल विकसित किया गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविख विच यह प्रणाली किसी आफत या हंगामी स्थिति विच स्थानक भाषावां अते स्थान विशेष विच तुरंत चेतावनियां भेजण दे योग होगी। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। इस कार्रवाई नाल पंजाब विच एक नवा सियासी विवाद पैदा हो गया है। सूत्रां अनुसार पंजाब दे दो जिलों विच दो वख-वख FIR दर्ज कीतियां गईयां ने। हालांकि दोवां जिलों दे नावां दा हाले तक अधिकारित तौर ते खुलासा नहीं कीता गया। BJP विच शामिल होण वाले आम आदमी पार्टी दे संसद मैंबरां विच दो विरुद्ध यह दूजी अजिही कार्रवाई है। वीरवार नूं पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दे अधिकारियां ने राज सभा मैंबर रजिंदर गुप्ता दी मालकी वाले ट्राइडेंट ग्रुप दे एक टैक्सटाइल यूनिट ते छापा मारिया सी। इस दौरान पंजाब BJP प्रधान सुनील जाखड़ ने श्री पाठक विरुद्ध FIR दर्ज करने आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंडों का सबूत दस्सिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जाखड़ ने कहा है कि आम आदमी पार्टी नेतावां के BJP में शामिल होने तो तुरंत बाद आम आदमी पार्टी उन्हां विच कमियां दिखाई देने लग पईआं ने। जिक्रयोग है कि बीती 24 अप्रैल नूं आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा मैंबर संदीप पाठक, रजिंदर गुप्ता, राघव चड्डा, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह सानी ते स्वाति मालीवाल BJP विच शामिल हो गए सन।
लोक सभा दे स्पीकर ओम बिरला ने साल 2026-27 लई चार संसदी कमेटियां दा पुनर्गठन कीता है। लोक सभा तो बीजेपी दे संसद मैंबर डॉ संजय जायसवाल नूं एस्टीमेट्स कमेटी दा चेयरमैन नियुक्त कीता गया, जिस विच लोक सभा दे 30 मैंबर ने। लोक सभा तो बीजेपी दे संसद मैंबर बेयंत पांडा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की प्रधानगी करनगे। लोक सभा तो कांग्रेस दे संसद मैंबर केसी वेणुगोपाल नूं लोक लेखा कमेटी दा चेयरमैन नियुक्त कीता गया, जिस विच लोक सभा दे 15 ते राज सभा दे 7 मैंबर शामिल ने। लोक सभा तो भाजपा दे संसद मैंबर फगन सिंह कुलस्ते अनुसूचित जातां ते अनुसूचित जन जातां दी भलाई संबंधी कमेटी दे मुखी होणगे। इस विच लोक सभा दे 20 ते राज सभा दे 10 मैंबर ने। कमेटियां दा कार्यकाल अगले साल 30 अप्रैल तक होएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रधान अजय राय की सेहत ते चिंता प्रगट की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि वह श्री अजय राय के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय अज हैदराबाद विच आत्मनिर्भर पंचायत पहलकदमी बारे एक आउटरीच वर्कशाप का आयोजन कर रहा है। इस राही भागीदारां नूं आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम के संकल्प उद्देशां ते कार्य प्रणाली तो जाणू कराया जाएगा। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आलमी ऊर्जा संकट दौरान ऊर्जा सुरक्षा नूं मजबूत करन दे उपरालियां दे हिस्से वजों भारत ने अपनी कच्चे तेल की निर्भरता 27 देशों तों वधा के 41 देशों तक कर दित्ती है। वाइब्रेंट गुजरात खेतरी सम्मेलन विच बोलदे उन्होंने कहा कि संकट के प्रबंधन विच लंबे समय की योजनाबंदी ने मुख

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के दो असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों के नए सिरे से तश्कील की है। भारत और नेपाल ने आइंदा मॉनसून से पहले सैलाब की पेशगोई के मॉडल के बारे में आज तबादले ख्याल किया। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और आज शाम IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। ये फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचका समझा जा रहा है, जिसने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अफसरान के इंतखाब का इख्तियार इंतखाबी कमीशन के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि हर काउंटिंग टेबल पर पहले से ही एजेंट्स, सुपरवाइजर्स और मुशाहिदीन मौजूद होते हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की मौजूदगी पर एतराज की वजह समझ से बालातर है। कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसरान

0: रियासती हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं। इसके अलावा दिगर अमले की तकर्री के जिम्मेदार भी वही होते हैं। कमीशन ने अदालत को मुत्तला किया कि सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन तक महफूज रखा जाएगा। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इरादा किया कि चुनाव कमीशन के सर्कुलर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल में जुनूबी 24 परगना जिले की 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। तफसील हमारे नामनगार से।
1: मगरबी बंगाल में मगरा घाट पश्चिम इलाके की 11 बूथों और डायमंड हार्बर हल्के की 4 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% पोलिंग दर्ज की गई। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। एक और पेशरफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया था। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: केरलम में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। वहां अप्रैल की 9 तारीख को 140 हलकों में वोट डाले गए थे। आला चुनाव अफसर रतन यू केलकर ने बताया कि 43 जगहों पर बनाए गए तमाम 140 वोट शुमारी मरकजों पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस काम के लिए मजमूई तौर पर 15,465 अहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, माइक्रो मुशाहिद, वोट शुमारी के लिए निगरान और असिस्टेंट शामिल हैं। सबसे पहले डाक से आने वाले वोटों की गिनती की जाएगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में रिकॉर्ड किए गए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की 8-9 तश्कील की है। लोकसभा के बीजेपी के मेंबर डॉक्टर संजय जायसवाल को तखमीना कमेटी का सरबराह बनाया गया है। इस कमेटी में ऐवान ज़ेरी के 30 मेंबर शामिल हैं। बीजेपी के ही मेंबर बैजनाथ पांडे सरकारी इदारों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबरों पर मुश्तमिल है। जनाब बिरला ने लोकसभा के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल को सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। इस कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। दर्ज फहरिस्त और कबीलों की फलाह बहबूद से मुतालिक कमेटी के सरबराह लोकसभा के बीजेपी के मेंबर फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 मेंबरों पर मुश्तमिल होगी। कमेटी की मुद्दत इस महीने की पहली तारीख से

0: 2027 के तहत अज खुदशुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। इसी दौरान बिहार में 2027 की मर्दमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। वहाँ भी मकानात की फेहरिस्त बंदी की जाएगी। दूसरा मरहला अगले साल फरवरी में शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा MP संदीप पाठक के खिलाफ FIR दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में आम आदमी पार्टी के 6 दिगर राज्यसभा अरकान के हमरा BJP में शामिल हुए थे, जिसके बाद पंजाब की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई। जराए के मुताबिक पंजाब के 2 जिलों में 2 FIR दर्ज की गई हैं, ताहम दोनों जिलों के नाम अभी तक सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरका कमेटी की 11वीं मीटिंग जारी है। ये मीटिंग अप्रैल की 30 तारीख को शुरू हुई थी। दोनों मुल्कों के हुक्काम तफसीली तबादले ख्याल में हिस्सा ले रहे हैं और कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के तवील अरसे से चले आ रहे तकनीकी और इंतजामी उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए आफात से मुतालिक फौरी इंतबाही खिदमात फराहम करने की गरज से मुल्क में ही तैयार करदा टेक्नोलॉजी पर मबनी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस निज़ाम की जांच के लिए आज दोपहर शहरियों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक नोटिफिकेशन भेजा गया। जांच के दौरान भेजे गए पैगाम में कहा गया था, अलर्ट सिटीजन्स सेफ नेशन। इस पैगाम पर आवाम की जानिब से कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक आजमाइशी पैगाम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर लोगों को मोबाइल फ़ोन पर ऐसा पैगाम मौसूल हो तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भारत के मोबाइल पर मबनी आफात से मुतालिक नए मुवासलाती निज़ाम का पैगाम है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, सिक्किम, जैली, हिमालयाई मगरबी बंगाल में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कौमी राजधानी में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहां हल्की बारिश के बाद दो दिन तक दर्जे हरारत में कमी रही। IMD ने अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा रन के निशाने को पार करके जीत हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के 2 असेंबली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की नए सिरे से तश्कील की है। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरका कमेटी की 11वें मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Supreme Court declines to interfere with Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. Says choice of officials rests with the Election Commission. Re-polling underway at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप

0: पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के

0: हिमालय के तराई वाले क्षेत्र केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताज़ा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। प्यारा सा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब आपको और स्वागत सभी सुनने वालों का। एक बार फिर से एक ही कलाकार लेकर आई हूँ मैं, लेकिन पहले ये गीत मैं आपको सुनवाऊंगी और आप खुद ही आज अंदाजा लगा लेंगे कि हम

अब आपको भी इजाज़त है कि आप बता सकते हैं। एक मेल आया हमारे पास, सुनैना गुप्ता, नीना गुप्ता, रेखा गुप्ता और ये है ऋतु गुप्ता का, और ये मेल है टैगोर गार्डन से, और इन्होंने बता दिया है सबसे पहले कि आज हम किसे ले रहे हैं। आज हम ले रहे हैं शाइनी आहूजा को। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। शाइनी आहूजा का जन्म 15 मई 1975 को नई दिल्ली में हुआ था, और इनके पिता भारतीय सेना में थे, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा रांची के सेंट जेवियर्स स्कूल से हुई, और बाद में उन्होंने नई दिल्ली में धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। और उनकी शुरुआती योजना जो थी वो सशस्त्र बलों में शामिल होने की थी। 1992 से 1996 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे थिएटर की ओर आकर्षित हुए, और दिल्ली बैरी जॉन्स एक्टिंग स्कूल में भी दाखिला उन्होंने ले लिया।

और उन्होंने अपने अभिनय की जुनून को कॉलेज के दौरान विकसित किया और अभिनय कौशल के दम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के थिएटर कोटा में प्रवेश किया और 1996 के कुछ समय बाद वे मुंबई चले गए और फिल्मों में पदार्पण करने से पहले शाइनी आहूजा ने मॉडलिंग और कुछ विज्ञापनों में भी काम किया। इसके बाद वे ब्रिटिश एशियाई बैंड स्टीरियो नेशन के एक संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए।

शाइनी आहूजा, इस बारे में तो आपसे बात हो ही रही है। और मीरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का एक मैसेज आया, उन्होंने भी कहा है हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आज जो नगमे सुना रही हैं शाइनी आहूजा के बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाइनी आहूजा ने समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से अपने अभिनय की कैरियर की शुरुआत की। ये फिल्म 2004 में विभिन्न फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई और 2005 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई।

और फिल्म में शाइनी आहूजा को खूब प्रशंसा दिलाई और इस वर्ष उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में काम किया। 2006 में यानी आहूजा को एक अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, IIF अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और स्टारडस्ट अवार्ड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ मेल डेब्यू का पुरस्कार दिया गया।

और उन्होंने गैंगस्टर वो लम्हे 2006, लाइफ इन मेट्रो 2007 और भूल भुलैया 2007 जैसी सफल फिल्मों के साथ खुद को एक दमदार अभिनेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि उनके दर्शकों के बीच करम 2005 से अधिक पहचान मिली, जिसमें उन्होंने जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया था।

और शाइनी आहूजा को खास तौर पर 2006 में परवीन बॉबी और महेश भट्ट की जीवन कहानी पर आधारित फिल्म वो लम्हे में कंगना रनौत के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म को इसकी पटकथा, कंगना के अभिनय और प्रीतम के संगीत के लिए काफ़ी सराहा गया।

आज शाइनी आहूजा बॉलीवुड से पूरी तरह दूर है। शाइनी आहूजा आखिरी बार पर्दे पर वेलकम बैक में नजर आए थे और अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर वे अपनी अच्छी

और अगली बार फिर किसी कलाकार की बात करेंगे। आज बस इतना ही। हमें यूं ही सुनते रहिए इसी वादी के साथ कि अगली मुलाकात के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब हमारे कार्यक्रम का वक्त हुआ है ब्रज माधुरी का, तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: चंपा जी,
1: हाँ
0: देखो जेठ मास को समय चल रहे हो है, एक रस बड़ो बरस रहे हो ब्रिज में, अगर ध्यान दिए हो तो।
1: अरे आप ही ध्यान दवाई दो।
0: अरे चंपा, तनिक याद करो तो सही कि ब्रज भाषा के कविवर बिहारी भाई है ना,
1: हाँ हाँ
0: उनने यह रस को बड़ो सुंदर वर्णन करे है। वे लिखे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोह करे भोहन हसे देन कहे नट जाए।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही तो लीला है ब्रज की।
0: हाँ, जब गोपी उनको जब बात करनी हो ना कन्हैया आते, तो बात करवे को जो बतरस है वाकी ताई वो कछु न कछु कोई ऐसो माध्यम बनाए ले है।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही ते तो बहानो बनानो के में है। और आप देखो कन्हैया के प्रति ना ब्रज गोपी इनको जो भाव है वहाँ पे ना अटूट प्रेम की प्रधानता है, और प्रेम ऐसा है कि वहाँ में बड़ी निश्चल भक्ति है।
0: गोपीन के प्रेम में कोई बहाने जैसी चीज है ही ना।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, आप जो यह निष्काम प्रेम की बात कर रहे हो ना, तो माखन चोरी लीला तो कन्हैया की ऐसी बाल लीला है के बामे आप देखो के गोपी यशोदा मैया थे के में उल्हानो दे में और तानो मारे वे तो ये कह में कि नंद रानी जी, हम तो आपके लाला थे, कनुआ थे, कछु ना के में कैसी हूँ कहा सोनी ना करें, पर ये हमारी गगरियान को तोड़ डा रहे, फोड़ डा रहे, हमारे ददी माखन को फैलाए दे, लुटाए दे, अपने ग्वाल वालन को खवाए दे।
0: चंपा, आप जो बात कह रही हो ना, ये गोपी जाएं उरहानों दें।
1: हाँ।
0: और तनिक सोचो तो सही, कन्हैया तो साफ मना कर दें, कहे मैया ते देख मैया मैंने तो कछु कही ना है।
1: सांची सांची कह में।
0: हाँ बिल्कुल, सांची सांची कह के मैंने तो कछु ना है कही, ये सबरी गोपी झूठ बोले और मैया तो को ना समझ में आवे कि ये बहाने ते तेरे पास आमे।
1: तो नृत्य गोपाल जी देखो, याई के काजे तो ब्रज में एक कहावत है ना, मक्खन खायो मटकी फोरी और उल्हानो देत।
0: हाँ
1: गोपिन को ना अधिकार और प्रेम दो है कन्हैया पे।
0: यशोदा मैया ते एक दिन कह बैठी, अपनो गांव लेओ नंदरानी, हम कहूं अनत बसेंगे जाए।
1: हाँ।
0: बोले हमें तो इतनो तंग कर रहे हो कन्हैया, तुम अपने गांव में अपने पास ही रख लो।
1: तो यहाँ में भी जो व्यवस्था है ना, ई सांची ना है, ई व्यवस्था प्रेम में ही है।
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: कहीं ना कहीं ये भाव भी निकल के आवे है के काना गोपीन के घरों आए और उनको मार्ग में भी मिल गए, और गोपीन ने कन्हैया के जो दर्शन की लालसा है, कन्हैया के जो प्रेम की लालसा है, बामे वे खिंची चली आई है नंदे भवन तक।
0: अजी तनिक देखो तो सही, कितनो प्यारो सो लोकगीत गायो जाए, इकली घेरी बन में आज शाम तिन कैसी ठानी रे। और चंपा जी देखो, मुकु या समय सूरदास को एक पद याद आ रहे हो, आप कहो तो मैं सुना दूं।
1: हाँ सुनाओ।
0: गोपी जाए मैया यशोदा के पास और कन्हैया की करतूतन की बात कहते वही कहे हैं, तेरे लाला ने मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढ ढंडोर आप ही आयो, खोल के बार पैठ मंदिर में दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ सीके को लीनो, अनभावत भूई पे ढरकायो, दिन प्रति हान होत गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हठक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो।

0: प्यारे भैया बहनों, अभी आप ये मनभावंशी भक्ति रचना मदन मोहन ब्रजवासी जी के मधुर स्वर में सुन रहे हते नृत्य गोपाल जी। देखो, ब्रजराज कृष्ण की बाल रूप माधुरी है ना, और उनकी बाल लीला है, वहां में उनके ग्वाल हैं, गोपी हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रज गोपी हैं, या उनके माता पिता नंद हों या यशोदा हों हैं, उन सबको जो एक समावेश है उनके परिकर में, हर काऊ की भावना ते यही प्रतीत होवे है कि काऊ ना काऊ बहाने ते, काऊ ना काऊ बात ते, हर कोई है ना बालक कृष्ण को सामिप्य चाहवे है।
1: जी चंपा, देखो गोपी जब जाए उरानो देवे, तो आपने जो मैया यशोदा की बात कही है ना, देखो कितनो बढ़िया सो उनको भाव है। वे गोपीन ते कहें कि गारी मत दीनो, मु गरीब नी को जायो री, जे तो जाको खायो ते तो तोल तोल लीनो, पर गारी मत दीनो, मु गरीब नी को जायो री। तो भी यूं कहें कि कन्हैया ने माखन खा लियो होगो, जितनो जाको खा लियो है, मुँह पति दुगनो ले जाओ, पर मेरो कन्हैया मैंने बड़े
0: मन में बंद के ना, आज हर कोई ब्रज धरा की ओर बार बार जावे है। तो नृत्य गोपाल जी, देखो ब्रजराज कन्हैया की बाल लीलान की इतनी बात चल रही है, तो कछु ऐसे ही विषय की ओर अपने श्रोता भैया बहनान को ले चलें।
1: जी हाँ चंपा, और आनंद आ जाएगा।
0: तो आओ प्यारी भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये वार्ता, जाको विषय है अष्ट छाप के कवियों का कृष्ण रूप माधुरी वर्णन। या वार्ता को आलेख लिखो है मोनीश कमल ने, और वाचन स्वर है नृत्य गोपाल जी को।
1: ब्रज माधुरी सुनवे वाले श्रोतान को मोनीश कमल की राधे राधे। श्रोताओ, मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य में वल्लभ संप्रदाय के आठ कविन को बड़ो महत्व है। इन कविन को अष्ट छाप के कवि कहो जाए है। अष्ट छाप की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोस्वामी श्री विठल नाथ जी ने सन 1565 में करी। महाप्रभु वल्लभाचार्य मध्यकाल के प्रसिद्ध आचार्य, विचारक, चिंतक, सामाजिक संगठनकर्ता और श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आपने ब्रज के गोवर्धन और गोकुल में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख स्थान स्थापित करके ब्रजवासिन को संगठित करो और भारत के विभिन्न भागन में श्री कृष्ण चरित्र की महिमा गाय के ब्रज आगमन को आमंत्रण दियो। यही कारण सो उनके विचारन सो प्रभावित है के भारत के विभिन्न भूभागन ते अनेक कृष्ण प्रेमी ब्रज में आए। ब्रज भक्ति के विकास में वल्लभ संप्रदाय को महत्वपूर्ण योगदान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र गोस्वामी श्री विठल नाथ जी

विलक्षण सामाजिक संगठन करता हते। आपने कृष्ण भक्ति और श्री वल्लभाचार्य जी के विचारन को जन जन तक पहुँचाएवे के ताहीं सन 1565 में अष्टछाप नाम ते 8 कविन को एक समूह बनायो जाकू उनने अष्टछाप नाम दियो। या समूह में श्री वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास को रखो गयो। ये 8 कवि श्री कृष्ण के परम भक्त है। इनने श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, लीला अवतारी और लोक रंजक स्वरूप को बड़ो मनोरम वर्णन करो है। कृष्ण की रूप माधुरी वर्णन में तो इन कविन ने सौंदर्य के समस्त उपमानन को झूठो कर दियो है। अष्टछाप के कविन में सबसों चर्चित कवि सूरदास है। सूरदास गोवर्धन के पास पारसौली गांव में चंद्र सरोवर पर रहते। इनकी विनय, भक्ति, वात्सल्य और माधुर्य भाव की रचनान में विशेष आकर्षण है। माखन खाते भय कृष्ण की छवि को जो वर्णन सूरदास ने करो है वह बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर ले है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकन मनुमत मधुरगन मारक मधुही पिए कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर हिये धन्य सूर एको पल एहि सुख का सत कल्प जिए। श्रोताओ कुंभनदास गृहस्थ होते भये हु कृष्ण के अनासक्त भक्त है। घर में खेती किसानी को काम हो संध्या समय यतिपुरा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करवे जाए तो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाते रहते। बहुत मधुर गायवे वाले है। पता में है कि उनके मधुर गायन की प्रशंसा बादशाह अकबर ने सुनी। उनको दरबार में कछु गायवे के ताही बुलायो। उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार में जो भजन गायो वह कुंभन दास की अमर रचना है गई। या मैं श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण के संग भारतीय संतन के स्वाभिमान को विलक्षण उदाहरण पायो जाए है। उनने गायो संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पन्हिया टूटी बिसर गयो हरि नाम जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी पर नाम कुंभन दास लाल गिरधर बिनु यह सब झूठो धाम। परमानंद दास कन्नौज के निवासी है पर कृष्ण के परम उपासक हते। ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कविन में इनको अग्रणी स्थान है। इनको प्रसिद्ध पद रासलीलान में बहुत गायो जाए है या में माखन खाते भय कन्हैया को मधुर वर्णन भयो है। अरे मेरी भरी मटुकिया ले गयो री कछु खायो कछु ग्वालन ने खवायो रीति कर्मुई दे गयो री परमानंद दास को ठाकुर गूठा दिखाए रस ले गयो री। आज हु ब्रिज के मंदिरन में शयन के समय इनको यह पद बड़े भाव सो गायो जाए है या में राधिका की छवि को वर्णन है। धन धन राधिका के चरण सुभग शीतल अतिश कोमल कमल के सी वरण दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण। कृष्णदास इनको जन्म गुजरात के अहमदाबाद में भयो। बाल्यावस्था में ही ब्रिज में आए गए और भजन कीर्तन गावे लगे। संगीत के बड़े जानकार हते। गोवर्धन नाथ की छवि पे इनको मन ऐसो अटक्यो कि वाही में रम्यो रह गयो। या छवि को वर्णन करते भये इनने यह छंद लिखो है मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो ललित त्रिभंगी अंगन पर चल गयो तहां ही अटक्यो कृष्णदास कियो प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। विठलनाथ जी के शिष्य नंददास ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि भये हैं। अष्टछाप के सबसे चतुर कवि कहे जाए हैं।

0: इनके काव्य में अद्भुत विलक्षणता ही दार्शनिक चिंतन में बड़ी प्रबलता देखी जाए। भंवर गीत इनकी श्रेष्ठ रचना है। सगुण भक्ति की अकाट्य स्थापना इनने इन शब्दन में करी है। जो उनके गुण नाहे और गुण भये कहाते, बीज बिना तरु जमे मोह तुम कहो कहाते। वागुण की परछाहरी माया दर्पण बीच, गुणते गुण न्यारे भये अमल वारी ज्यो कीच, सखा सुन श्याम के। गोविंद स्वामी भरतपुर के रहविवारे हते, गिरिराज जी की तलहटी में रहते, कृष्ण की लीलान को गान करते, कृष्ण को लाड़ लड़ाते, कृष्ण की माधुरी को वर्णन करते भये इनने लिखो है, प्रात समय उठ जसमत जननी, गिरधर सुत को उवट नवावत, कर सिंगार बसन भूषण सज, फूलन रच रच पाग बनावत। छीत स्वामी मथुरा के पंडा है, विठल नाथ जी ते ऐसी छनी के इन्हीं के शिष्य है गए। इनकी रचनान में ब्रजवाणी की मधुरता छलकती सी दिखाई पड़े। भोर भये नवकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरग जी माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिन गुण माल विराजत उर पर नक्षत द्वेज चंद अनुहारी, छीत स्वामी जब चितये मोतन तब हो निरख गई बलिहारी। चतुर्भुजदास कुम्भनदास जी के पुत्र है, विठल नाथ जी ने इनको अपनो शिष्य बनाई लियो, श्रीनाथ जी की सेवा करते और कृष्ण लीलान को वर्णन करते रहते। इनको बहुत ही मन मोह लेवी बारो छंद है, जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हरे सुत के करतब मोपे कहत कहे नहीं जात, भाजन फोर ढारे सब गोरस ले माखन दधि खात, दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो कहत कहत सकुचात। श्रोताओं, या प्रकार हम देखे हैं कि वल्लभ संप्रदाय के इन आठ कविन ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी को विविध छविन सो वर्णित करो है। जय जय श्री राधे।
1: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते, जाको विषय हो अष्ट छाप के कवियों का कृष्ण रूप माधुरी वर्णन, आलेख हो मोनिश कमल जी को और वाचन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
1: आपको बहुत बहुत आभार। देखो आपने कितनी सुंदर वार्ता मोनिश कमल जी की हमारे श्रोता भैया बहनान को सुनाई है। कितने व्यापक वर्णन यहाँ में बालक कृष्ण की बाल लीलान को हुआ है, उनके खान पान को हुआ है और उनकी रूप माधुरी को हुआ है। तो निश्चित रूप से देखो, हमें तो पूरी आशा है कि हमारे जो भी श्रोता भैया बहना सुन रहे हैं उनके मन को भाई होगी।
0: जी हाँ चंपा, इतने सुंदर सुंदर उदाहरण उनने दिए, मुकु तो पढ़ते पढ़ते ही बड़ो आनंद आ रहे हो।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, जो एक भाव बन जावे है ना, बाकी वानगी तो देखते ही बन रही हती। नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
1: देखो जो ये हम उत्सवन की बात कर रहे हैं, इतनी लीलान की बात कर रहे हैं, तो जो ये जेठ मास को महीना अब चल रहे हो है ना, तो ये महीना ऐसा होवे कि बालकन को ज्यादा पढ़ाई लिखाई के काम काज ते छुट्टी मिल जावे है। जो घर के अंदर और बाहर बालक क्रीडान ने करे ना, वो कहीं ना कहीं कृष्ण के व्यक्तित्व ते उनने ग्रहण करी हो, मैं ऐसा प्रतीत होवे है।
0: जी हाँ चंपा जी, देखो किशोर वय के जो बालक है वे तो या समय और ज्यादा अपनी परीक्षा की तैयारी या कोई ना कोई आगे बढ़वे की सोचे हैं, और जो छोटे बालक हैं वे तो कन्हैया स्वरूप ही है जाएं, उनको तो अपनी नानी अपनी दादी अपनी मौसी और गांव में सबके संग खेलवो, यही में उनकी रुचि हुई है।
1: और नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
1: सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि जैसे जो ये जेठ मास को महीना है ना, तो ये जल पर्व को महीना है, क्योंकि यहाँ में गंगा दशहरा अब आईवे बारो है, कितने मनोरथ है ब्रज में, वो नौका बिहार के होंगे, जल उत्सवन के होंगे और फूल बंगलान के तो और फूल कलीन के तो जो उत्सव हैं उनकी जो विविधता है ना, वो श्रद्धा के धरातल पे ना खूब देखवे को रोज में लई रही है।
0: जी हाँ चंपा जी, और यही समय आप देखो ये जो जासों ब्रिज में कहें खरबूजो खानी एकादशी, या जल को दान करें पंखा दें, ये जो सब के काज है कि हम कौन कौन को जल पिवाए दें, पूरे जेठ मास में तो या बात की प्रतीक्षा ही रहे कि हम कहूं प्याऊ लगा में और जल पिवा में।
1: और नृत्य गोपाल जी, अब की बार जो जेठ मास है ये लिए खास न्यू है गो है कई पूरे 60 दिन आन को है, क्योंकि जेठ के जो महीना है वो दो पड़ रहे हैं, उनमें ते 30 दिना यानी कि एक महीना पूरा अधिक मास को होगो, तो बाकी पर्व उत्सवन की तो महिमा ही कछु और होगी। पर हम चलते चलते भी अपने श्रोता भैया बहनान को बता में तो हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे जो सालवर के उत्सव है उनमें होरी है, दिवारी है, शरद है, बसंत है, हिंडोरा है, पालना है, ये सब भी अधिक मास में होंगे।
0: हाँ जी चंपा, ये जो जेठ मास के उत्सव होंगे और अधिक मास में होंगे, इनकी छवि और इनको जो अपना स्वरूप है वह बहुत आकर्षित कर रहे हैं, उनकी ही तैयारी अब शुरू हो गई है।
1: नृत्य गोपाल जी ठीक है, वहाँ तैयारी शुरू हो रही है, और चलो हम तो अब तैयारी करें अपने प्यारे भैया बहनान को एक लोकगीत सुनाए वे की।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं प्यारा सा लोकगीत। और चंपा जी, आप तनिक देखो तो सही, कहूँ घड़ी की ओर क्यों ना देखें आप।
1: नृत्य गोपाल जी, हमने देख लियो है और संकेत हो रहो है कि अब हमें कार्यक्रम समापन की ओर लेके चलनो है। तो प्यारे भैया बहनाओं, इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
0: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जाइवी की अनुमति प्रदान करें।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब कार्यक्रम का वक्त हुआ है एक नाटक का। नाटक का नाम है आओ झूठ बोलें। मूल लेखक हैं सादत हसन मंटो, निर्देशन प्रस्तुति है काजल सूरी की। तो आइए सुनते हैं ये नाटक।
1: सुनते हैं नाटक आओ झूठ बोले। इस नाटक के लेखक हैं सादत हसन मंटो, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आओ झूठ बोले।
2: अरे तुम्हें बैठे बैठे ये क्या सूझी?
1: कहा ना आओ झूठ बोले।
2: फिर वही झूठ बोले। अरे भाई किससे झूठ बोले? और फिर तुमने मुझे
1: कोई झूठा समझा है? यही कहना चाहते हैं ना?
2: हाँ, और क्या।
1: तो अपने अल्फाज फौरन वापस ले लो।
2: वो क्यों, मैंने झूठ थोड़ा ही बोला है।
1: बात को बढ़ाओ नहीं, मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूँ। जो कह रही हूँ सीधे मुझसे मान लो, आओ झूठ बोले।
2: पर सवाल ये है कि हम झूठ क्यों बोले? भाई मेरा दिमाग फिरा है जो बैठे बैठे झूठ बोलना शुरू कर दूं।
1: ऐसा करो खड़े हो जाओ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम ज्यादातर कोट पहनकर क्लब जाते वक्त ही झूठ बोला करते हो।
2: लाजवंती लाजवंती, तुम्हें आज क्या हो गया है?
1: मैं चाहती हूँ हम तुम दोनों झूठ बोलें। आओ कभी कभार मेरी बात मान भी लिया करो।
2: तुम अकेली झूठ बोलो, मुझे साथ क्यों मिलाती हो?
1: मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ और तुम इस फन में खूब ताक हो। मैं तुम्हारी शागिर्द बनना चाहती हूँ।
2: लाजवंती, मैं तुमसे एक बात कहूँ?
1: कहो।
2: क्या कहूँ, कैसे कहूँ?
1: ये तुम्हें बड़ी बुरी आदत है, बात करते करते बीच में रुक क्यों जाया करते हो?
2: तो

0: कहूं?
1: हाँ कहो।
0: नहीं नहीं मैं नहीं कहता।
1: दुर्दफा कैसी बुरी आदत है।
0: तुम समझोगी मैं झूठ बोल रहा हूँ।
1: तुम मुंह से फूटो तो मैं तुम्हारी झूठ को भी सच मान लूंगी। लो अब कह भी डालो क्या कहना है।
0: मुझे तुमसे बहुत प्रेम है।
1: अब लगे चोचले बकार ने। चलो बहुत किया मान भी लिया, पर वो चुड़ैल जिसका फोटो तुम अपने पॉकेट बुक में चिपकाए फिरते हो।
0: चुड़ैल पॉकेट बुक? कौन सी पॉकेट बुक में?
1: वही जो इस वक्त सरकार के कोट की अंदर वाली जेब में पड़ी है और जिसकी तरफ अभी अभी आपका दाहिना हाथ बेअख्तियार उठ गया था।
0: कोट की अंदर वाली पॉकेट बुक? हाँ समझा समझा, तुम पॉकेट बुक की बात कर रही हो।
1: मैं पॉकेट बुक की ही बात कर रही थी, पर मैं दोबारा इसका जिक्र छेड़ना नहीं चाहती।
0: लेकिन मुझे तुम्हारे दिल से शुबा भी तो दूर करना है। कोट की अंदर वाली जेब में जो फोटो है ना, वो एक
1: एक्ट्रेस का है।
0: एक्ट्रेस? एक्ट्रेस का है
1: जिससे कल ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसके घर में कल तुम दफ्तर से उठकर चाय पीने भी गए थे। नारायण साहब भी आपके साथ थे।
2: तो बड़ी उम्र है मेरी, इधर आपने मेरा नाम लिया और उधर मैं कमरे में दाखिल हुआ। जी हाँ भाभी जान, मैं इसके साथ था। पर किस्सा ये है, किस्सा ये है कि मिस
1: उर्मिला देवी।
0: अरे अरे
2: शुक्रिया भाभी जान। तो किस्सा ये है कि मिस उर्मिला देवी के यहाँ मेरा जाना ऐसा ही था
1: जैसा एक एक्ट्रेस की शैदाई का हो सकता है।
2: यकीनन यकीनन आप फौरन ही समझ गई। दरअसल समझाने का सलीका होना चाहिए। किशोर तुम समझोगे मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, पर यह वाकया है कि तुम्हें बात करने का बिल्कुल बिल्कुल ढंग नहीं आता। मैंने चंद लफ्जों में ही सारा झगड़ा चुका दिया। तो किस्सा यह है, अरे भाई कोई बात तो करो, चुप क्यों हो गए? अरे भाभी जान आप भी गुमसुम बैठी हो, मालूम होता है मुंह में घुनघुनिया भरी है, कोई बात तो कीजिए।
1: आइए झूठ बोले।
2: झूठ? यानी
0: ये डेढ़ घंटे से मुझे इस बात पर मजबूर कर रही है और पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गई है कि मैं झूठ बोलूं। अब तुमसे भी यही कहती है, मालूम होता है इनका
1: दिमाग दिमाग बहक गया है। कह दो कहती क्यों नहीं?
0: अरे भाई तुम तो नाहक बाल की खाल निकालती हो, खुद ही फाड़ती हो, खुद ही रफू करती हो।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अब तुम अपना लेक्चर शुरू मत करो, मुझे इनसे पूछने दो। हाँ तो भाभी जान इरशाद।
1: मैंने आपसे कहा कि आइए झूठ बोले।
2: बंदा हाजिर है, पर शर्त यह है कि आप भी मेरा साथ दें।
1: शुरू कीजिए, मैं साथ दूंगी, लड़ से लड़ मिलाती रहूंगी।
2: तो लीजिए, इस वक्त 4 बजे हैं।
1: ये तो आप सच बोल रहे हैं।
2: हाँ जी हाँ, सच ही के बाद तो झूठ शुरू होता है, अब झूठ ही झूठ शुरू होगा।
1: फरमाइए।
2: इस वक्त 4 बजे हैं। अब मेरे और किशोर के दरमियान बातें शुरू होंगी। मैं किशोर से कहूंगा चलो भाई चले, हॉकी का मैच देखने का वक्त हो गया है, उठो उठो जल्दी करो, और किशोर आपके मुंह की तरफ देखेगा गोया इजाजत मांग रहा हूं। इस पर आप क्या कहेंगी?
1: मैं कहूंगी आप शौक से जा सकते हैं, मुझसे पूछकर जाने की क्या जरूरत है। मर्दों को खेल कूद में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे सेहत भी अच्छी रहती है।
0: काश ये मीठे मीठे बोल सच्चे होते।
2: अरे भाई तुम बीच में ना बोलो, मुझे और इनको झूठ बोलने दो। हाँ
0: मुझे भी इस झूठ में शामिल कर लो, इस तरह वो नरमी जो आज तक मुझे नसीब नहीं हुई शायद मिल जाए, गोया वो झूठ मूठ की ही होगी, पर ना होने से तो बेहतर है।
1: आपको रोका किसने है बोलिए? पर ये तो झूठ मूठ का झूठ है और आप ठहरे सच्चा झूठ बोलने वाले, क्या आपको मुश्किल महसूस नहीं होगी?
2: भाभी जान ऐसी सच्ची बातें बाद में शुरू कीजिएगा, इस वक्त हम सब झूठे के झूठे हैं।
1: आप फिर से शुरू कीजिए।
2: तो लीजिए ध्यान से सुनिए, इस वक्त 4 बजे हैं, अब मेरे और किशोर के दरमियान बातें शुरू होगी। मैं किशोर से कहूंगा चलो भाई चले हैं, हॉकी का मैच देखने का वक्त हो गया है, उठो उठो जल्दी करो, और किशोर आपके मुंह की तरफ देखेगा गोया इजाजत मांग रहा हूं। इस पर आप क्या कहेंगे?
0: ठहरो ठहरो ठहरो लाजवंती,

0: तुमने जो कुछ कहा था मैं बोलता हूं, मुझे एक एक लफ्ज याद है। तुमने कहा था आप शौक से जा सकते हैं, मुझसे पूछकर जाने की क्या जरूरत है। मर्दों को खेल कूद में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। क्यों, यही कहा था ना तुमने?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके बाद हम दोनों मैच देखने चले गए। शाम के 7 बजे वापस आए तो आपने
2: चाय तैयार की, आप दोनों को पिलाई। चूंकि ये थके हुए थे इसलिए मैंने इनकी बूट उतारे, जुराबे उतारे, इनके पैरों की उंगलियां चटकाई और
0: बस बस बस बस इतना ही काफी है। ज्यादा शक्कर न डालो लाजवंती, सब मजाक किरकिरा हो जाएगा। नारायण, क्या वो दिन भी आएगा जब मेरे लिए ये घर सचमुच स्वर्ग बन जाएगा?
1: देखो भाई, मुझे इस वक्त झूठ बोलना है, समझे? ऐसी काबिले रहम सूरत मत बनाओ। तुम पर तरस खाकर अगर मेरे मुंह से कोई सच्ची बात निकल गई तो मेरा जिम्मा नहीं, समझे?
0: समझता हूँ, समझता हूँ, लेकिन जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बहुत चालाक है। जो बात तुम्हारे दिल में है ना, वो उसके नाखूनों में है।
2: देखो जी, कहे

0: पति की तरह आपका शुक्रिया अदा किया। फिर जब इसकी थकावट अच्छी तरह से दूर हो गई तो ये आपसे कहने लगा, अजीब मुसीबत है लाजवंती, इन अफसरों ने नाक में दम कर रखा है। मैच के दौरान ग्राउंड में बड़े साहब मिल गए और कहने लगे कि आज चंद जरूरी कागजात तैयार करना है, इसलिए ठीक 7 बजे मेरी कोठी पर पहुंच जाना। अब तुम ही बताओ लाज, स्टेनोटाइपिस्ट की जिंदगी क्या गुलामों से बदतर नहीं? जी तो चाहता है कि आज 2 घड़ी तुम्हारे पास बैठूं और तुमसे वो गजल सुनूं, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, मगर
1: और मैंने इनको इस तरह कुड़ते हुए देखा तो कहा, अफसरों को नाराज नहीं करना चाहिए मुन्ने के पिता, आप जाइए, मेरे लिए आप इतनी चिंता न करें। मैं जानती हूँ आपको बहुत काम करना पड़ता है, पर अब हो भी क्या सकता है, इसके सिवा चारा ही क्या है।
2: हाय, क्या सुहाना सपना है, मैं इस हमदर्दी के कुर्बान, इस शोहर नवाजी पर फिदा।
0: जी भाभी जान, तो आपने इससे ये कहा आप जाइए तो ये कोट वोट पहनकर बाहर निकला, मैं अभी इसके पीछे चल दिया क्योंकि मेरा यहाँ बैठे रहना बिल्कुल फिजूल था, क्यों भाभी?
1: जी हाँ, फिर आपको भी तो किसी काम से जाना था ना।
0: अरे मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया। मेरा ख्याल है अब हमें सच बोलना चाहिए, झूठ हम काफी बोल चुके, क्या ख्याल है भाभी?
1: मेरा शौक तो पूरा हो गया, अब अगर आपका जी भर गया हो तो आप सच बोलना शुरू कर दीजिए, पर ये ध्यान रहे कि उसमें झूठ की थोड़ी सी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए।
0: अरे तौबा तौबा तौबा कीजिए भाभी जान, ये तो मजाक मजाक में और आपको खुश करने के लिए मैंने झूठ के पुल बांधे थे ना, मुझे तो झूठ से सख्त नफरत है। हाँ
1: जी हाँ जी हाँ, मैं खूब जानती हूँ।
0: तो आप यकीन नहीं करती, पर आपको याद है कि पिछले हफ्ते जब आपको इन्होंने किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर रात को थिएटर जाने की तैयारी शुरू की थी तो मैंने आपसे साफ साफ बात कह दी थी, और अभी अभी जब आपने मुझसे पूछा कि मैं उर्मिला देवी फिल्म एक्ट्रेस के यहाँ चाय पीने गया था या नहीं, तो मैंने फौरन इकरार कर लिया था। दरअसल सच बोलने से मैं कभी नहीं घबराया। और देखिए, अगर आपके ये अब आपसे ये कहें कि इन्हें 6 बजे अपने बड़े साहब की कोठी पर कागजात तैयार करने जाना है तो मैं आपसे फौरन कह दूंगा कि यह गलत है, इसके बड़े साहब मेरे दोस्त हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज इसको 6 बजे नहीं बल्कि 7:30 बजे बुलाया गया है और ये 1.5 घंटा इधर उधर सैर सपाटे में गुजारना चाहता है।
1: मैंने कब कहा है कि आप झूठ बोलते हैं, वो तो मैं जरा इन्हें सता रही थी, आप में और इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है।
0: आपने कहा तो सच है पर किशोर खफा हो जाएगा, खैर कोई अर्ज नहीं। देखिए, कल जो इसने मुझे उस उर्मिला देवी के यहाँ जाने को कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा मियाँ तुम्हें अपनी बीवी का डर ना होगा, पर मुझे है, मैं ऐसी औरतों के पास तक भटकना नहीं चाहता, मगर इसने इतना जोर दिया कि मुझे जाना ही पड़ा, मैं ठिठका भी था मगर ये मुझे घसीट कर ले गया।
2: नारायण तुम झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ, तुम्हारी बात का अव्वल झूठ आखिर झूठ।
0: जी हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, परमात्मा के लिए तुम सच ना बोलना।
2: पर सवाल ये है कि झूठ बोलने से मेरा कौन सा काम बन गया जो अब मैं सच बोलना छोड़ दूं? ये देवी जो मेरे पास बैठी है मेरे जीवन पर मार्शल लॉ बनकर रह गई है, झूठ बोलूं तो वो भी सेंसर हो जाता है और सच बोलूं तो उस पर भी दफा 144 लग जाती है। अब बोलो मैं करूं तो क्या करूं, मेरा तो ये हाल है जैसे पिंजरे में पंछी, बस फड़फड़ा के रह जाता है। अब अगर इससे कहूं कि उठो और जल्दी से चाय बनाओ,
1: अच्छा,
2: क्योंकि मुझे 7 बजे साहब ने कोठी पर बुलाया, तो बस समझ लो जैसे भिड़ों के छत्ते को छेड़ दिया और डंक पर डंक पढ़ने लगे।
1: अच्छा,
2: मुंह से उफ तक करने की भी तो इजाजत नहीं।
0: भाई तुम झूठ बोल रहे हो, बड़े साहब ने तुम्हें 7:30 बजे बुलाया है, इसी झूठ पर तो सारा फसाद है।
2: देखो देखो देखो तुम भी इसकी तरफदारी करने लगे हो। हाँ मैं पूछता हूँ, 7 और 7:30 में फर्क ही क्या है?
0: वाह भाई वाह, 1/2 घंटे का तुम्हारे नजदीक कोई फर्क ही नहीं। अरे जनाब, 1/4 घंटे में तो दुनिया इधर की उधर हो सकती है और तुम 1/2 घंटे को यूं ही बेकार समझ रहे हो। सुना सुना भाभी आपने?
1: सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ।
0: ये बंदा वक्त में भी फजूल खर्ची करने से बाज नहीं आता।
1: मैं आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही हूँ नारायण भाई।

0: तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, वरना बंदा किस लायक है।
1: नारायण साहब, इन्हें आज क्या सचमुच कहीं जाना है? और अगर जाना है तो ये साफ साफ कह दें, मैं क्यों रोकने लगी भला?
2: जाना है बाबा, जाना है, बड़े साहब की कोठी पर जाना है, कहीं ऐश करने नहीं जाना, समझी?
1: मैं मिस्टर नारायण से बात कर रही हूँ।
0: सुनो किशोर, भाभी जान मिस्टर नारायण से बात कर रही है, तुम खामोश रहो। हाँ तो भाभी जान, आपके सवाल का जवाब ये है कि इसे सचमुच बड़े साहब की कोठी पर जाना है, 7 बजे नहीं 7:30 बजे, और इसे वहां ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का काम है, यानी ठीक 11 बजे इसे यहाँ वापस पहुंच जाना चाहिए।
2: और अगर वहाँ 3 के बजाय 4 घंटे सर्फ हो गए तो?
0: ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारा बड़ा साहब रात को ठीक 11 बजे सो जाया करता है, अगर वो 11 बजे न सोए तो फिर उसे रात भर नींद नहीं आती।
1: तो फिर मैं इन्हें इजाजत दे दूं?
0: मैं आपको मजबूर नहीं करता, पर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आपको इजाजत दे देनी चाहिए।
1: ठीक है, तो चाय पीने के बाद आप चले जाएं।
2: लाजवंती, क्या तुमने सचमुच इजाजत दे दी?
1: कहती तो हूँ जाइए, इस पे मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? आपको काम पर जाना है, कहीं ऐश करने थोड़ी जाना है। तो चाय के साथ अंडों का हलवा बना दो, थोड़ी सी बिस्किट भी हैं। जाने वहाँ आपको खाना मिले ना मिले, इसलिए अच्छा होगा ना यहीं से कुछ खा के जाइए।
2: नहीं नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, मैं बस खाली चाय पीऊंगा।
1: और आप नारायण साहब?
0: मैं सहबहर को कुछ खाया नहीं करता, डाइटिंग कर रहा हूँ ना।
1: ओह, तो आपके लिए भी खाली चाय ही ले आऊं?
0: जी।
2: लाजवंती, चाय से ज्यादा जरूरी मेरा डिनर सूट है, उसको प्रेस करवाना है।
1: डिनर सूट?
0: हाँ भाभी जान, किशोर ठीक कह रहा है, दरअसल वहाँ कोठी पर दूसरे अफसर भी आएंगे और इसे भी उनके साथ डिनर खाना होगा। डिनर सूट में जाएगा तो अच्छा रहेगा, उन लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा।
2: तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो?
1: डिनर सूट?
2: हाँ।
1: आपका मतलब उसी सूट से है ना जो काली सर्च का बना हुआ?
2: हाँ,
1: है दुम कटा सा।
2: हाँ हाँ, वही, उसी को डिनर सूट कहते हैं, उसे निकलवा कर प्रेस करवा दो।
1: वही सूट ना जो आपने 3 साल पहले बनवाया था?
2: हाँ।
1: वही जिसके अस्तर में एक बार आपने मुझसे रफू करवाया था?
2: हाँ हाँ वही।
1: और क्यों? वो जिसके साथ आप सफेद रंग वाली बो बांधा करते हैं?
2: वही वही, उसे ट्रंक में से निकालो और प्रेस करवा दो।
1: आपने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? अब वक्त के वक्त आपको याद आया है, ये तो बड़ी गलती हो गई ना।
2: पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्या नहीं कहा?
1: अब मुझे क्या मालूम था कि वो आपके काम का है?
2: क्यों क्यों क्यों, उसे क्या हुआ? वो काम का नहीं था क्या?
1: अरे मैंने आज सुबह जब ट्रंक खोला तो देखा आपके सूट पे कीड़े लग रहे हैं, सो मैंने उसे उठाकर दर्जी को दे दिया और उसे काट छांट के मुन्ना के 2 कोट और 2 निक्कर बनवा दी।
2: मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बनवा दिए मेरे डिनर सूट में से? तुम ये क्या कह रही हो लाजवंती? मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरा सूट दर्जी को कैसे दे सकती हो, और वो भी मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बनवाने के लिए?
1: वाह, ये तो खूब कही आपने। अरे जनाब, जब हर दूसरे तीसरे महीने मेरी किसी ना किसी साड़ी से अपनी धोती बना लिया करते हो तो क्या मैं इसी तरह से चिल्लाया करती हूँ? और अब आप अपनी शेरवानी के नीचे अक्सर मेरा कुर्ता पहन लेते हैं तो भी मैं कुछ नहीं बोलती, बस चुप रह जाती हूँ।
2: अरे तुम्हारी साड़ी और कुर्ता गए भाड़ में, उनसे मेरे सूट का मुकाबला करती हो? लाजवंती, तुम्हारी ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने उस सूट पर पूरे 150 रुपए खर्च किए थे।
1: और जिस साड़ी से मैंने आपके कमरे की खिड़कियों के पर्दे बना दिए थे वो भी 150 रुपए की तैयार हुई थी। उसकी जरदोजी अगर नोच कर बेची जाती जब भी 30-40 रुपए तो कहीं नहीं गए थे। हाँ,
2: वो साड़ी 2 बरस पुरानी थी
1: और आपका सूट 3 और 3 9 बरस पुराना था। हाँ
2: लाजवंती, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, समझी? तुम बहुत हठ धर्म हो गई हो।
1: अच्छा,
2: आज तुमने मेरे डिनर सूट से मुन्ने के लिए 2 कोट और 2 नेकर बनवाने का ऑर्डर दिया।
1: हाँ दिया।
2: कल तुम मेरी मोटर से उसके लिए झूला बनवाने का हुक्म दे दोगी।
1: क्या?
2: परसों ये घर किसी के हवाले कर दोगी और तरसों मुझे नीलाम पर चढ़ा दोगी।
1: हाय राम,
2: मैं खूब मुफ्त का तुम्हारे हाथ लग गया हूँ। आखिर ये

0: ये क्या तमाशा है?
1: तमाशा?
0: मेरा सूट वैसे का वैसा मौजूद है, जल्दी से उसे निकालकर प्रेस करा दो। मुझे बड़े साहब के घर 7 बजे पहुंच जाना चाहिए।
2: 7 नहीं 7:30।
0: लो वो फोन भी आ गया।
3: ये आपका फोन नहीं, मेरी किसी सहेली का फोन है।
4: हेलो जी, कौन? हाँ हाँ, 4 5 9 8 6। जी हाँ, मैं खैरियत से हूँ, मगर उनका मिजाज आज कुछ बिगड़ा हुआ है। हाँ, थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं। क्यों? जी हाँ, मैंने गलती से उनका डिनर सूट बेकार समझकर आज दर्जी को दे दिया। हाँ, और उसे मुन्ने के 2 कोट और निक्कर बनवा दी, इसलिए वो आज शाम को कहीं बाहर नहीं निकल सकते। क्या कहा? नहीं नहीं, अगर आप फरमाएं तो उनके बदले मैं हाजिर हो जाऊं। बस तो इधर से भी तस्लीम।
2: अरे 6 बज गए, मुझे तो एक जरूरी काम से जाना था। भाई मैं चला। अच्छा भाभी जान, अब फिर कभी हाजिर होऊंगा, मैं चलता हूँ।
4: अरे ठहरिए तो सही।
0: अरे जाने दो उसे। तुम ये बताओ, फोन पर कौन था?
4: कोई नहीं, ऐसे ही।
0: आखिर मुझे क्यों नहीं बताती लाजवंती?
4: अरे कुछ नहीं भाई।
0: नहीं छिपाती क्यों हो? अरे बताओ तो कौन था?
4: आपको क्या, कोई भी हो, जाइए मैं नहीं बताती। और कहिए तो बता दूं, पर आप
0: बिगड़ तो ना जाइएगा। और अगर मैं बिगड़ भी गया तो तुम्हारा क्या बना लूंगा। अच्छा कहो कौन था?
4: लो बताए देती हूँ, पर देखिए हत्थे से उखड़ा ना जाइएगा, और वचन दीजिए।
0: अब कहो भी कौन था?
4: अरे मेरी सहेली उर्मिला देवी, फिल्म एक्ट्रेस। नाराज हो गई है मुझसे? काश डिनर सूट की बजाय उसमें कीड़े पड़ जाते और आप बड़े साहब की कोठी तो जा पाते। क्यों जी, चोर कैसे पकड़ा ये उर्मिला देवी?
0: जाए भाड़ में और मैं जाऊं चूल्हे में।
5: बीबी जी।
4: अरे दुर्गा। हाँ बोलो, क्या बात है?
5: बीबी जी मैं ले आई हूँ।
4: ले आई?
0: क्या ले आई हो?
5: बीबी जी आपने डिनर सूट इस्त्री करवाने के लिए दिया था ना, वो लॉन्ड्री से ले आई हूँ।
6: जाओ दुर्गा जाओ, इसे दीन मोहम्मद टेलर मास्टर को दे आओ कि वो इसमें से मुन्ने के 2 कोट और नेकर बना दे।
7: अभी आप सुन रहे थे नाटक आओ झूठ बोले। इस नाटक के लेखक थे सादत हसन मंटो। भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर रितु राजपूत, किशोर सहजानी और सुनील लोहिया। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
3: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले

0: रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगराहट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हुई थी। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सवेरे 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आज से 4 दिन के दौरे पर म्यांमार में हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी म्यांमार के कमांडर इन चीफ जनरल ये विन ऊ, रक्षा मंत्री जनरल यू टून आंग और म्यांमार सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में एक बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। In Chhattisgarh, 3 security personnel lost their lives and 1 personnel was injured in an IED blast near the Kankade Narayanpur district border today. The incident occurred while personnel of the District Reserve Guard were on an operation to defuse an improvised explosive device. According to police, a DRG team had been employed for demining, area domination and search operations under the Chote Bethia police station limits. During the operation, the IED exploded while it was being defused. Inspector Sukhram Vatti and Constables Krishna Komra and Sanjay Gharpale sustained critical injuries. They later succumbed to injuries. Another injured constable, Parmanand Komra, is undergoing treatment. Inspector General of Police Bastar Range Sundar Raj P said that based on inputs from surrendered Maoists and other sources, a large number of IEDs have been recovered and neutralized in the Bastar Division in recent months. In West Bengal, repolling is underway at 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim and 4 in Diamond Harbour constituencies. Over 72% voting has been recorded till 3 p.m. Polling has remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joy Mallya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. During the hearing, Justice Bagchi observed that the choice of officials rests with the Election Commission. He noted that every counting table already has agents, supervisors and observers and questioned concerns over the presence of central government employees. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted four parliamentary committees for the year 2026-27. Lok Sabha BJP MP Dr. Sanjay Jaiswal has been appointed as the chairperson of the Committee of Estimates. The Committee on Public Undertakings will be headed by BJP MP Bai Jayant Panda. Mr. Birla has appointed the Congress MP from Lok Sabha KC Venugopal as the chairperson of the Public Accounts Committee, while the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be headed by Lok Sabha BJP MP Phagan Singh Kulaste. The vibrant Gujarat Regional Summit concluded at Surat in Gujarat today with the signing of a record 2,792 Memorandums of Understanding worth over 3,53,000 crore rupees. Addressing the valedictory session, Union Minister J.P. Nadda said, India must turn global supply chain disruptions into opportunities and emerge as a self-reliant manufacturing hub. He stressed that building resilience and boosting manufacturing capacity are among the country's top priorities, adding that such regional summits play a key role in achieving the vision of a Viksit Bharat. Speaking on the occasion, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi said, the agreements signed during the summit are expected to generate direct employment for over 2.82 lakh youth in the next 3 years. Secretary of the Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar held a review meeting today in Patna with various media units of Bihar and Jharkhand. Officials from the Press Information Bureau, Central Bureau of Communication, Akashvani and Doordarshan were present at the meeting. During the meeting, Mr. Kumar instructed all media units to work with better coordination. And that is the end of this news bulletin.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 4:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। खोए हुए व्यक्ति का नाम जाह्नवी, डॉटर ऑफ महप सिंह, उम्र 21 वर्ष है, ये महिला हैं। शरीर की बनावट सामान्य है, कद 6 फीट 3 इंच लगभग है। इनको अंतिम बार देखा गया था 27/1/2026 में रवि विहार न्यू विकास नगर थाना लोनी गाज़ियाबाद के पास देखा गया था इन्हें, और ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की अगर जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें, SHO थाना लोनी गाज़ियाबाद। और प्रार्थी का पूरा पता है, महप सिंह, सन ऑफ रामचंद्र सिंह, निवासी रवि विहार न्यू विकास नगर लोनी गाज़ियाबाद। खोए हुए व्यक्ति का नाम रोशनी, डॉटर ऑफ आज़ाद, निवासी एफ ब्लॉक साहिबाबाद गाज़ियाबाद, आयु 19 वर्ष,

0: ये महिला है, शरीर की बनावट सामान्य है, कद 5 फुट 2 इंच है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको प्राप्त हो, कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। SHO थाना, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद। और इनको अंतिम बार देखा गया था 25/2/2026 को अपने घर पे। खोए हुए व्यक्ति का नाम वर्षा देवी, वाइफ ऑफ मुकेश कुमार। इनकी उम्र है 31 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच। शरीर की बनावट, इनका गोल चेहरा है और हृष्ट पुष्ट शरीर है इनका। और इनको अंतिम बार देखा गया था 4/3/2026 को भगरौला गांव, भगरौला गुरुग्राम से में। और इनके बारे में किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट गुरुग्राम। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम कविता, पुत्री राकेश। इनकी उम्र है 19 वर्ष, ये महिला है। शरीर की बनावट दुबला पतला है, कद 5 फिट है। इनके माथे पर एक लंबा सा निशान बना हुआ है। और इनको अंतिम बार ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं और अंतिम बार इनको घर में ही देखा गया है। और इनके बारे में अगर किसी को कोई भी जानकारी प्राप्त हो और जानकारी देनी हो तो प्रार्थी का पूरा नाम और पता है, अंशु पत्नी राकेश, निवासी निशांत कॉलोनी, थाना ट्रोनिका सिटी, गाज़ियाबाद। और आप इनके बारे में जानकारी SHO थाना ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद में भी दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम राखी, आयु 25 वर्ष, ये महिला हैं। शरीर की बनावट पतला दुबला है इनका, कद करीब 5 फिट है। और इनको आखिरी बार राम पार्क एक्सटेंशन ट्रोनिका सिटी लोनी गाज़ियाबाद में देखा गया था। और ये घर से रुपए लेकर मोमोज लेने गई थी और लौट कर नहीं आई। प्रार्थी का पूरा नाम है, नाम और पता है, तुलाराम निवासी, राम पार्क एक्सटेंशन ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद। और इनके बारे में किसी प्रकार की और जानकारी अगर देनी है या आपको प्राप्त हो तो आप हमें इस पते पर सूचित कर सकते हैं, SHO थाना ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम सानिया, पुत्री सलमुद्दीन। उम्र 19 वर्ष, ये महिला हैं। शरीर की बनावट सामान्य है, कद 5 फिट है इनका। और इनको अंतिम बार 17/2/2026 में ट्रोनिका सिटी फैक्ट्री से काम करके घर जाने के लिए निकली थी और वो घर नहीं पहुंची। और इनके बारे में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी देनी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें, SHO थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाज़ियाबाद। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम अनुराधा, वाइफ ऑफ राहुल। उम्र इनकी है 25 वर्ष और ये शरीर से थोड़ी मोटी हैं। कद इनका 5 फुट 3 इंच है। और इनको अंतिम बार इतवार बाज़ार लक्ष्मी गार्डन लोनी बॉर्डर गाज़ियाबाद के पास देखा गया था। और इनके साथ 2.5 वर्षीय इनकी पुत्री भी हैं। और इनके बारे में अगर किसी को भी किसी प्रकार की भी जानकारी देनी हो तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें, SHO थाना लोनी बॉर्डर गाज़ियाबाद। और ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम सुहाना, उम्र 18 वर्ष 2 माह, ये महिला हैं। शरीर की बनावट दुबला पतला है, कद 5 फीट 1 इंच है और इनको अंतिम बार 3/3/2026 को मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार कॉलोनी में देखा गया है। और इनके बारे में भी अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त हो या जानकारी देनी हो तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें, SHO थाना लोनी गाज़ियाबाद। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: मैं हूं आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस 2 शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

0: may apply online till 14th June 2026. For full details, kindly visit the website that is at www.rrbapply.gov.in. I repeat the website that is at www.rrbapply.gov.in. Inland Waterways Authority of India has invited applications for one post of section officer on deputation basis for an initial period of 3 years. Eligible candidates from central, state governments, PSUs or autonomous bodies can apply through proper channel within 45 days from the date of publication in the Employment News. Applications must be sent to IWAI Noida, and for further details are available on the website that is at www.iwai.nic.in. The website is, I repeat, www.iwai.nic.in. Indian National Centre for Ocean Information has invited online applications for regular posts, including Scientific Assistant, 3 posts, through Direct Recruitment, and Scientist C, 2 posts, on deputation basis. Detailed eligibility, qualifications and application procedures available at https://vacancies.incois.gov.in. The last date for applying is 11th May 2026. I repeat the website, kindly note, it is www.incois.gov.in. University of Delhi has invited online applications for the post of Assistant Professor in the Centre for Studies at Academic Pay Level 10. Interested candidates can apply through prescribed format within 2 weeks from the date of this advertisement in the Employment News. The detailed information is available on the website that is at www.du.ac.in. The Central Medical Services Society, CMSS, functioning under the Ministry of Health and Family Welfare, invites applications for the post of Joint Director, General Manager, Quality Assurance on deputation or contract basis, offering a pay level of 12 or a consolidated monthly remuneration of 2 lakh rupees plus PF. The maximum age limit is 56 years on deputation and 55 years for contract appointments. Applications must reach CMSS by 5th May 2026. Detailed information and application forms available via email or on the official website at www.cmss.gov.in, or you could also go on to www.mohfw.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय CRCS में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पंजीयक स्तर 13, 2 पद, संयुक्त पंजीयक स्तर 12, 5 पद, उप पंजीयक स्तर 11, 2 पद, सहायक पंजीयक स्तर 10, 1 पद और वरिष्ठ सहकारी अधिकारी स्तर 7, 2 पद। अधिक जानकारी, आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता और अन्य नियमों और शर्तों के लिए कृपया सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.cooperation.gov.in पर लॉगिन कीजिए अथवा देखिए वेबसाइट www.crcs.gov.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राध्यापक कुल पद 7, जिनमें से 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और 1 पद EWS वर्ग के लिए तथा 2 पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हैं। सहायक प्राध्यापक के कुल 28 पद हैं, जिनमें से

0: 11 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जबकि EWS वर्ग के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए अवश्य देखिए ये वेबसाइट www.iiscrtirupati.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 28 मई 2026। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, इन पदों के लिए सीधे साक्षात्कार के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद हैं पुनर्वास क्लिनिकल मनोविज्ञानी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, प्रशिक्षित केयर गिवर, दिव्यांग मित्र, आया क्लीनर और गतिविधि शिक्षक। सीधे साक्षात्कार के लिए निर्धारित स्थान है AYJNISHD बांद्रा पश्चिम रिक्लेमेशन मुंबई। सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावित तिथि है 7 मई 2026। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ पदों के लिए सीधा साक्षात्कार अहमदाबाद गुजरात में लिया जाएगा और उसके लिए तिथि 8 मई 2026 है। दस्तावेजों का सत्यापन प्रातः 9:30 से 11:30 के बीच होगा और सीधे साक्षात्कार का समय रहेगा सवेरे 11:30 से 5:30 बजे तक। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया देखिए वेबसाइट AYJNISHD.NIC.IN। ईमेल का पता रहेगा AYJNIHH-MUM@NIC.IN। दूरभाष पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष नंबर है 02269102100। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन संलग्न कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैज्ञानिक के पदों को भरने के लिए पात्र एवं उपयुक्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, पदों का विवरण, पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए अनुसंधान विभाग की वेबसाइट dhr.gov.in/vacancies। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। मुकेश, इट वाज बुद्ध पूर्णिमा यस्टरडे एंड दिस ईयर इट वाज एन इवन स्पेशल वन एज फॉर द फर्स्ट टाइम द सेक्रेड रिलिक्स ऑफ गौतम बुद्ध व्हिच आर यूजुअली हाउस्ड एट द नेशनल म्यूजियम इन हियर इन दिल्ली हैज बीन ब्रॉट टू लद्दाख फॉर पब्लिक व्यूइंग। And in the land of high passes in Ladakh, where the mountains seem to touch you and are quieter than the rest of the country, the sacred exposition of the holy relics of Gautam Buddha has brought with it a different kind of stillness, offering a rare opportunity for pilgrims, monks and locals to pay homage. The event has been described as a major, deeply spiritual occasion for the region's people to connect with the teachings of Lord Buddha. Devotees and tourists can, in this season, now pay their respects and this will

0: certainly spiritually be an enriching experience for all the visitors. So why not make a plan to visit Ladakh this season, Mukesh? Escaping the sweltering heat of the cities down here.
1: जी.
0: है ना? तो ये सब तो हुई इंफॉर्मेशन वाली बातें. एंड शैल वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस नाउ?
1: बिल्कुल. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार. कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार.
0: री पोलिंग अंडर वे एट 15 बूथ्स ऑफ टू असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ वेस्ट बंगाल. ओवर 55% वोटर टर्नआउट रिपोर्टेड टिल 1 PM.
1: लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया.
0: इंडिया एंड नेपाल डिस्कस फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल अहेड ऑफ द अपकमिंग मॉनसून सीजन.
1: मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान.
0: एंड इन IPL क्रिकेट, चेन्नई सुपर किंग्स टू टेक ऑन मुंबई इंडियंस दिस इवनिंग. And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And Mukesh, today we will talk about World Tuna Day. Today's broadcast marks a globally significant occasion. It's May the 2nd, celebrated worldwide as World Tuna Day. It serves as a call to action to protect tuna populations, with 33.3% of the 7 main tuna species previously fished at sustainable levels. Now, you might be wondering, why tuna? So, of all the species in the ocean, why dedicate an entire international day to this one fish? Stay with us as we dive deep into the story of tuna, its journey in the ocean, its incredible nutritional value, the environmental challenges it faces, and the inspiring global efforts working to secure its future. So, tuna are among the ocean's most remarkable creatures. Built for speed and endurance, these powerful fish can swim across entire oceans, maintaining warm body temperatures even in cold waters, a rare trait among fish. There are several species of tuna, including skipjack, yellowfin, albacore, and the prized bluefin. Each plays a vital role in marine ecosystems and global fisheries. Tuna is not just a fish, it's a global commodity, a cultural staple, and for many communities, it's a lifeline.
1: बिल्कुल, tuna एक मुख्य भोजन भी है और आपकी प्लेट पर जब tuna पोषक तत्वों का खजाना होती है तो आइए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें. आइए इसे आपके घर, आपकी रसोई के और करीब लाते हैं. चाहे वो कोई झटपट बनाने वाला सैंडविच हो, सलाद हो या किसी खाने का हिस्सा हो, ट्यूना दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछलियों में से एक है. और ये सिर्फ बनाने में आसान नहीं है बल्कि ये बेहद पौष्टिक भी है. और यहाँ बताया गया है कि पोषण विशेषज्ञ अक्सर ट्यूना खाने की सलाह क्यों देते हैं. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है. ये सेहतमंद फैट सूजन कम करने, दिल की सेहत को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं. इसके अलावा बेहतर क्वालिटी का प्रोटीन इसके अंदर होता है. ट्यूना सभी जरूरी अमीनो एसिड देता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और उनके विकास के लिए बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा विटामिन B12 का ये खजाना है. ये ऊर्जा बनाने और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है. और साथ ही खनिजों से ये भरपूर है. इसमें सेलेनियम भी शामिल है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, और आयोडीन भी है जो थायराइड की सेहत के लिए बहुत जरूरी है.
0: एंड फॉर पीपल सीकिंग अफोर्डेबल हाई प्रोटीन डाइट्स, कैंड ट्यूना हैज बिकम अ रिलायबल एंड एक्सेसिबल ऑप्शन वर्ल्ड वाइड. बट एज डिमांड ग्रो, सो डिड द प्रेशर ऑन ट्यूना पॉपुलेशंस. And a few decades ago, the popularity of tuna came at a cost. With rising global demand, fishing fleets expanded rapidly. And in many parts of the world, weak regulations and fragmented management led to its overfishing. Some tuna stocks began to decline at alarming rates. By 2017, only about 75% of tuna catches came from sustainable, healthy stocks. And the rest were under serious pressure. The situation raised urgent questions. Could tuna disappear from our oceans? Could the entire fishing communities lose their livelihoods?
1: लेकिन अभी उम्मीद बाकी है. यहीं से कहानी में एक सकारात्मक मोड़ आता है. जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ट्यूना दिवस की शुरुआत की थी तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था.

0: की कार्रवाई के लिए एक पुकार थी। सरकारें, वैज्ञानिक और मछुआरे सभी पहले कभी न देखे गए अंदाज में एक साथ आए। खाद्य और कृषि संगठन जैसे संगठनों ने अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों के बीच तालमेल बनाया। ट्यूना मछली के प्रबंधन से जुड़े 5 प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी रणनीतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा।
1: Now let us now talk about a global turnaround story. The results of these measures, which were like, today an estimated 99% of commercial tuna catches come from stocks that are scientifically assessed as sustainable. And out of 23 global tuna stocks, only 2 remain overfished. Even more inspiring is that species like Atlantic bluefin tuna, once nearly absent, are now returning to waters off southern England and Ireland. This is one of the rare environmental success stories where global cooperation truly worked.
0: तो आइए अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल फिशिंग कैसे काम करती है। तो हमने हालात को ठीक कैसे किया है, आइए उन मुख्य तरीकों को समझते हैं और आज सस्टेनेबल ट्यूना फिशिंग को आकार दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के तरीके की। ये पहले से तय किए गए नियम होते हैं जो ये तय करते हैं कि कितनी फिशिंग की जा सकती है। फिशिंग का सीजन शुरू होने से पहले वैज्ञानिक पॉलिसी बनाते हैं और मछुआरे मिलकर काम करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि फैसले डेटा पर आधारित हों, ना कि अचानक लिए गए हों। इसके अलावा मॉनिटरिंग, कंट्रोल और निगरानी भी इसमें काम करती है। आजकल की फिशरीज में नियमों का पालन पक्का करने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग, नाव पर मौजूद ऑब्जर्वर और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब गैर कानूनी फिशिंग को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया है।
1: Right, there are some more practices, and these include the further mentioned measures like reducing bycatch. And now, what is bycatch? When unintended species like turtles, sharks, seabirds, and whales get caught, it has long been a major issue. Innovations also include like circle hooks that reduce turtle capture, bird scaring lines to protect seabirds like albatrosses, modified nets that allow non-target species to escape. And of course, there are eco-friendly practices also. Fishing gear and techniques are being redesigned to minimize damage to marine habitats and ecosystems.
0: जी हाँ, sustainability सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये ज्ञान के बारे में भी है। खाद्य और कृषि संगठन का Common Oceans Tuna Project इन चीजों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा सस्टेनेबल तरीकों पर ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को बेहतर बनाया जा रहा है और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उनकी ट्यूना मछली कहां से आई है। इसका लक्ष्य क्या है, 2027 तक दुनिया भर में सस्टेनेबल तरीके से ट्यूना मछली पकड़ना।
1: डिस्पाइट ऑल दीज प्रोग्रेस, न्यू चैलेंजेस आर आल्सो इमर्जिंग लाइक क्लाइमेट चेंज। Warming oceans are altering tuna migration patterns. Fish are moving farther offshore, increasing the cost for fishers and threatening coastal livelihoods, especially in developing regions. And then there are threats to marine wildlife. Many species, particularly seabirds like albatrosses, remain at risk due to accidental capture. And if we talk about the global governance, a major milestone came with the BBNJ agreement, which entered into force in 2026. And this agreement strengthens protection for marine biodiversity in international waters. But agreements are only as strong as their implementation.
0: बिल्कुल अनुजा, अब हो सकता है कि हमारे श्रोता सोच रहे हों कि इन सब में उनकी या हमारी क्या भूमिका हो सकती है। असल में हमारी भूमिका काफी बड़ी है। यहाँ कुछ काम आसान दिए गए हैं। टिकाऊ स्रोतों से मिली ट्यूना मछली चुनें और इको लेबल देखें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उपभोग से बचें, अपने सी फूड विकल्पों में संतुलन बनाए रखें। इसके साथ ही जानकारी रखें और जागरूकता फैलाएं और समुद्र संरक्षण की दिशा में काम करने वाली नीतियों और संगठनों का समर्थन करें। आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उससे बाजार को एक संकेत मिलता है।
1: Absolutely. The story of tuna is a story of both warning and hope, and it reminds us how quickly natural resources can decline, but also how powerful collective action can be. From struggling stocks to a 99% sustainability rate, the journey of tuna shows that change is possible when science, policy, and people come together. So today, on World Tuna Day, let's celebrate progress, but remain vigilant because

0: आदित्यनाथ ने किया था। उन्होंने कहा कि जहां पहले कूड़े का पहाड़ होता था वहां अब खूबसूरत पार्क है। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि इस पार्क का निर्माण पर्यावरण के प्रति गोरखपुर वासियों की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: इस वेस्ट वंडर पार्क के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे के निस्तारण से बना यह पार्क कचरे को कंचन में बदलने का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नीयत साफ हो तो नियति बदलने में देर नहीं लगती। इस पार्क में कचरे से मोर, शेर, जिराफ और पेड़ पौधों की आकर्षक आकृतियां बनाई गई हैं। पार्क में बच्चों के लिए बनाया गया किड्स जोन भी प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसमें झूले और प्लांट पॉट भी वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। पार्क के बीचों बीच योग स्थल का निर्माण भी किया गया है, जहां लोग सुबह शाम प्रकृति के बीच योग कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह इको पार्क शहरवासियों के लिए घूमने फिरने के साथ साथ एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: And now from Gorakhpur, we take you all to Mumbai, where Dr. Bhau Daji Lad's Museum, one of Mumbai's most iconic buildings and museums, is celebrating its 154th opening day today. Established in 1855, the museum opened its gates to history enthusiasts and the general public on 2nd of May in the year 1872, offering a visual tour of Mumbai's evolution. We have more on this from our Mumbai correspondent.
3: Located on the premises of Jizamata Udyan in central Mumbai, Dr. Bhau Daji Lad Museum is Maharashtra's oldest and India's third oldest museum. It houses a unique collection that narrates the story of Mumbai and how it evolved into the financial capital of the country. Let's hear more from archaeologist and former curator of Dr. Bhau Daji Lad Museum, Ruta Vaghmare Baptista.
4: Bombay Presidency did not have museums, and there were major international exhibitions happening for which they required objects from Western India, and that led to a certain group of educated individuals, educated philanthropists, saying that, okay, if we had a museum here, and a 19th century museum movement had started across India. So in fact, in Bhau Daji Lad's speech, he says that the museum should be read like a book. That was the idea behind creating this museum.
3: Originally named the Victoria and Albert Museum, the museum was renamed on 1st November 1975 in honor of Dr. Bhau Daji Lad. Dr. Bhau Daji Lad Museum, unlike most museums, is not silent and serious, but playful and vibrant, as school children constitute a large number of visitors here. So, the next time you visit Mumbai and Jizamata Udyan, do not forget to peer into the iconic building of Dr. Bhau Daji Lad Museum and catch a glimpse of Mumbai's glorious past. For Parikrama, this is Ankit Apte from Mumbai.
2: And if we talk about the sports news, in IPL cricket, Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at the M.H. Chidambaram Stadium this evening, and the match will begin at 7:30 p.m.

0: उन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की। सत्यजीत रे फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद करते थे, इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल थे। फिल्मकार के अलावा वो कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत रे कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। सत्यजीत रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, लघु फिल्में शामिल थीं। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे।
1: एंड एज यू जस्ट मेंशन मुकेश, शी वाज नॉट ओनली अ फिल्म डायरेक्टर बट आल्सो अ स्क्रीन राइटर, एन ऑथर, अ लिरिसिस्ट, अ मैगजीन एडिटर, एन इलस्ट्रेटर, अ कैलीग्राफर एंड अ कंपोजर। He began composing his own film music in 1961, created iconic songs and themes known for their Bengali cultural roots, sharp satire and melodic simplicity. And of course, who can forget the key songs which come from Gopi Gayan Bagha Bayan, while his background scores are renowned for their emotive impact also.

0: और विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में मिला। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: The iconic film Shatranj Ke Khiladi is based on a short story by the legendary Munshi Premchand. Satyajit Ray masterfully expanded the narrative, blending it with the political turmoil of 1856. In this movie, he directed this movie, and let's hear a dialogue from this picture.
2: Mirza Sajjad Ali Shah de rahe. Yahi hai safed fauj ke badshah, aur in par lal wazir hamla karne ki taak mein hai. Mir sahab, badshah bachaiye. बादशाह गया तो खेल खत्म।
0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
4: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे।

पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। वहीं डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। लक्ष्य सेन चोट के कारण आज मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो नीलम बहन, आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ब्रिजपाल चरोरा से ये श्री अन्न गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लेख राज से ये लोकगीत, और आइए अगला लोकगीत आपको सुनवाते हैं बबीता उर्फ पूनम त्यागी से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बबीता उर्फ पूनम त्यागी से ये लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको एक और लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

पुष्पा गोसाई द्वारा गाए गए इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार। खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत, हर संघर्ष और हर कहानी के साथ आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी। मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ हैं चंद्रालोक। आज के इस अंक में बात करेंगे बैडमिंटन में थॉमस और ऊबर कप के रोमांचक मुकाबलों की। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हो गया है टीम का ऐलान। आईपीएल 2026 की देंगे आपको ताज़ा अपडेट्स, साथ ही एशियन बॉक्सिंग और एथलेटिक्स से जुड़ी अपडेट्स भी रहेंगी। फुटबॉल और टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी हैं कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खेल की दुनिया का ये खास सफ़र। और सबसे पहले जानते हैं आलोक से थॉमस कप में कल भारत की जीत पर, सुनते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट।
3: कल का दिन भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों के लिए एक सुनहरा दिन रहा, जहां भारत ने थॉमस कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। भारत ने शुक्रवार को डेनमार्क के हॉर्सन्स में थॉमस कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 के हरा करके पुरुषों की टीम प्रतियोगिता में अपना 5वां पदक पक्का किया। आयुष सेटी ने वर्ल्ड नंबर 8 और ऑल इंग्लैंड ओपन के विजेता लिंग चुंग यी को 48 मिनट में 21-16, 21-17 से हरा करके यह काम पूरा किया। इससे पहले पुरुषों की डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी और इसके अलावा वर्ल्ड नंबर 11 लक्ष्य सेन ने रोमांचक जीत हासिल की। सात्विक साईराज और चिराग सेट्टी की जोड़ी ने वांग चीलिंग और च्यू सियांगसी को 75 मिनट में 23-21, 19-21 और 21-12 से हराया, जबकि लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड नंबर 6 और 36 साल के अनुभवी खिलाड़ी ताओ तियन चेन को 1 घंटे 28 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 18-21, 22-20 और 21-17 से हराया। भारत अब शनिवार के सेमीफाइनल में फ्रांस से भिड़ेगा, जिसने जापान को 3-0 से हराया। लक्ष्य और चौ ने शुरुआती सिंगल्स मैच में 4-4 का हेड टू हेड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने पिछले 4 मुकाबलों में से 3 बार चौ को हराया था। 24 साल के भारतीय खिलाड़ी ने अच्छी शुरुआत की। पहले मिड गेम इंटरवल में 2 पॉइंट की मामूली बढ़त ले रही थी। वह लगातार 3 पॉइंट गंवाने से पहले 15-10 से आगे भी था। उस पॉइंट से चाओ ने लगातार अपने विरोधी पर दबाव बनाए रखा। 18-16 से चीनी ताइपे के सटलर को लगातार 5 पॉइंट बनाकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए चाओ ने दूसरे गेम में ज़्यादातर समय दबदबा बनाए रखा और 13-7 से 6 पॉइंट तक की बढ़त ले ली। हालांकि लक्ष्य ने मैच में बने रहने के लिए जबरदस्त हिम्मत दिखाई और पक्का इरादा दिखाया और 17-17 के स्कोर से बराबरी कर ली। जब चाओ के पास 2 मैच पॉइंट थे, तब भी भारतीय खिलाड़ी शांत रहे और मैच अपने पक्ष में कर लिया। डिसाइडर में लक्ष्य ने पहला झटका दिया। मिड गेम इंटरवल में 4 पॉइंट की बढ़त के साथ वापस कोर्ट पे आए और एंड बदलने के बाद चाओ ने 9-11 से 2 पॉइंट की कमी कर दी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने न केवल अपनी बढ़त वापसी पाई बल्कि अंतर भी बढ़ाया और 18-12 से वो आगे हो गए। चाओ बिना लड़े हारे नहीं और अगले 6 में से 5 पॉइंट हासिल करके जीतकर मुकाबले में वापसी की। फिर भी यह काफ़ी नहीं था, क्योंकि लक्ष्य ने 20-17 पर 3 पॉइंट बनाए, जिससे वह सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत थी क्योंकि चाओ का रिटर्न वाइड चला गया। मैच के बाद लक्ष्य सेन ने अपने विचार साझा किए, हम आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा।
4: इट वॉज अ रियली गुड फर्स्ट सेट एंड आई मीन आई फेल्ट ही वॉज मच मोर फियरलेस ऑन द फर्स्ट सेट एंड आई वॉज काइंड अ बिट ऑफ चेकिंग इफ आई कुड अटैक और लाइक प्रॉब्ली डिफेंड एंड आई मीन या एंड देन द फर्स्ट सेट वॉज ओवर सो आई मीन द सेकेंड एंड थर्ड गेम इवन दोज ऑल्सो वेंट टू ड्यूज बट आई जस्ट टुक एन अप्रोच ऑफ जस्ट नॉट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड ट्राई एंड अटैक अ बिट मोर एंड बी proactive in especially in the closing stages. I didn't think so much about the last match and because I mean yeah it's a team event and there's a different kind of pressure that there is on of your team and of everything, so yeah I mean back of the mind I was thinking too much. I felt in the first set closing and even in the second game start that what will happen but I think yeah, it was important for me. Even my coach told me that you don't look very confident. I mean, you are thinking too much about your strategies as well. So just stop thinking too much and just play and go with your instincts. And I think, yeah, that's what I tried to do in the second and third set. I know with the game style that I wanted to do, I mean, it was difficult for me to do that in the first set, and but then second and third game, even the tactic wise, I was able to get him into long rallies and then play my shots. Otherwise, in the first set, I was again checking a bit with my lifts and a lot of short lifts so that he could jump and kill the smashes. But yeah, I mean, second and third set, I could get him moving a bit and the rallies were a bit long, so it helped me. It's always you come prepared that the first set is not going to be easy. I mean, especially the closing stages, he's just gonna up the gear, two gears up. He's just gonna go for the smashes. Just be put a mental pressure on you, because I know he's very, very experienced in playing those kind of situations. But yeah, I mean, the past whenever we have played, it's always been like three games or. If it's two games, it's always dues that someone is winning, someone is losing. So yeah, the margins are very small. So yeah, you just have to be fight until the very end. And even though if it's like going 15 all, 16 all, you know that you got to give that extra 5-10% at the end.
3: बाद में बात करते हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की. तो उन्होंने वांग और चुई को खिलाफ ओपनर जीतने के बाद ओपनिंग सेट जीतने के लिए दो गेम पॉइंट बनाए. इससे पहले चीनी ताइपेई की जोड़ी ने पीछे से आगे आकर तीसरे गेम जो है खेलने को मजबूर कर दिया भारतीय प्लेयर को, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को. डिसाइडर सेट में भारतीय प्लेयर ने शानदार प्रदर्शन किया और मैच अपने पक्ष में कर लिया. अब बात करते हैं आयुष शेट्टी की, जिनका मुकाबला था लिंग चुन से. आयुष शेट्टी ने शांत और अटैकिंग परफॉर्मेंस देकर के लिंग को हराया, जो पैरों की चोट की वजह से 100% फिट नहीं थे और भारी स्ट्रैपिंग उसका इशारा भी था. शुरुआती गेम में 7-11 से पीछे चल रहे आयुष ने डिफेंस में सब्र दिखाया और फिर अपना अटैकिंग गेम दिखाया, कई विनर्स लगाकर स्कोर 13-12 कर दिया. जब लिंग उनके डिफेंस को भेदने की कोशिश कर रहे थे तो गलतियां कर रहे थे, तो भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 7 पॉइंट लेकर के 17-13 की बढ़त बना ली और आखिरी में एक जोरदार क्रॉस कोर्ट स्मैश के साथ गेम खत्म किया. आयुष ने दूसरे गेम में भी इसी मोमेंटम के साथ अपना सिलसिला जारी रखा और शुरुआती कमी को दूर करते हुए 9-7 से कंट्रोल किया, ब्रेक तक इसे 11-8 कर दिया क्योंकि लिंग का अटैक लगातार लड़खड़ा रहा था. लिंग ने आखिरी में वापसी की जिससे अंतर 16-19 का हो गया, लेकिन आयुष आखिरी पंत में शांत रहे और मुकाबला जो है 21-16 और 21-17 से अपने नाम कर लिया. कल के मुकाबला जीतने के बाद आयुष शेट्टी ने अपने विचार प्रकट किए, तो आइए सुनते हैं कि आयुष शेट्टी ने कल का मुकाबला जीतने के बाद क्या कहा.
4: Yeah, definitely. Like I said, we believe.

0: that you know we can go all the way, and it's always been like this. We have a solid team, and everyone believes that we can do it. Definitely, yesterday was the group stage, and not yesterday, I think the day before. Yeah, but today, I mean, a bit more pressure, but I think we were 2-0 up, so you know that made it a bit easier. But yeah, I think I played with confidence and happy to win. We need for the team. See, they keep, you know, pushing me. You have to shout more. So yeah, I mean, I don't shout much, but I think now I've started shouting a bit more. Yeah, the game plan. I mean, he's the All England champion, and he has some really good attack. The game plan was to attack more. You know, not give him much chances. And yeah, I think I did it pretty well. Yeah, happy. Yes.
1: तो अब बात करते हैं कल के खेले गए और जो मुकाबले थे क्वार्टर फाइनल, उसमें चाइना ने मलेशिया को 3-0 हराया थॉमस कप में और उन्होंने सेमीफाइनल अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। इसके अलावा जापान को फ्रांस के खिलाफ 3-0 से हार झेलनी पड़ी। तो आज भारत का मुकाबला फ्रांस से है, जबकि डेनमार्क जो कि इस टूर्नामेंट की होस्ट है, मेजबान देश है, उन्होंने डेनमार्क ने शानदार जीत दर्ज की और डेनमार्क ने थाईलैंड को 3-1 से हराया। तो आज का जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा उसमें डेनमार्क का मुकाबला होगा चाइना के साथ, जबकि भारत की टीम फ्रांस के साथ खेलती हुई नजर आएगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात के 9:30 बजे खेला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस की टीम ने भी इतिहास रचा है, वो पहली बार थॉमस कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे और पहली बार उन्होंने मेडल भी सुनिश्चित किया है, जबकि भारत की टीम 2022 की चैंपियन रही है। और ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह का मुकाबला जो है भारत की टीम आज करती है फ्रांस के सामने। अगर फ्रांस की बात किया जाए तो उनकी जो इस समय सिंगल्स प्लेयर की जो स्थिति पर अगर एक नज़र डाला जाए तो काफ़ी स्ट्रांग वो नज़र आते, खास करके क्रिस्टोफ पोपोव जो हैं पिछले 6 से 8 महीने में काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं और पिछले वर्ष उन्होंने VWF वर्ल्ड टूर फाइनल का भी खिताब जीता था। इसके अलावा एलेक्स लेनियर जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 10वीं है, इसके अलावा टोमो जूनियर पोपोव भी 17वीं रैंकिंग के हैं। तो भारत के लिए ये काफ़ी मुश्किल मुकाबला हो सकता है। और इसके अलावा भारतीय बैडमिंटन टीम कुछ समय जब तगड़ा झटका लगा जब लक्ष्य सेन चोट के कारण जो है आज का मुकाबला नहीं खेल रहे सेमीफाइनल जो मैच होने वाला भारत का आज फ्रांस के साथ। तो आज जो है भारतीय जिम्मेदारी जो है जो सीनियर प्लेयर हैं खास करके किदांबी श्रीकांत जो उन्होंने 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता उनके ऊपर और HS प्रणय के ऊपर, जबकि आयुष सेठी पहले सिंगल्स मुकाबले खेलेंगे जिनका मुकाबला होगा क्रिस्टोफ पोपो के साथ। तो देखना दिलचस्प होगा कि भारत की जो विजय का ये रथ है ये कहां तक पहुंचता है, क्या भारतीय टीम आज जो फ्रांसीसी चुनौती को पार पा पाती है नहीं। जी हाँ प्रेरणा, ये तो बात थी थॉमस कप की। अब बात करते हैं आज उबर कप जिसका सेमीफाइनल खेला जा रहा है और जिसका प्रेरणा आपको पता होगा पिछले वर्ष चाइना और जापान की टीम तो जो इससे पहले 2024 में जो खेला गया था थॉमस और उबर कप चाइना में, तो उसमें कोरिया की टीम ने चाइना को हराया था फाइनल में। तो आज जो है चाइना का मुकाबला था जापान के साथ और चाइना ने बड़े आसानी के साथ जो है जापान को 3-0 से हरा दिया। पहले मुकाबले में जापान के 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन अकानी यामागुची को वांग जीलिंग जो चाइना के इस समय विश्व के नंबर 2 के खिलाड़ी हैं और लगातार ज़बरदस्त फॉर्म में उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, उनके खिलाफ उन्होंने यामागुची को पहला सेट, हालांकि यामागुची ने 23-21 से जीता था लेकिन दूसरे और तीसरे सेट में वो 21-11 और 21-16 से हार गए। जबकि विश्व के नंबर 1 जो अभी वुमेंस डबल्स के प्लेयर हैं लियू और तान ने बड़े आसानी के साथ जो है जापानीज वुमेंस डबल्स प्लेयर को हरा दिया, जबकि 2020 ओलंपिक खेलों के चैंपियन चेन यूफे ने बड़ी आसानी से अपना मुकाबला जिस तरह से चाइना की टीम जो है उबर कप के फाइनल में पहुंची। जबकि दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो कोरिया और इंडोनेशिया का मुकाबला इस समय 2-1 से चल रहा है, जबकि कोरिया ने 2 मुकाबले जीत लिए जबकि इंडोनेशिया ने 1 वुमेन सिंगल्स का मुकाबला। पहले मुकाबले में वर्ल्ड के नंबर 1 आन से योंग ने 21-19 और 21-5 से वर्धनी जो इंडोनेशिया से उनको हराया था। तो अभी स्थिति इसकी यह है कि कोरिया ने 2 मैचेस जीत लिए जबकि इंडोनेशिया ने 1 मैचेस जीता है। अब आपको हम सीधे लेके चलते हैं आपको क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए प्रेरणा के पास।
2: और तो श्रोताओं आपको बता दें कि ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का ऐलान हो गया है और ज़रूर आप लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए कौन कौन रहेगा इस टीम का हिस्सा। तो टीम की कप्तानी संभालेंगी हरमनप्रीत कौर और वाइस कैप्टन रहेंगी स्मृति मंधाना, साथ ही आपको टीम में दिखेंगी शेफाली वर्मा, जमीमा रॉड्रिस, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रियंका पाटिल और राधा यादव। और भारत के ग्रुप स्टेज मुकाबलों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्या फिक्स्चर्स हैं ग्रुप स्टेज मुकाबलों के। तो सबसे पहला मुकाबला 14 जून इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, 17 जून को इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स और इसके बाद 21 जून इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, 25 जून होगा इंडिया और बांग्लादेश और 28 जून को जो आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला होगा वो होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और अब आपको ले चलते हैं आईपीएल की दुनिया की तरफ।

0: और कल के मुकाबले जो खेला गया था आरसी वर्सेस डीसी और काफी रोमांचक रहा, आइए जानते हैं क्या खास रहा उस मैच में। आईपीएल 2026 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से एक बेहद रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबले की कहानी सामने आई, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने इतिहास रचते हुए 220 से अधिक रनों का लक्ष्य पहली बार सफलतापूर्वक हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स को उनके घरेलू मैदान पर 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। मुकाबले में टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 1.5 ओवर में 12 रन के स्कोर पर अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर छक्का लगाने के बाद जल्दी आउट हो गए, जबकि दूसरे छोर से भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। ऐसे मुश्किल हालात में कप्तान रियान पराग ने पारी को संभाला और एक जिम्मेदार लेकिन आक्रामक पारी खेली। उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 102 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। जुरेल ने 30 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि पराग ने 50 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ 28 गेंदों में 53 रन जोड़ते हुए पराग ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अंत के ओवरों में डोनोवन फरेरा ने 14 गेंदों पर 47 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस तेज पारी की बदौलत राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। 226 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत शानदार रही। पथुम निसंगा और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवर में 110 रन जोड़े, जो इस रन चेस की नींव साबित हुआ। उनके आउट होने के बाद केएल राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया और नितेश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 61 रनों की साझेदारी की। 15.2 ओवर तक दिल्ली का स्कोर 177 रन पर 3 विकेट था और यहां से मैच पूरी तरह संतुलित नजर आ रहा था, लेकिन अंत के ओवरों में आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। दोनों ने 23 गेंदों में 49 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को 19.1 ओवर में ही 226 रन तक पहुंचा दिया और 7 विकेट से यादगार जीत दिलाई। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने न सिर्फ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, बल्कि आईपीएल इतिहास में पहली बार 220 से अधिक का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेस करने का कारनामा भी कर दिखाया। अब जानते हैं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी आशुतोष शर्मा से उनका कल के मैच की जीत को लेकर क्या कहना है।
1: हमेशा जब भी टीम को जिताते हैं तो वो अच्छा इनिंग ही होता है। व्हेनेवर यू आर नॉट आउट और टीम विनिंग साइड के लिए रहती है तो आई फील कि वो सबसे अच्छा इनिंग ही होता है। एंड या आई एंजॉयड दिस इनिंग, इट्स माई वर्क और आई एंजॉय बींग फिनिशर फॉर माई टीम। सो मैं यही इंजॉय करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन के लिए मुझे टीम ने रखा है और मुझे बहुत मज़ा आता है इस सिचुएशन में खेलने के लिए। तो मैं यही सोचता हूँ कि बस खेलते रहूँ, उधर नॉट आउट जितना जाऊँगा अपने टीम को जिताऊँगा, जितने देर विकेट में रहूँगा तो मेरा टीम जीतेगा। तो आई ऑलवेज फील लाइक दैट।
0: और अब सुनते हैं राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच विक्रम राठौर को क्या कहना है उनका कल की परफॉर्मेंस को लेकर, आपको सुनवाते हैं।
2: The reason behind is I think the bowling couldn't execute their plans again today. I thought 226 was, we felt enough on the surface to, we should have been able to defend that. But I think the bowling, once you're defending, I mean, a total like that, so I think it's important to have a good power play. Again, today I thought we gave away lots of runs and didn't pick any wickets, so that sets you back. And then later also we really couldn't execute our plans. So we need to learn from that as a bowling unit aur us pe mehnat karni padegi. Abhi aur matches hain idhar.
0: ये तो बात रही कल खेले गए मैच की, लेकिन आज एक और अहम मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने वाला ये मुकाबला कई मायनों में खास रहने वाला है। सबसे बड़ी नजरें दो दिग्गज खिलाड़ियों महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा पर टिकी होंगी। धोनी इस पूरे सीजन अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, जबकि रोहित शर्मा भी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण टीम से बाहर रहे हैं। हालांकि दोनों की वापसी को लेकर उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन अंतिम फैसला मैच से ठीक पहले लिया जाएगा। अगर इस सीजन की बात करें तो चेन्नई और मुंबई दोनों का प्रदर्शन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। चेन्नई की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी साफ नजर आई है। ऋतु

ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम अब तक वो प्रभाव नहीं छोड़ पाई है जिसके लिए वो जानी जाती है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम अब इस मैच में पिछली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी, क्योंकि इस सीजन की पहली भिड़ंत में चेन्नई ने मुंबई को एक तरफा अंदाज में हराया था। कुल मिलाकर आज का ये मैच सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि दो विरासतों के बीच टकराव है। जहां एक तरफ धोनी की वापसी की उम्मीद है तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा की फिटनेस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, क्या मुंबई अपनी पिछली हार का बदला ले पाएगी या फिर चेन्नई एक बार फिर अपने घरेलू मैदान पर दबदबा बनाए रखेगी।

0: अब बात करते हैं, प्रेरणा ने एक खास रिपोर्ट तैयार करी हमारे श्रोताओं के लिए एशियन बॉक्सिंग अंडर 17 अंडर 15 पे। तो आइए सुनते हैं प्रेरणा की रिपोर्ट और जानते हैं कि बॉक्सिंग की दुनिया में क्या चल रहा है।
1: ताशकंद उज्बेकिस्तान में कल से शुरू हो रही एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 के ये 56 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाज दल अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इस टूर्नामेंट में एशिया के सबसे होनहार युवा मुक्केबाज कई भार वर्गों में हिस्सा लेंगे। भारत इस प्रतिष्ठित आयु वर्ग टूर्नामेंट में लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में एक मजबूत और संतुलित दल के साथ उतरा है। ये जमीनी स्तर पर विकास और भविष्य के चैंपियन तैयार करने पर देश के निरंतर फोकस को दर्शाता है। ये चैंपियनशिप अगली पीढ़ी के शीर्ष मुक्केबाजों की पहचान और विकास के लिए एक अहम मंच है। इन युवा एथलीटों में से कई के आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्तर से होते हुए बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। उभरती हुई प्रतिभाओं की व्यवस्थित स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ भारतीय दल इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में देश की बढ़ती साख को और मजबूत करना चाहेगा। अंडर 17 वर्ग में भारत की टीम में 13 लड़के और 13 लड़कियां शामिल हैं जो 44 किलो से लेकर 80 प्लस किलो भार में मुकाबले करेंगे। अंडर 17 गर्ल्स टीम की बात करें तो 46 किलो में राखी, 48 किलो में खुशी चंद, 50 किलो में ओवी अभिजीत ए, 52 किलो में एम मुरलीधर राउत, 54 किलो में लक्ष्मी मंजुनाथ एल, 57 किलो में नव्या, 60 किलो में इशिका, 63 किलो में दिया, 66 किलो में हरनूर कौर, 70 किलो में हिमांशी, 75 किलो में ज्योति, 80 किलो में वंशिका और 80 प्लस किलो वर्ग में गुरसीरत कौर। अंडर 17 बॉयज टीम पर नजर डालें तो 46 किलो में नरेंद्र कुमार एन, 48 किलो में दक्ष पवार, 50 किलो में यश यादव, 52 किलो में गोपाल रमेश्वर जी, 54 किलो में निवेश पाल, 57 किलो में प्रशांत मिश्रा, 60 किलो में एल्बर्स्टन कोम के, 63 किलो में प्रदीप, 66 किलो में रणवीर, 70 किलो में नमन कुमार, 75 किलो में लक्ष्य फोगाट, 80 किलो में जयदीप सिंह एच और 80 प्लस किलो में सिद्धांत। वहीं अंडर 15 वर्ग में 15 लड़के और 15 लड़कियां 30 किलो से लेकर 70 प्लस किलो वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। 33 किलो में केसी अक्षिता, 35 किलो में जिया, 37 किलो में अंजी, 40 किलो में सोनिया, 43 किलो में तन्वी, 46 किलो में हंसिका आत्रे, 49 किलो में खुशी राणा, 52 किलो में कनिष्का, 55 किलो में नित्या पांडे, 58 किलो में सुनैना, 61 किलो में भूमिका, 64 किलो में तन्वी, 67 किलो में आश्वी, 70 किलो में अंजेल और 70 प्लस किलो वर्ग में मानवी। वहीं अंडर 15 बॉयज टीम भी उतनी ही मजबूत नजर आ रही है। 43 किलो में यश कुमार, 35 किलो में रोहित पुथीना, 37 किलो में वसंते कुमार, 40 किलो में नितिन, 43 किलो में समीर बोरा, 46 किलो में एन मेतेई ओईनाम, 49 किलो में प्रशांत, 52 किलो में एस वासुदेवा चंदाका, 55 किलो में हर्षवर्धन जीना, 58 किलो में मोहम्मद यासिर, 61 किलो वर्ग में लिलमणि सिंह, 64 किलो में देव, 67 किलो वर्ग में रौनक पराग एल, 70 किलो वर्ग में मेहुल राणा और 70 प्लस किलो में सुशांत जयानी। ये टूर्नामेंट सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि भविष्य के सितारों की पहचान का मंच है। इन युवा

0: मुक्केबाजों में से कई आने वाले वर्षों में सीनियर स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आ सकते हैं।
1: जी आप बात करते हैं फुटबॉल की दुनिया की, और फुटबॉल में अभी चल रहा है AFC अंडर 17 वुमेन्स एशिया कप चाइना में, जिसमें आपको बात बताएंगे भारत का मुकाबला जो है आज ऑस्ट्रेलिया से है, और इस पर लाइव रिपोर्ट भी बताएंगे। आज ये मैच खेला जा रहा है, 5 बजे से मैच शुरुआत हो चुकी है, तो इनके बारे में आपको बताएंगे, और इस पर खास रिपोर्ट भी तैयार की है हमारी सहयोगी प्रेरणा ने, वो भी हम सुनेंगे।
0: भारतीय महिला फुटबॉल के लिए आज का दिन एक और ऐतिहासिक पल लेकर आया है, जब भारत की अंडर 17 महिला टीम AFC अंडर 17 महिला एशियन कप चीन 2026 में अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर रही हैं। ये 2005 के बाद इस स्तर पर भारत की पहली उपस्थिति है, जिससे 21 साल का लंबा इंतजार समाप्त हुआ है। इससे भी अहम बात यह है कि 2026 में ये भारत की तीसरी महिला एशियन कप उपस्थिति होगी। इससे पहले सीनियर और अंडर 20 टीमें भी कॉन्टिनेंटल मंच पर उतर चुकी हैं। भारत की इस यात्रा के पीछे एक लंबी और सुनियोजित तैयारी रही है। जनवरी से यंग टाइग्रेस 3 महीने से अधिक समय तक कैंप में रही, जहां बेंगलुरु में शारीरिक, तकनीकी और सामरिक पहलुओं पर गहन काम किया गया। टीम चीन पहुंचने से पहले लगातार प्रतिस्पर्धी अनुभव से भी गुजरी। फरवरी में सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब, मार्च में म्यांमार के खिलाफ 2 जीत और अप्रैल में रूस के खिलाफ 3 अभ्यास मैच, जहां कठिन प्रतिद्वंदिता के बीच महत्वपूर्ण अनुभव मिला। इस बीच अगर एक नजर डाली जाए भारतीय स्क्वाड पर, तो इस टीम में संतुलन और गहराई दोनों साफ नजर आते हैं। गोल पोस्ट की जिम्मेदारी मुन्नी सूरज मुन्नी कुमारी और टम्फसाना देवी के हाथों में है। डिफेंस में अभिष्टा बसनेट, अलेना देवी, अलीशा लियंगडो, दिव्यानी लिंडा, एलिजाबेथ लाकड़ा, जोशिनी चानू, रितु बड़ाइक और तानिया देवी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। मिडफील्ड की बात करें तो अलवा देवी सेंजम, बोनिफिलिया शुल्ललाई, जुलेन नोंगमाइथियम, ओलिविया चानू, प्रीतिका बर्मन, रेडिमा देवी और थंदा मोनी बास के खेल की दिशा और रफ्तार तय करने की जिम्मेदारी संभालती हैं। वहीं अटैकिंग लाइन में अनुष्का कुमारी, अन्विता रघुरमन, जोया पर्ल फर्नांडिस और वेलिना फर्नांडिस जैसी फॉरवर्ड्स हैं। टीम की कमान मुख्य कोच पामेला कॉन्टी के हाथों में है, जिनके मार्गदर्शन में ये युवा टीम लगातार निखर रही है। इस टूर्नामेंट में सभी 12 टीमें एक ही परिसर में ठहरी हैं और सुझोई ताइयू फुटबॉल स्पोर्ट्स सेंटर में मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां आधुनिक सुविधाएं टीमों को बेहतरीन तैयारी का अवसर दे रही हैं। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की है। भारत का अगला मुकाबला 5 मई को जापान के खिलाफ खेला जाएगा, जबकि टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 8 मई को लेबनान के विरुद्ध खेलेगी। 12 टीमों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें और तीनों ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहने वाली शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।
1: जी ताज़ा स्थिति क्या है कि AFC जो अंडर 17 मैच हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, हाफ टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है, तो अभी तक हाफ टाइम में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कहा जाए तो उसके उनके अटैक को बांध के रखा है, तो प्रेरणा ये एक अच्छी बात है, और देखते हैं कि अब हाफ टाइम के बाद भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है इस मैच में।
0: और ज़रूर अब फुटबॉल के बाद बात कर लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 2026 की। भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक बड़ा मौका सामने आया, जहां भारत की 6 रिले टीमें वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 2 और 3 मई को बोत्सवाना के गाबरोन में आयोजित होगी, और पहली बार ये इवेंट अफ्रीकी धरती पर खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट का महत्व सिर्फ पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमें 2027 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई करेंगी। नियमों के मुताबिक हर हीट की टॉप 2 टीमें सीधा फाइनल में जगह बनाने के साथ साथ अगले वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का टिकट भी हासिल करेंगी। भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे स्टार स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर, और कुल 21 खिलाड़ियों की ये टीम है, और इस दल में 8 महिला एथलीट्स हैं। और अगर हम बात करें तो आज मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगी, जो प्रतियोगिता है 5:35 से जो पहला मीटर वाली जो रेस है वो शुरू हो जाएगी। और नज़र डालते हैं भारतीय टीमों पर, तो पुरुषों की चार

0: समय दर्ज किया है, जबकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड 2:59.5 का है। पुरुषों की 4x100 मीटर रिले में प्रणव गुरव, गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, राहुल कुमार, हर्ष राउत और तमिला रसू जैसे धावक शामिल हैं। और हालांकि एथलेटिक्स फेडरेशन ने इस बार महिलाओं की 4x400 मीटर टीम को नहीं भेजने का फैसला किया है, और प्रतियोगिता के पहले दिन मिक्स 4x100 मीटर इवेंट से शुरुआत होगी, जहां भारत का मुकाबला अमेरिका और चीन जैसी मजबूत टीमों से होगा। इसके बाद मिक्स्ड 4x400 और फिर पुरुषों व महिलाओं के 4x100 मीटर और 4x400 मीटर इवेंट्स आयोजित होंगे।
1: जी, अब बात करते हैं ITTF जो चल रहा है वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप लंदन में, उससे खबर ये है कि भारत की दोनों ही टीम पुरुषों और महिलाओं की टीम जो है राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई, जिनके मुकाबले 4 और 5 मई से खेले जाएंगे। तो आगे अब देखेंगे कि भारतीय टेबल टेनिस की टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। और आपको एक और अपडेट बता दें उबर कप से रिलेटेड कि कोरिया की टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से हरा करके फाइनल पहुँच गई। तो एक बार फिर से 2026 का जो उबर कप का जो फाइनल होने वाला है, चाइना का मुकाबला कोरिया से होगा। पिछले बार कोरिया ने चाइना को हराया था उबर कप के फाइनल में।
0: ठीक है, तो अब आज की तमाम बड़ी जो खबरें हैं वो हम यहीं पर थोड़ा विराम देते हैं, और समय की सुई कर रही है इशारा।
1: जी, जाते जाते एक खबर और बता देते हैं टेनिस से। वर्ल्ड नंबर 444 भारत के मानस दमले के उभरते हुए भारतीय सितारे, वो 26 सीटें, वो पहली बार जो है ATP चैलेंजर्स के फाइनल में पहुंचे हैं।
0: तो खेल जगत की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए खेल खिलाड़ी के साथ। इसी के साथ मुझे प्रेरणा शर्मा और साथ ही मेरे साथी आलोक चंद्र को दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज खान। हम दोनों आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।
2: खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ

ये प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: इस अंक में दिल्ली में वाटर एटीएम का शुभारंभ, 32वां लाल बहादुर शास्त्री स्मारक व्याख्यान और श्री राम भारतीय कला केंद्र द्वारा आयोजित केंद्र नृत्य उत्सव। विगत दिनों सभी लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाटर एटीएम का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर संवाददाताओं से बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया,
2: हमने दिल्ली में एक नया प्रयोग करते हुए ये वाटर एटीएम का कंसेप्ट शुरू किया है, जो एक बड़ा आरओ प्लांट है जिसकी कैपेसिटी जो है वो हर घंटे में 2000 लीटर पानी को ट्रीट करके देने की क्षमता रखती है। इस तरह का एक वाटर एटीएम कार्ड हम लोगों को, हर झुग्गी परिवार को दे रहे हैं। उस वाटर एटीएम के माध्यम से वो कार्ड इसमें लगा करके 20 लीटर पानी रोजाना अपने घर लेके जा सकते हैं, जो कि मीठा है, शुद्ध है, बेहतर से बेहतर, बड़ी बड़ी कंपनियों के आरओ से बेहतर काम करता है। तो आज दिल्ली में लाखों झुग्गी निवासी जो पानी से त्रस्त रहते हैं, पानी की सुविधा उनको नहीं मिल पा रही थी, पाइपलाइनें नहीं थी जहां जहां पर भी, ऐसा एक ये आरओ प्लांट लगाने का काम हमने शुरू किया है। और इस आरओ प्लांट किस तरीके से लोगों की जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला है, साफ पानी, ट्रीटेड पानी, मीठा पानी लोगों को अब मिल पाएगा बिना किसी चार्ज के, एक रुपया भी दिए हुए। ये एक बेहतरीन काम है जो हमने इंडियन ऑयल के CSR के सहयोग से फिलहाल किया है 8 जगह पर, परंतु इस काम को अब हम और अधिक बढ़ाते हुए हर एक ऐसा एरिया जहां अभी पानी की दिक्कत है, जहां पे पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, कम है, मीठा पानी उन सब तक मिले, इसके लिए सरकार जो है वार फुटिंग पे काम करेगी और उस दिल्ली की जनता को अच्छा पानी मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
1: 25 अप्रैल शनिवार को जनपद स्थित नेशनल म्यूजियम सभागार में 32वां लाल बहादुर शास्त्री स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान का विषय था एथिक्स ऑफ पब्लिक लाइफ इन एन एज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस व्याख्यान के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने एथिक्स ऑफ पब्लिक लाइफ इन एन एज ऑफ टेक्नोलॉजी विषयक व्याख्यान में अपने संबोधन में कहा,

विस्तीर्ण वक्ष जिसमें डूबे हैं धर्मी और अधर्मी, पक्ष और विपक्ष। ये कथा उस वीर की है जो गिरा रण में अकेला, वार जिसने नेतिका हंसकर हृदय पर दुर्ग

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, आज शनिवार है तो आपको सुनने को मिलेगा आप ही की पसंद पर लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले बहन भाइयों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में अपने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी देश के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती आज के समय में प्राथमिकता वाला मुद्दा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, डिजिटल इंडिया का समाज के हर क्षेत्र के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस अभियान का पूर्ण रूप से व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसने समग्र रूप से समाज की प्रगति में योगदान दिया है। इस पहल के तहत सरकार ने डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित और डिजिटल सेवाओं को पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे नागरिकों को आसानी से कई सरकारी सेवाओं और जानकारी का उपयोग करने का मौका मिलता है। ये भारत को एक डिजिटल युग में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और साथ ही देश के विकास को गति दे रहा है। डिजिटल इंडिया का महत्व आज की तकनीकी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के साथ ही हम सभी के लिए भी एक मजबूत भविष्य बना रहा है।
0: बिल्कुल। और डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि जनधन योजना, आधार।

0: डिजिटल रोजगार और डिजिटल विद्या। इससे गांव और शहरों के लोग आसानी से सरकारी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो समृद्धि और सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत में डिजिटल शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे तकनीकी ज्ञान और कौशल का संवर्धन हो रहा है। इससे देश का विकास और सामाजिक न्याय में सुधार हो रहा है।
0: बिल्कुल, इसके साथ ही डिजिटल इंडिया भारत को ग्लोबल तकनीकी नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और देश के विकास को सुनिश्चित रूप से गति दे रहा है। इसका महत्व आजकल की तकनीकी दुनिया में और भी बढ़ रहा है और हमारे देश के लिए एक सशक्त भविष्य बनाने में मदद कर रहा है। तो नीलम बहन, ये तो बात रही डिजिटल इंडिया की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: गाँव पनियार चक से विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: योगेंद्र चाणा ही सुना दिए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के नाम जी, साहिल, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: ग्राम संसार जी,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: जी डी राणा भगत सिंह पारक से बोल रहा हूँ साहब।
0: हाँ जी राणा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: योगेंद्र नमन चाणा को सुनवा देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी, एक मेरे मिलने वाले हैं ललित जी, और मेरे बड़े बेटे का नाम है आशु राणा, बहू का नाम है उर्वशी राणा, और पोते का नाम है आदि राणा, और मेरे छोटे बेटे का नाम है रवि राणा, बहू का नाम है राखी राणा, और पोते का नाम है जतिन राणा, और एक लड़की आई हुई है स्वार्थी राणा, और एक मेरे मिलने वाले हैं जग्गू।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: मैं सोनू गांव दौर जिला मानगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: योगेंद्र देव चाणा।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: देख नाम है
0: जी
4: मनवर मासेफ।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं करमवीर सिंह ढिलोर बोल रहा हूँ, मुरादनगर गाजियाबाद से, बेजार कॉलोनी से।
0: करमवीर जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: योगेंद्र सिंह निमचाणा।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: परिवार के नाम है जी सूरजमल ढिलोर, रोनी का ढिलोर।
0: हेलो ग्राम संसार।
6: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: हवलदार जय प्रकाश, ग्राम पाचौथा बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: योगेंद्र सिंह निमचाना को सुनवा दीजिए साहब, नाम नोट कर लो
0: जी। कराएं।
6: करण खुशी नंदनी राधिका प्रतिज्ञा, राम राम साहब।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं ब्रजपाल बोल रहा जी, गाँव राम सावड़ा जिला सहारनपुर जी।
0: ब्रजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: योगेंद्र निमचाणा को सुना दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: कुछ नाम लूंगा सर, लड़का श्यामवीर, पूजा देवी, मोनी देवी, उन्नति देवी, सोनम देवी, और हमारे बड़े भाई यहाँ लड़ी से बसे सर बटार, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
8: शशि बाबू को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: योगेंद्र निमचाना को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
9: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
9: जितेंद्र सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
9: योगेंद्र सिंह निमचाना को सुनना चाहेंगे जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
9: नाम बोलूंगा जी, नकी, संजना, अंशका, टिंकल, कन्नू, प्राची, वीर सोलंकी, पिताजी श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माता जी श्रीमती निर्मला देवी, गाँव करकोरा से गजेंद्र प्रधान जी, श्याम चौहान।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं जगदीश सिंह डालिया बोल रहा हूँ, निर्शान जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: यशवीर को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे
1: जी, बच्चों के भी नाम है।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: राजवीर सिंडालिया, सतीश सिंडालिया, ऋतिक सिंडालिया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हरी भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: जिला आप नए बात बोल रहा हूँ, घनश्याम।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज के कलाकार है जसवीर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: जो अगर नाम ले लूं?
0: हाँ बोल दीजिए।
2: मेरी बहन गणपति आनंदी है, गेंदा प्रधान जी है, सब राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: सचिव भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: जी मैं कंसरन बोल रहा हूँ, ग्राम तरारा, जिला अमरा, तहसील हसनपुर से।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: यशवीर जी को सुनवा देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: काजल राणा, किरण राणा और कल्पना राणा और बीना राणा।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं हरि सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: यशवीर को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश दग और कुछ पोती पोता, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छबीस, निशा, कंचन और मेरा भांजा गोविंद, हरिचंद और मनोज। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, सचिव जी नमस्कार, कांचीवर्ण जी बोल रहा हूँ।
0: नमस्ते पंडित जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: यशवीर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: और दो तीन नाम है?
0: हाँ बोल दीजिए।
5: पवन, सुनीता, संतोष, परविंदर और तनु, कुलदीप। नमस्कार।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो सचिव भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गाँव बराना, जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: यशवीर को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: और मेरे साथी आरती भारती स्वाति, विशेष कविता देवी।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: मैं खजान सिंह जोहलपुर से बोल रहा हूँ।
0: खजान भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: यशवीर को अच्छी से रागनी सुनवा दिया।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: कुछ नाम है जी? रामबती, चंद्रकांत, अजय, मोहन।
0: हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
8: इंद्रवीर तेवतिया, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: यशवीर की गाय हुई तो रागनी सुनवा देना। कुछ नाम लेने चाहूँगा?
0: हाँ बोल दीजिए।
8: मंडोना जाफराबाद से मुंशी जी विक्रम सिंह और राजेंद्र सिंह, गुलावथी से पिंटू सैनी, इसपाल हेड़ी, गाँव नथुगढ़ी से सुमित, प्रिंस, छोटू, प्रत्यक्ष, निष्कर्ष, हमारी बुआ जी राजवीरी और गाँव भटौना से मास्टर हरेंद्र सिंह।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर यशवीर से ये रागनी। किस्सा रहेगा सेठ ताराचंद का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं मांगेराम बोल रहा जी, खेड़ा कुरतान डिस्ट्रिक्ट शामली से। हाजी
0: मांगेराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: ऋषिपाल नागर जी को सुनवा दिया, दो का नाम लूंगा जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: हमारे चाचा हैं पंडित महावीर शर्मा जी और भाई हैं डॉक्टर ब्रह्म शर्मा जी। हमारे पोते हैं नितिन, अक्षय, लक्ष्य, आयुष, पीयूष।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी भाई जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं जयपाल सिंह, ग्राम घसौती, तहसील रामपुर, मनिहारान, जिला धर्मपुर से यूपी से बोल रहा।
0: जयपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषिपाल नागर को
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: नाम है जी श्रद्धा पवार, मिट्टू पवार, इनकी दादी है संतोष, इनकी मम्मी है मीनू। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ये ऋषिपाल नागर जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बाबेपुर, मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर, आरव भाटी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल नागौर को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।

0: केशोदक्ष विवेक पर्यंत।
1: हेलो ग्राम संसार,
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
1: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषिपाल नागर को सुनवा देना।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: शशि भाई नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं जी गांव डोंगरा रहा, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ, पंडित यादराम पटवारी।
1: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज सुनाओ जी ऋषिपाल नागर जी को।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: बच्चों के नाम भी बोलूंगा जी।
1: हाँ बोल दीजिए।
3: सुहानी शर्मा है जी पति, और पता है जी भव्य शर्मा और यश शर्मा।
1: हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्ते जी, सुमन बोल रही।
1: सुमन जी नमस्ते, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगी?
4: ऋषिपाल नागर को जी।
1: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, शशि जी नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे
5: हैं? इशार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ शशि जी।
1: राजेंद्र जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ऋषिपाल नागर को सुनना चाहूंगा। राम राम जी।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार
6: जी नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी।
1: राम शरण जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज सर ऋषिपाल नागर जी को सुनना चाहेंगे सर।
1: जरूर सुनवाएंगे।
6: घर के सदस्य सर?
1: हाँ, नाम बोल दीजिए।
6: साहिल विश्वकर्मा, मंजी रंजना, वंदना और प्रियल विश्वकर्मा, सभी कार्यक्रम बढ़िया लगते हैं सर।
1: चलिए, कार्यक्रम पसंद करने के लिए और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल नागर से ये रागनी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर

0: 3 3 2, इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
1: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये

0: घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, अक्सर देखा जाता है कि अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे अत्यधिक लागत हमारे किसान बहन भाइयों की लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो जैविक खेती करने की सिफारिश हमारे किसान बहन भाइयों से कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं।
1: बिल्कुल सचिव भाई, रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर है, तो किसान भाई जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है तो किसानों को जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति परिचित होने की। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही किसान भाइयों को आय भी अधिक प्राप्त होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की अत्यंत लाभदायक है।
0: तो नीलम बहन, इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक जानकारी, जिसका विषय है जैविक खेती द्वारा पर्यावरण संरक्षण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आरपीएस यादव और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती हम पुरातन समय से ही करते आ रहे हैं, लेकिन पहले जो खेती

0: होती थी, निश्चित तौर पे वो हमारी प्राकृतिक खेती होती है। धीरे धीरे उसमें विकास हुआ तो उसमें जो हमारे जैविक उर्वरक डाले गए और जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया गया। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब वो रासायनिक खेती होने लगी, जिसमें ज़्यादातर उर्वरक रसायनों का प्रयोग किया गया, जिसमें चाहे उर्वरक हों और चाहे दवाएं हों, उनका भी खेती में ज़्यादातर प्रयोग किया, जिसके कारण हमारी जो मृदा की संरचना है, मृदा का उत्पादन है, उसमें धीरे धीरे कमी आती गई। और जब यह कमी आ गई तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए, उसको सुधारने के लिए एक हमारा विकल्प वही है कि किस तरीके से हम प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती की तरफ दोबारा आएं। तो जैविक खेती क्या है और किस तरीके से इसे दोबारा कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर RPS यादव जी को, जो उप महाप्रबंधक हैं इफ्को नई दिल्ली में। यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, रासायनिक उर्वरक भी डालते हैं, अगर वो जैविक खेती की तरफ मुड़ना चाहें तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जैविक खेती है क्या?
1: मेरा किसान भाइयों को नमस्कार जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैविक खेती की बात करें उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जिस जमीन में हम पैदावार कर रहे हैं उस जमीन के बारे में जान लें। कि अगर आप किसान भाई देखते हैं कि तीन तरीके से अगर हम अपनी मृदा को विभाजित कर सकते हैं, एक तो देखते हैं कि हमारी जमीन जो है वो कैसे की है, बलुई है, दोमट है या चिकनी मिट्टी है, मुख्य रूप से इन तरह से देखते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये मिट्टी की भौतिक ताकत है या भौतिक उर्वरता है इसको। और दूसरी चीज आती है जिसमें कि हमारी जमीन के अंदर पोषक तत्व कितने हैं, जैसे हमें फसल के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग रासायनिक उर्वरता के नाम से जानते हैं कि हमारी जमीन के अंदर ताकत क्या है।
0: जी
1: तो जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, ये कितनी मात्रा में, उसको हम आकलन करके देखते हैं। तीसरी जो कि अछूती रही है, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है हमारे किसान भाइयों ने, वो है हमारी जैविक शक्ति, जैविक उर्वरता क्या है हमारी जमीन की। तो आप देखते हैं कि हमारी जो जमीन है वो बहुत सारे उसके अंदर जीव जंतु होते हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते और कुछ को हम देख लेते हैं। तो बहुत सारी जरूरत ये है कि हम अपनी जो जमीन है उसकी जैविक शक्ति को बढ़ाएं। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि हमने बहुत सारा रसायन उर्वरकों का उपयोग किया, चूंकि उसकी आवश्यकता थी कि हमें ज्यादा अनाज पैदा करना था, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीजों के साथ समझौता किया और उस समझौते में हमारी जो जमीन की जैविक शक्ति थी वो कमजोर हुई। और इस जैविक शक्ति के कमजोर होने के कारण हमारी जो उर्वरता थी वो कम हुई और हमारी जो लागत उत्पादन होता था जमीन में से उसमें घटता गया। अब समय ये आ गया है कि अगर हम इस जमीन को ऐसे ही खराब करते रहेंगे, अत्यधिक कृषि रसायनों का उपयोग करेंगे, तो ये जमीन हमारे हाथ से बिल्कुल खराब हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि हम ऊपर से तो हम उर्वरक दे सकते हैं, लेकिन जमीन की जो एक अपनी ताकत है, जो अपनी जैव शक्ति है, उसको हम खो रहे हैं। तो मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि अगर हमें ये समय बहुत चेतावनी का है और हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी जमीन की जैविक शक्ति कैसे बढ़ाएं।
0: बिल्कुल, जैविक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भी जैविक खेती करना चाहते हैं
1: जी
0: और इस पे हमारी सरकार भी जोर दे रही है,
1: जी
0: कृषि वैज्ञानिक भी आगे आ रहे हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं किसको अपनाने में, किसानों को?
1: बहुत सही आप कह रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं अब वो समझने लग गए हैं कि जो पहले खाद देते थे और अब खाद दे रहे हैं तो उसमें जो पैदावार आता था वो उसमें गिरावट आई है। तो उन्होंने धीरे धीरे से ही अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमारी ये जैविक शक्ति मजबूत नहीं होगी तो हमारी उर्वरता या जो हमारा उत्पादन है वो अच्छा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार ने इसके लिए जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनको जागरूकता की कमी है और कुछ जानकारी नहीं है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हमारे किसान भाई कहते हैं कि हम रासायनिक खेती में तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं कि हम यूरिया डाल देंगे, DAP डाल देंगे, बहुत सारे खाद डाल देंगे, लेकिन जैविक खेती करने के लिए हमारे पास ये जानकारी नहीं होती कि हम इनको जो पोषक तत्व हैं वो कैसे दिए जाएं। तो एक व्यवस्था यह है कि जैविक पोषक तत्वों को देने के लिए हमारी एक एकीकृत प्रणाली व्यवस्था है जिसमें कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमारे किसान भाई जो होते हैं देखते हैं कि जो फसल अवशेष होते हैं
0: जी
1: उन फसल अवशेषों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते और या तो उनको जला देते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत में या एक बहुत बड़ी मात्रा में उनके अंदर पोषक तत्व तो होते हैं और उनको अगर हम सड़ा करके, उनका अपघटन करा के, उनका हम डिकम्पोज करा करके उपयोग करेंगे तो हमारी जो जमीन में जो उर्वरता है जो जैविक शक्ति है वो बढ़ेगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी सरकार ने इस पर जोर भी दे रही है कि जैव उर्वरक बाजार में उपलब्ध हैं। ये कोई रासायनिक उर्वरक नहीं है, इनके अंदर जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु जमीन में जो भी पोषक तत्व तो होते हैं उनको घोल करके पौधों की जड़ों के माध्यम से उनको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत सारे फास्फोरस को लेके आते हैं, पोटास को लेके आते हैं, जिंक को लेके आते हैं, आयरन को लेकर के आते हैं। तो जमीन के अंदर ये तत्व हैं जो हमारे पौधों की जड़ उसको नहीं ले पाती हैं, उसमें ही जैव उर्वरक काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाई हमारे लेके तो आते हैं जैव उर्वरक, उपयोग भी करते हैं, लेकिन कहते हैं सर इसका असर नहीं आ रहा। तो मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि उनमें जब हमारे जैव उर्वरकों का उपयोग करें उसमें दो तीन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। एक तो यह है कि जब भी आप जैव उर्वरक उपयोग करें तो उसकी सही मात्रा जरूर उपयोग करें, क्योंकि हमारी जानकारी में हम जब देखते हैं किसान भाइयों से तो कहते हैं सर हमने तो 500 ml जो है ना पूरा एक एकड़ में डाल दिया। तो जब तक सही मात्रा में जीवाणु जमीन के अंदर नहीं जाएंगे तो उनका जो काम है उनका असर नहीं दिखेगा। तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम 1 लीटर बायो फर्टिलाइजर एक एकड़ में डालें, क्योंकि ये सही तरीके से अगर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर जमीन में जीवांश में नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, रासायनिक खादों का उस पर दुष्प्रभाव है, तो जो भी हम उसके अंदर उपयोग करते हैं तो उसमें 50% बैक्टीरिया काम नहीं कर निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जैव उर्वरक की मात्रा जो बताई जा रही है उसकी दोगुनी मात्रा करेंगे तो हमारी सही मात्रा में जैव उर्वरक जमीन के अंदर पहुंचेंगे, जिससे हमारी जो जैविक खेती को मुश्किलात हैं कि हमारे पैदावार कम हो जाती है या हमारे जो है सही पोषण नहीं मिल पाता है, उससे हमारा छुटकारा मिलेगा और पौधों को सही पोषण मिलेगा।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो मात्रा की बात रहे, इसको डालने का तरीका भी तो है।
1: बहुत सही आपने कहा है कि हमारे किसान भाई सही तरीके से नहीं डालते हैं। जैसे कि अगर हम तीन तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं, एक तो अगर हमारे किसान भाई गेहूं या चना मटर इसकी बुवाई कर रहे हैं उसको हम बीज शोधित कर दें, अगर बीज बोने से पहले उनके बीज में मिला दें जिसको हम सीड कोटिंग के नाम से कहते हैं और उसके बाद बुवाई करें। दूसरा तरीका ये होता है कि बुवाई से पहले हम गोबर की खाद के साथ मिला करके गोबर की खाद में हम जो 1 लीटर बायो फर्टिलाइजर है उसको मिला दें और उसको छाया में रहने दें और 1 हफ्ते के अंदर उसमें करोड़ों की संख्या में जीवाणु पैदा हो जाएंगे और उस गोबर की खाद को हम पूरे 1 एकड़ में फैला दें और उसको जमीन में मिला दें। तीसरी चीज आती है कि जो फसलें सब्जी वाली हैं या धान की फसलें जिसको हम रोपाई के तरह से लगाते हैं, उसमें किसान भाइयों से कहना है कि वो जो हमारा बायो फर्टिलाइजर होता है उसमें उनकी जड़ों को डुबोएं और जड़ों की डुबो करने के बाद करीब आधा घंटे बाद वो अपना पौधरोपण कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ी चीज है कि जो जीवाणु हैं वो जड़ के पास काम करते हैं और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम उनका उपयोग करें जड़ के आसपास हो, जड़ के आसपास होंगे तो उनका प्रभाव अच्छा होगा और ज़्यादा मात्रा में वो पोषक तत्वों को घोल करके या मोबिलाइज करके पौधों को दे पाएंगे।
0: डॉक्टर साहब बहुत से ऐसे फसलें होती हैं कि जिनकी जड़ों में ही जैव कीटाणु होते हैं जो उर्वरकों का वायुमंडल से एकत्रीकरण करते हैं।
1: बहुत सही कहा है आपने कि नाइट्रोजन को करने के लिए तीन तरह से अगर देखा जाए तो, एक तो जो दलहनी फसलें हैं जिनमें हमारे किसान भाई देखते हैं कि उनको उखाड़ के देखेंगे तो उनकी जड़ों में गांठें होती नाइट्रोजन है उसको लेते हैं और वो पौधे को देते हैं। दूसरे जो हमारे गेहूं है जिसमें दलहनी फसलें नहीं है उनके लिए हम अजोटोबैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं वो स्वतंत्र फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, वो गांठ नहीं बनाते हैं लेकिन जड़ के आसपास काम करते हैं। तीसरे हैं जिसमें कि हमारे पानी में बहुत फसल रहती है उनमें हम जो करने के लिए उसमें एजो स्पेरिलियम बोलते हैं उनको जीवाणुओं को करना चाहिए। तो किसान भाई सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सही फसल के लिए सही जीवाणु उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो मैंने देखा है कि किसान भाई दलहन की फसल में अजोटोबैक्टर डालते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। तो सही जैव उर्वरक का जरूर चुनाव करना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब आपने सही तरीके से डाल लिया सही उर्वरक का, लेकिन सही उर्वरक लिया कहाँ से जाए?
1: बहुत सही सवाल कह रहे हैं कि हमने इस पे बहुत काम किया है और ये देखा गया है कि जो जीवाणु हैं वो जमीन से हम लोग निकालते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके उनकी बढ़ोतरी करके फिर उनका जैव उर्वरक बनाया जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के जहाँ गर्म गर्म रहता है गुजरात है वहाँ के सॉइल से बैक्टीरिया निकालते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर उनको हम ठंडे प्रदेश के जैसे उत्तराखंड है हिमाचल है जम्मू है इधर करते हैं तो उनका उतना प्रभाव नहीं होता। मेरा ये कहना है कि जिस जमीन में उपयोग कर रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट की सॉइल से अगर हम बैक्टीरिया निकाल करके बायो फर्टिलाइजर बनाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जगह से खरीदें जो कि उसमें पता हो कि हाँ उसके अंदर बैक्टीरिया कितने, मात्रा कितने में, और कहाँ की ज़मीन से वो निकाला गया है, तब ये किसान जानकारी ज़रूर ले।

0: लें, इससे हमारी जमीन को सही पोषण मिलेगा और सही तरीके से जैव उर्वरकों का उपयोग हो पाएगा।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो जैव उर्वरक हैं और जैविक खेती, दोनों किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में सहयोगी है?
0: बहुत सही बात है कि जैविक खेती से तो हम अपने मृदा स्वास्थ्य को ठीक करेंगे ही, लेकिन जैविक खेती अपना करके बहुत सारा जो केमिकल हमारा उपयोग होता है जिसमें बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं, उस तरह की चीजों से हम बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा किसान भाई जो फसलों का अवशेष है उसको जला देते हैं, उसके जलाने से वातावरण में जो धुआं आता है तो इससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम उसी कूड़े करकट को जलाने से रोकते हैं और उसको सड़ा देते हैं तो हमें दोनों तरीके से फसल की भी हमारी ताकत मिलती है और जो हम पर्यावरण खराब कर रहे हैं उसके लिए भी हमारा बचाव होता है। दूसरे तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ पौधे हैं जिनको हम लगाते हैं और उन पौधों को काट करके हम अगर कंपोस्टिंग कर दें और कंपोस्टिंग के तौर पे अगर हम उसका उपयोग कर लेंगे तो भी हम पर्यावरण के लिए बचाने का काम जैव उर्वरक अपना करके कर सकते हैं।
1: यानी अगर हम जैविक खेती करते हैं, मृदा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण भी
0: जी
1: ठीक रहेगा और मानव स्वास्थ्य का भी इस पे असर पड़ेगा।
0: जी मानव स्वास्थ्य का देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने अपनी इस विकास की यात्रा में बहुत सारे चीज़ों के साथ समझौता किया जिसमें हमने अपनी जमीन पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य को लेकर के समझौता किया। आज किसान जागरूक हो रहे हैं क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि अगर स्वस्थ या रासायनिक रहित अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा हम बीमार भी कम होंगे। तो निश्चित रूप से अगर जैव उर्वरक उपयोग करेंगे और जैविक खेती अपनाएंगे तो जमीन का स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों ही चीज़ों में सुधार होगा जो कि हमारे देश की जरूरत है।
1: जैविक खेती द्वारा जो उत्पादन मिलेगा वो भी तो जैविक होगा।
0: निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूँ कि जो जैविक खेती जैविक तरीके से जो उत्पादन होगा उसके अंदर जो रासायनिकों की मात्रा नहीं होती है तो हम उसका जब उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका दुरुपयोग नहीं होता या दुष्प्रभाव उसके नहीं आते, इससे हम बच सकते हैं और आने वाली जो बीमारियां हैं कैंसर है इस तरह की बीमारियों से हमारा स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार ने और किसानों ने अब इसको आगे बढ़ाने की अपनी एक मुहिम चला रखी है और बहुत सारे क्लस्टर हैं। एक और चिंता की विषय यह है कि हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान भाइयों को उनको व्यापार नहीं मिल पाता, तो व्यापार के लिए भी मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि वो संगठित होकर के क्लस्टर के रूप में अगर जैविक खेती करेंगे तो व्यापार भी वहाँ होगा, अगर छुटपुट करेंगे तो व्यापार नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मिल करके खेती को बढ़ाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कहते हैं कि अगर कोई कार्य आप संगठित होकर करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी।
0: जी
1: जैविक खेती द्वारा किस तरीके से हमारे किसान भाई अपनी मृदा का स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर आरपीएस यादव जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे अभी ये बातचीत जैविक खेती द्वारा पर्यावरण संरक्षण। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आरपीएस यादव और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं कर्मपाल शर्मा और उनके साथी, तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: भाई फतेह सिंह, मेरी आंखों में पानी आने का जो असली कारण है वो डर भय नहीं बल्कि ये है जो मैं बता रहा हूँ।
1: बता दे भाई।
0: सुनिए, भला इस दुनिया में इस दुनिया में तुझसे पहले

0: को भाया।
1: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे रागिनी और कलाकार थे कर्मपाल शर्मा और उनके साथी।
2: नीलम बहन, भारत सरकार हमारे युवाओं के लिए बहुत तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इस योजना को यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, कौशल विकास योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना है।
2: बिल्कुल नीलम बहन, तो हमारे जो भी युवा साथी हैं, युवा किसान हैं, और हो सकता है कि अब उनके अंदर कोई ऐसी रुचि जागृत हो गई है जिस क्षेत्र में वो रोजगार हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी कौशल विकास केंद्र में जाकर के अपनी रुचि के अनुसार कोई भी कोर्स चुन सकते हैं और रोजगार हासिल कर सकते हैं। और नीलम बहन, आजकल तो देखिए खेती में ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल होता है, तो ड्रोन पायलट बनने के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी कोर्स चलाया जा रहा है, जिसको पूरा करने के बाद आप ड्रोन के पायलट बन सकते हैं और अच्छा खासा रोजगार हासिल कर सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो बात रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, और अब नीलम बहन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए। लेकिन अनुमति लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कहा, शहर को ट्रांजिट नहीं डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का फैसला किया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया और राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज पर्यटन हितधारक सम्मेलन 2026 में भाग लिया। इस दौरान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक पैनल चर्चा हुई। इसमें महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए गए।
2: इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को केवल ट्रांजिट शहर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी विशिष्ट पहचान और पर्यटन क्षमता है। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता इसका राष्ट्रीय राजधानी होना है। इसी कारण यहां संसद, राष्ट्रपति भवन और शहीद स्मारक जैसे प्रमुख स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं।
3: इस शहर में जिस तरीके से ऐतिहासिक गौरव को संभाल के रखा है, लाल किला मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार से लेकर के मेहरौली किला तक, जो कि लोगों का अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। और जब यहाँ की कहानी सुनी जाती है दिल्ली की, तो इंद्रप्रस्थ से लेकर के आज तक की कहानियों में जो प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों के साथ में लोग अटैच होते हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं।
2: वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि राजधानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री खुद नेतृत्व कर रही हैं और लगभग हर महीने पर्यटन नीति की समीक्षा भी करती हैं। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में दिल्ली सरकार दिल्ली टूरिज्म बोर्ड लाने जा रही है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। श्री मिश्रा ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू करने पर बल दे रही है, जिससे फिल्म शूटिंग और इवेंट्स को बढ़ावा मिलेगा।
4: दिल्ली की जितनी भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है और बाकी दिल्ली में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, इंफॉर्मेशन सेंटर एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस टर्मिनल पर और प्रोमिनेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन पर कोई दिल्ली टूरिज्म का इंफॉर्मेशन सेंटर फंक्शनल नहीं है। उन इंफॉर्मेशन सेंटर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज पूरी दिल्ली में बनाई जाए। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, उनमें शानदार दिल्ली की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए एंट्री गेट बनाने की जिम्मेदारी भी दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन को दी गई है।
2: दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली को एक संगठित, आधुनिक और वैश्विक स्तर का पर्यटन केंद्र बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज सेंट स्टीफंस कॉलेज में वार्षिक विदाई समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि कॉलेज के परिचित गलियारों से गुजरते हुए उन्हें समृद्ध चर्चाओं, कक्षाओं, बहसों और मित्रताओं का याद ताजा हो गई। उपराज्यपाल ने वर्ष 2026 के स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने और क्षमता तथा चरित्र के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे कॉलेज की समृद्ध विरासत, बौद्धिकता और विशिष्ट पहचान को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत करें। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज ग्राम कटेवड़ा में फिरनी रोड और RCC नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा ये कार्य सुशासन और अंत्योदय के मंत्र को साकार करता है। श्री सिंह ने कहा कि आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि विकास की धारा बवाना क्षेत्र के सभी गांवों तक

0: पहुंचाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और सामान्य व्यापार तथा भंडारण लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
1: इसके अंतर्गत अब अलग से सामान्य व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी और संपत्ति मालिक विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड UPIC के माध्यम से संपत्ति कर के साथ ही लाइसेंस शुल्क जमा कर सकेंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क संपत्ति कर का 15% तय किया गया है, जो हर वर्ष कर भुगतान के समय देना होगा। भुगतान की रसीद एक वित्तीय वर्ष के लिए ही वैध डिम्ड लाइसेंस मानी जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापार संचालकों को अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना, व्यवसाय को सरल बनाना तथा अनुपालन के बोझ को कम करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके लागू होने पर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और चिकित्सकों के लिए हर नए मामले की जानकारी जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। इससे प्रभावी निगरानी, शीघ्र पहचान और मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से समय पर उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस बीमारी को अनिवार्य सूचना प्रणाली में शामिल करने से इसका शीघ्र पता लगाने और उपचार करने में आसानी होगी, जिससे विकलांगता का जोखिम कम हो जाएगा। साथ ही अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा और संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा। यह पहल कुष्ठ रोग को एक सामान्य और उपचार योग्य बीमारी के रूप में स्थापित करते हुए उससे जुड़े भेदभाव को कम करेगी तथा उपचार अनुपालन को बेहतर बनाएगी। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक में लगभग 59% भारत में पाए जाते हैं, जिनमें 44% से अधिक मरीज निजी संस्थानों में इलाज कराते हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इस निर्णय के साथ दिल्ली भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगी जहां कुष्ठ रोग अधिसूचित है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम छिपे मामलों की पहचान और बीमारी के नियंत्रण में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राजधानी को कुष्ठ मुक्त बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
3: जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रभावी माध्यम है। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर नीतियां और योजनाएं अधिक लोक केंद्रित बनती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शालीमार बाग को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण, निर्बाध जल आपूर्ति, अटल कैंटीन की स्थापना, आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का विस्तार, वाटर ATM, पार्कों का आधुनिकीकरण और बेहतर पार्किंग जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, वहीं लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपात स्थिति की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली का परीक्षण आज दोपहर करीब 12 बजे किया गया। नागरिकों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है। इसके लिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे।
5: मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। एक एक गांव तक, एक एक कस्बे तक लोगों की जान और माल की सुरक्षा निश्चित करने के लिए ये सुविधा बहुत उपयोगी रहेगी। इस सुविधा के लिए ना फोन की डेटाबेस की जरूरत है, ना डेटा सिस्टम की जरूरत है और ये संपूर्ण रूप से ऑपरेटर एग्नोस्टिक है।
4: दूर संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्लू लाइन में सुप्रीम कोर्ट से इंद्रप्रस्थ के बीच निर्धारित मरम्मत कार्य के कारण आज रात से कल सवेरे तक कुछ मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी। कल सुबह कुछ मार्गों पर पहली मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है। वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली रेल सेवा सवेरे 6:05 पर चलेगी। वहीं लक्ष्मीनगर से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली मेट्रो 6:21 पर शुरू होगी। इसके अलावा यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली मेट्रो सेवा सवेरे 5:50 पर चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 अलग अलग मामलों में 2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने पूर्वी जिले से एक आरोपी को 1 किलो 900 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में आनंद विहार बस अड्डे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 280 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। साथ ही एक अन्य मादक पदार्थ मामले में पुलिस ने एक आरोपी को 100 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गाजीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को पूर्वी जिला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित से सेकेंड हैंड कार बेचने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेकेंड हैंड कार तलाश रहे लोगों को निशाना बनाता था और अग्रिम भुगतान लेकर संपर्क तोड़ देता था। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को संगीतमय राम कथा का विशेष आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी प्रस्तुति अपने अपने राम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति में भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और मानवीय मूल्यों को संगीतमय शैली में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को मर्यादा, सत्य और कर्तव्य निष्ठा के मूल्यों से जोड़ना है। राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की हैं। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये सुविधाएं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की ओर से बसों और बस स्टॉप पर पानी तथा ORS की व्यवस्था की जा रही है।
6: DTC की बसों में भी पानी उपलब्ध रहे ये व्यवस्था कर रहे हैं। हर बस शेल्टर पे हमारे जल सेवक पानी और ORS के साथ में रहें, ये भी लगातार किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में हीट वेव से रिलेटेड हर मेडिसिन और ट्रीटमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ कूलिंग एरिया बना करके लोगों को रिलीफ भी दिया जाएगा। स्कूलों में ऑलरेडी ORS और पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है।
0: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत जलदूत पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हजरत निजामुद्दीन टर्मिनल, नेहरू प्लेस टर्मिनल और जल विहार टर्मिनल जैसे कुछ स्थानों पर शीतल जल व्यवस्था की गई है। राजधानी में आज दिन के समय

का अनुमान है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में एक विकेट पर 53 रन बना लिए थे। कल जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कहा, शहर को ट्रांजिट नहीं डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का फैसला किया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया। और राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में फरहीन इकबाल का पुरखलूस आदाब। सामईन अल्फाज को तरतीब देकर वज़न के साथ पेश करने को ही शायरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि शायरी में बुलंद ख्याली और रमजियत भी ज़रूरी है। यानी जो बात शेर में कही गई है उसका लहजा शायराना हो, ज़ाहरी तौर पर जो शेर का मफहूम समझ में आ रहा है उसके हकीकी मायने उससे किसी कदर बुलंद हों और कारी या सामे अपने बेदार जहन से फौरन समझ जाए कि शेर में जो बात कही गई है वो किन माने में कही गई है। यही शेर की खूबी भी है। यह भी हकीकत है कि शायरी ऐसा फ़न है कि किसी को सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि ये जज्बात और एहसासात के नतीजे में किसी शख्स पर इल्हाम की शक्ल में उतरती है। वो जज्बात खुशी और मुसर्रत के भी हो सकते हैं और अफसरदगी के भी। समय आइए सुनते हैं मुशायरा। आज के मुशायरे की निजामत कर रहे हैं जनाब तसनीफ हैदर।
2: आकाशवाणी के इस मुशायरे में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शहबाज रिजवी, उसामा जाकिर, विपुल कुमार और खाकसार तसनीफ हैदर। आइए इस मुशायरे की इब्तिदा करते हैं शहबाज रिजवी साहब के कलाम से। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना कलाम हम सबको सुनाएं।
3: बहुत शुक्रिया तसनीफ भाई। एक गज़ल से चंद अशार समात करें। धूप ढल जाती है साए पे जवाल आता है, मिटने लगता हूँ तो बनने का ख्याल आता है।
2: वाह।
3: रात कट जाती है आँखों को चरागाह करते, रात कट जाती है आँखों को चरागाह करते, दिन निकलता है तो चेहरे पे जमाल आता है।
4: वाह वाह वाह।
3: दिन निकलता है तो चेहरे पे जमाल आता है। पहले उड़ता है मोहब्बत के चमन में तन्हा, पहले उड़ता है मोहब्बत के चमन में तन्हा, फिर किसी शाम बहुत हो के निढाल आता है। फिर किसी शाम बहुत हो के निढाल आता है। पहले जम जाता है आँखों के दरीचे में कहीं, फिर मेरे खून में यकदम से उछाल आता है। जंगलों से जो गुजरता हूँ तो आती है सदा, पेड़ पौधों को भी रोने का कमाल आता है। मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर, मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर, पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है।
2: अरे वाह वाह, फिर से पढ़िए।
3: पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है। मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर, पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है। धूप ढल जाती है साए पे जवाल आता है, मिटने लगता हूँ तो बनने का ख्याल आता है।
4: वाह वाह, क्या अच्छी गजल है।
3: बहुत शुक्रिया। और एक गजल देखें कि ऐ मेरी बादे सबा चल तो जरा जेरे नगी,
4: ऐ मेरी बादे सबा
3: चल तो जरा जेरे नगी, शहरे इफलाक से लौटे हैं अभी खाक नसी।
2: क्या बात, वाह बहुत अच्छे।
3: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग,
2: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग,

0: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग बस चरागों को समझते हैं सितारों को नहीं।
1: क्या बात है, वाह वाह, क्या
0: बस चरागों को समझते हैं सितारों को नहीं। ये जो रोने की सदा आती है दीवारों से,
1: ये जो रोने की सदा आती है दीवारों से,
0: मेरी आवाज पे आवाज लगाती हो कहीं, मेरी आवाज पे आवाज लगाती हो कहीं। हाथ छूटा तो कलेजे से लगी हिजर की धूप,
1: हाथ छूटा तो कलेजे से लगी कलेजे से लगी हिजर की धूप।
0: रंग बिखरे तो नजर आई मुझे मेरी जमी,
1: क्या
0: रंग बिखरे तो नजर आई मुझे मेरी जमी। ख्वाब टूटा तो खुले आंख के शह पर मुझ पे, ख्वाब टूटा तो खुले आंख के शह पर मुझ पे। नींद आई तो उड़ा दूर खलाओं में कहीं, नींद आई तो उड़ा दूर खलाओं में कहीं। याद रहता ही नहीं मुझको तेरे घर का पता, ढूंढता फिरता हूँ मैं अपना खुदा अपनी जबी। बहुत शुक्रिया। और एक गजल देखें कि तहलील हुए जाते हैं आवाज के सम में,
1: तहलील हुए जाते हैं आवाज के सम में,
2: आवाज के सम में।
0: तायर तो चले आए थे गंदम के भरम में,
1: तायर तो चले आए थे गंदम के,
0: तायर तो चले आए थे गंदम के भरम में।
1: बहुत अच्छा शाबाश।
0: आवाज लगाती है मुझे मेरी खामोशी, आवाज लगाती है मुझे मेरी खामोशी। और शोर मचाती है सबा दीदे नम में, और शोर मचाती है सबा दीदे नम में। तन्हाई चली आई थी एक रोज मेरे घर, अब खाक उड़ाती है मेरे दस्ते अलम में, अब खाक उड़ाती है मेरे दस्ते अलम में। जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें अब,
1: जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे
0: उन्हें अब, सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में।
1: अरे वाह, पैसा पड़ी, वाह वाह।
0: जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें अब, सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में। हम कैसे यहाँ ख्वाब के अंबार लगाते, हम कैसे यहाँ ख्वाब के अंबार लगाते। आंखें तो लगा रखी थी वीरान शिकम में, आंखें तो लगा रखी थी। और आखिर में गजल और देख लें कि जमी से देखते रहते हैं आसमान का दुख, हमारे दुख से बड़ा तो नहीं जहान का दुख। बदन सराय से आती है बेनवा चीखें, हमारी रूह में पिन्हा है इस मकान का दुख। हमारी रूह में पिन्हा है इस मकान का दुख। दिखाए फिरते रहो सबको चाक दामानी, दिखाए फिरते रहो सबको चाक दामानी। छुपाए फिरते रहो सबसे साहिबान का दुख, छुपाए फिरते रहो सबसे साहिबान का दुख। नशिस्ते खत्म हुई और चराग बुझने लगे,
1: नशिस्ते खत्म हुई और चराग बुझने लगे।
0: समझ में आएगा किसको चराग दान का दुख। जरूरतों के मुताबिक घटे बढ़ाए गए मकान दिल से जुड़ा है यहाँ जमान का दुख। चढ़ो पहाड़ तो पत्थर भी पांव चूमेंगे, उतरने वाले से पूछो कभी ढलान का दुख।
2: बहुत अच्छा शेर।
0: चढ़ो पहाड़ तो पत्थर भी पांव चूमेंगे, उतरने वालों से पूछो कभी ढलान का दुख। दरख्त काटने वालों कभी सुनो तो सही, दरख्त काटने वालों कभी सुनो तो सही। परिंदे बोलते रहते हैं बेजबान का दुख, परिंदे बोलते रहते हैं बेजबान का दुख। ये गजल और देख लें। मैं खुश हूँ मेरे पास ये तन्हाई बहुत है,
1: मैं खुश हूँ मेरे पास ये तन्हाई बहुत है।
0: मुझको मेरे होने की ही रुसवाई बहुत है, मुझको मेरे होने की ही रुसवाई बहुत है। उस आँख से कहता हूँ मेरा दिल न टटोले,
1: उस आँख से कहता हूँ मेरा दिल न टटोले।
0: इस दिल में चुभे तीर की गहराई बहुत है, इस दिल में चुभे तीर की गहराई बहुत है। पत्थर पे उगा रखा है इस दिल का सबूचा, पत्थर पे उगा रखा है इस दिल का सबूचा। खिलने के लिए दर्द को पुरवाई बहुत है, खिलने के लिए दर्द को पुरवाई बहुत है। कब मैंने कहा तुझसे मेरे सर पे रहे हाथ, कब मैंने कहा तुझसे मेरे सर पे रहे हाथ। को तेरे चादर की चौथाई बहुत है। उस शोक के हाथों से जला भी हूँ बुझा भी, अपना है कभी वो कभी हर जाई बहुत है। तुम चाहो तो एक फूल मुझे फेंक के मारो, तुम चाहो तो एक फूल मुझे फेंक के मारो। देखो मेरी मिट्टी अभी पथराई बहुत, तुम चाहो तो एक फूल मुझे फेंक के मारो।
2: क्या कहने,
0: देखो मेरी मिट्टी अभी पथराई बहुत।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। जो लोग

0: मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें, अब सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में। सामईन, अभी आप सुन रहे थे शहबाज़ रिज़वी को, बड़े ही उम्दा अशआर से उन्होंने हमें नवाज़ा। अब मैं यहाँ मौजूद शौरा की इजाज़त से अपना कलाम पढ़ना चाहूँगा। मतला पेशे खिदमत है। न तेरे पास कोई संग है न सर साई,
1: न तेरे पास
0: पास
1: कोई
0: कोई
1: संग
0: संग
1: है
0: है
1: न
0: न
1: संग
0: सर
1: साई।
0: साई, न तेरे पास कोई संग है न सर साई, चला है धुन में मोहब्बत की तू किधर साई।
1: वाह वाह वाह,
0: चला है धुन में मोहब्बत
1: मोहब्बत
0: की
1: की तू,
0: तू किधर साई, निकल के देख कभी वहशतों के सहरा से,
1: निकल के देख कभी
0: निकल
1: वहशतों
0: के
1: के
0: देख
1: सहरा
0: कभी
1: से।
0: वहशतों के सहरा से, तुझे बनाना है सचमुच का एक घर साई।
1: हाय हाय हाय
0: तुझे
1: हाय,
0: बनाना है सचमुच
1: सचमुच
0: का
1: का
0: एक
1: एक
0: घर
1: घर साईं।
0: साई,
1: क्या सच्चा
0: और
1: शेर है।
0: ज़रा सी ठेस से मिल जाएगा ये मिट्टी में, ज़रा
1: जरा
0: सी
1: सी ठेस
0: ठेस
1: से
0: से
1: मिल
0: मिल
1: जाएगा ये
0: जाएगा ये
1: मिट्टी
0: मिट्टी
1: में।
0: में, तेरा बदन है कोई कांच का हुनर साई, और
1: वाह
0: कदम में डूब का खतरा, कदम में पार का रंग,
1: वाह, हाय हाय
0: कदम
1: हाय,
0: में डूब का खतरा,
1: कदम में
0: कदम में
1: पार का
0: पार का रंग,
1: रंग।
0: यही किनारे दरिया यही भंवर साई,
1: वाह वाह
0: यही
1: वाह,
0: किनारे दरिया
1: यही
0: यही
1: भंवर
0: भंवर
1: साईं।
0: साई। और ख़ुद अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, ख़ुद अपने आप
1: आपको
0: को पहचानना
1: पहचानना
0: ज़रूरी
1: जरूरी
0: है,
1: है।
0: ख़ुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साई,
1: वाह वाह वाह
0: ख़ुद
1: वाह,
0: अपने आप से थोड़ी
1: थोड़ी
0: सी
1: सी बात
0: बात कर
1: कर
0: साई।
1: साईं।
0: और शिकस्ते ज़ात भी उम्दा, शिकस्ते दुनिया भी, शिकस्ते
1: शिकस्ते
0: ज़ात भी
1: जात भी उम्दा,
0: उम्दा,
1: शिकस्ते
0: शिकस्ते
1: दुनिया
0: दुनिया भी,
1: भी।
0: मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साई,
1: बहुत अच्छे,
0: मिला
1: वाह
0: है
1: वाह वाह,
0: जो
1: जो
0: भी
1: भी
0: मोहब्बत के
1: मोहब्बत के
0: नाम
1: नाम
0: पर
1: पर।
0: साई।
1: बहुत अच्छे,
0: और एक दूसरी गज़ल है कि दिल उसी शख्स के ध्यान में है,
1: उसी
0: दिल उसी
1: शख्स के
0: शख्स के
1: ध्यान
0: ध्यान
1: में
0: में
1: है
0: है,
1: वो।
0: वो जो मसरूफ़ इम्तिहान में है।
1: वाह, वो जो
0: दिल उसी
1: मसरूफ
0: शख्स के ध्यान
1: इम्तिहान
0: में
1: में है,
0: है,
1: वो जो
0: वो जो मसरूफ़
1: मसरूफ
0: इम्तिहान
1: इम्तिहान
0: में
1: में
0: है,
1: है।
0: खूबरूई में खाल खाल एक तिल,
1: खूब रुई में खाल
0: खूबरूई
1: खाल एक
0: में
1: दिल,
0: खाल खाल एक तिल,
1: दिल।
0: नाक के ऐन दरमियान में है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: खूबरूई में खाल खाल एक तिल, नाक के ऐन दरमियान
1: दरमियान
0: में
1: में
0: है,
1: है।
0: और बात से कबल बुए खुश का हुनर,
1: बात
0: बात
1: से
0: से
1: कबल
0: कबल
1: बुए
0: बुए
1: खुश
0: खुश
1: का
0: का
1: हुनर।
0: हुनर, उन लबों के गुलाबदान में है,
1: वाह
0: उन
1: वाह
0: लबों के गुलाबदान में है, और एक हरे रंग की परी शायद,
1: वाह, एक
0: एक
1: हरे
0: हरे
1: रंग
0: रंग
1: की
0: की परी
1: परी
0: शायद,
1: शायद।
0: मेरे ख्वाबों के आसमान में है,
1: बहुत अच्छा,
0: और एक गुलाबी तरंग का अफसू,
1: एक
0: एक
1: गुलाबी
0: गुलाबी
1: तरंग
0: तरंग
1: का
0: का अफसू
1: आसमान।
0: उसकी भीगी हुई जबान में है।
1: बहुत अच्छा,
0: नींद मेरी मेरा सुकून तसनीफ, नींद मेरी मेरा
1: मेरा
0: सुकून
1: सुकून
0: तसनीफ
1: तसनीफ।
0: उसी आगोशे मेहरबान में है। एक गज़ल कुछ यूँ है कि किस बहारा से होकर आए थे, किस
1: किस
0: बहारा से
1: बहार से,
0: होकर आए थे, कौन
1: कौन सी
0: सी
1: फसल
0: फसल
1: ले
0: हो
1: गए
0: गए हैं
1: हैं।
0: हम, कोई भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल कत्ल हो गए हैं हम,
1: वाह
0: कोई
1: वाह वाह वाह,
0: भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल
1: वाजिबुल
0: कत्ल
1: कत्ल
0: हो
1: हो
0: गए
1: गए
0: हैं
1: हैं
0: हम,
1: हम।
0: और कुछ भी कहने से डरते रहते हैं, बात इशारों में करते रहते हैं, कुछ भी कहने से डरते
1: करते
0: रहते
1: रहते हैं,
0: हैं,
1: बात
0: बात
1: इशारों
0: इशारों
1: में
0: में करते
1: करते
0: रहते
1: रहते हैं।
0: हैं, भीड़ की नज़र हो गए हैं हम, खौफ की नस्ल हो गए हैं हम,
1: वाह वाह वाह
0: भीड़ की
1: वाह,
0: नज़र हो गए हैं हम,
1: खौफ
0: खौफ की
1: की
0: नस्ल हो
1: नस्ल
0: गए
1: हो
0: हैं
1: गए
0: हम,
1: हैं।
0: और उसकी सब बददिमागियों पर हम हुस्न को दे रहे हैं बस तरजीह,
1: उसकी
0: उसकी
1: सब
0: सब बददिमागियों
1: बददिमागियों
0: पर
1: पर
0: हम
1: हम
0: हुस्न
1: हुस्न
0: को
1: को
0: दे
1: दे
0: रहे
1: रहे
0: हैं
1: हैं
0: बस तरजीह,
1: तरजीह।
0: इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मने अक्ल हो गए हैं हम,
1: वाह वाह वाह,
0: इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मने अक्ल
1: दुश्मने
0: हो गए
1: अक्ल
0: हैं
1: हो गए
0: हम,
1: हैं।
0: और डालियों पर फुदकने वालों को किसने दी है सजाए यकरंगी,
1: वाह,
0: डालियों
1: डालियों
0: पर
1: पर
0: फुदकने
1: फुदकने
0: वालों
1: वालों
0: को
1: को
0: किसने
1: किसने
0: दी
1: दी
0: है
1: है
0: सजाए
1: सजाए यकरंगी,
0: यकसमती,
1: यकसमती।
0: बंदरों की सिफात वाले थे भेड़ की नकल हो गए हैं हम,
1: बहुत अच्छा,
0: बंदरों की
1: बहुत अच्छा,
0: सिफात वाले थे भेड़
1: भेड़
0: की
1: की
0: नकल
1: नकल
0: हो
1: हो
0: गए
1: गए
0: हैं हम।
1: हैं।
0: कुछ एक अशार और पढ़
1: क्या
0: देता हूँ। ये गज़ल के चंद अशार यूँ हैं कि जुर्म है राहे अदब में ये हुनर पाना भी,
1: जुर्म है
0: राहे
1: राहे
0: अदब
1: अदब में
0: में
1: ये
0: जुर्म
1: हुनर
0: है
1: पाना
0: राहे
1: भी।
0: अदब में ये हुनर पाना भी, अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी,
1: वाह वाह वाह
0: अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी।
1: वाह,
0: इतना बेफहम हूँ बेरंग हूँ बेफायदा हूँ, इतना
1: इतना
0: बेफहम
1: बेफहम
0: हूँ
1: हूँ,
0: बेरंग
1: बेरंग
0: हूँ
1: हूँ,
0: बे

0: फायदा हूँ कि समझना मुझे बेकार है समझाना भी, कि
1: बहुत
0: समझना
1: अच्छा
0: मुझे
1: मुझे बेकार
0: बेकार
1: है
0: है
1: समझाना
0: समझाना भी,
1: भी,
0: और तुझसे मुमकिन हो तो उस सांस पे कर रक्स बदन,
1: वाह तुझसे
0: तुझसे
1: मुमकिन
0: मुमकिन
1: हो
0: हो तो उस सांस पे कर रक्स
1: रक्स
0: बदन,
1: बदन।
0: जिसको आता हो किसी दीप सा जल जाना भी,
1: बहुत
0: जिसको आता हो किसी दीप सा जल
1: जल
0: जाना
1: जाना
0: भी,
1: भी,
0: काहली मेरी तबीयत है अमल इश्क मेरा,
1: वाह
0: काहली
1: काहली
0: मेरी
1: मेरी
0: तबीयत
1: तबीयत
0: है
1: है।
0: अमल इश्क मेरा, कुछ ना होने से ही होगा यहाँ हो जाना भी,
1: वाह वाह वाह
0: कुछ ना
1: वाह वाह
0: होने से ही होगा
1: होगा यहाँ
0: यहाँ
1: हो
0: हो
1: जाना
0: जाना
1: भी
0: भी,
1: भी क्या।
0: और ये सलीका ये अदा और ये बातों का रचाओ, ये
1: क्या
0: सलीका
1: ये
0: ये
1: अदा
0: अदा
1: और
0: और
1: ये
0: ये
1: बातों
0: बातों
1: का
0: का रचाओ,
1: रचाओ।
0: तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना भी,
1: वाह
0: तुझसे
1: वाह
0: कुछ जल तो रहा है तेरा
1: तेरा
0: दीवाना
1: दीवाना
0: भी,
1: भी,
0: और लहर खाती हुई साड़ी की कसम जाने अदा,
1: वाह
0: लहर
1: वाह
0: खाती हुई
1: तेरी
0: साड़ी
1: साड़ी
0: की
1: की
0: कसम
1: कदम
0: जाने
1: जाने
0: अदा,
1: अदा।
0: तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी,
1: बहुत
0: तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी। बहुत शुक्रिया। मैं अब हमारे दरमियान मौजूद उसामा जाकिर साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो अपनी गज़ल के अशआर सुनाएं।
1: मैं एक गज़ल से इब्तदा करता हूँ, पेश खिदमत है।
0: इरशाद।
1: अपने नूर को मिट्टी कर और
0: और मेरी
1: मेरी
0: मिट्टी
1: मिट्टी पानी
0: पानी
1: कर,
0: कर,
1: मौला मेरी मूरत को 16
0: 16 आने।
1: आने मनमानी कर, और मेरा नाम ठिकाना हो
0: मेरा नाम ठिकाना
1: सब
0: हो,
1: खुश आवाज़ परिंदों का।
0: क्या बात है, मेरा
1: मेरा
0: नाम
1: नाम
0: ठिकाना
1: ठिकाना
0: हो,
1: हो, मेरा
0: ठिकाना
1: नाम
0: हो
1: ठिकाना हो सब
0: सब
1: सब
0: खुश
1: खुश
0: आवाज
1: आवाज़
0: परिंदों
1: परिंदों
0: का।
1: का, मेरी ज़ात को जंगल कर
0: हाँ
1: और जंगल कोहिस्तानी कर।
0: क्या बात है
1: वाह
0: भाई,
1: जी
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वो मेरा होना
0: मेरा
1: अपने होने की पहचान बनाकर गूंद,
0: मेरा होना अपने होने की पहचान
1: पहचान
0: बनाकर
1: बनाकर
0: गूंद,
1: गूंद, मेरा होना अपने
0: अपने होने
1: होने की पहचान बनाकर गूंद, मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर।
0: क्या बात है
1: वाह
0: भाई, वाह
1: भाई
0: वाह वाह वाह,
1: वाह।
0: बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है।
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद, मेरी मिट्टी चाक पे धर
0: क्या बात है,
1: और कुन की कारस्तानी कर, और क्या तेरा दिल बहलाएगी सूखे घुटनों की चटपट,
0: क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या तेरा दिल
1: क्या
0: बहलाए
1: तेरा दिल बहलाएगी
0: सूखे घुटनों के,
1: सूखे
0: सूखे
1: चटपट, घुटनों की चटपट, मन में प्रेम का रस भर मौला हर सजदा नूरानी कर।
0: क्या बात है,
1: वाह
0: बहुत ही अच्छे भाई, वाह
1: मन
0: वाह,
1: में प्रेम का रस भर मौला
0: हर
1: हर
0: सजदा
1: सजदा
0: नूरानी,
1: नूरानी कर, और या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई,
0: हाय हाय हाय, चाह की गहराई का जवाब नहीं, वाह वाह
1: और या तो कम कर
0: वाह,
1: दिल की तह में
0: हर
1: हर
0: एक
1: एक
0: चाह
1: चाह
0: चाह
1: की
0: की गहराई,
1: गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी
0: क्या
1: कर।
0: बात है भाई, वाह
1: वाह
0: वाह वाह वाह,
1: या तो कम कर दिल की तह में हर
0: हर
1: एक
0: एक
1: चाह
0: चाह
1: की
0: की गहराई,
1: गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी
0: लाफानी कर,
1: कर, और पीले रेगिस्तान से सुनकर नीले पानी की गाथा,
0: पीले रेगिस्तान से सुनकर,
1: पीले रेगिस्तान से सुनकर
0: नीले पानी
1: नीले
0: की
1: पानी की
0: गाथा,
1: गाथा, चिकनी चिकनी मिट्टी चीख रही है बाबा खत्म कहानी कर,
0: चिकनी मिट्टी चीख रही है
1: चिकनी मिट्टी चीख रही है बाबा
0: बाबा
1: खत्म
0: खत्म
1: कहानी
0: कहानी कर। एक और गज़ल के कुछ जी बिल्कुल,
1: शेर।
0: इरशाद फरमाएं।
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं,
0: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूं मैं,
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं, सूखी आंखों में पानी भरने वाला हूँ
0: क्या
1: मैं।
0: बात है
1: वाह
0: भाई,
1: और
0: वाह वाह वाह वाह,
1: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ,
0: एक नदी के तूफानों
1: तूफानों
0: का
1: का
0: चौकीदार
1: चौकीदार,
0: भी हूं,
1: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं,
0: है वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा,
1: एक
0: फिर से
1: नदी के
0: पढ़िए,
1: तूफानों का चौकीदार भी हूँ,
0: वाह वाह,
1: एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं,
0: वाह
1: और मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी तू नवजात शिशु,
0: आया है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह,
1: मेरे
0: मेरे
1: ख्वाब
0: ख्वाब
1: की
0: की
1: कोख से जन्मी
0: तू
1: तू
0: नवजात,
1: नवजात शिशु, तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूँ मैं।
0: क्या
1: वाह
0: बात है, वाह वाह वाह, बहुत
1: तेरी
0: अच्छा, क्या
1: किलकारी
0: जबान है,
1: से
0: वाह वाह,
1: फूट रही ज्वाला हूँ मैं,
0: क्या बात है,
1: और मेरी आँख में टूटने वाली एक किरण है तू,
0: मेरी आंख में टूटने वाली,
1: मेरी आंख में टूटने वाली एक
0: एक
1: किरण
0: किरण
1: है
0: है
1: तू,
0: तू। वाह,
1: तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूं
0: हाय हाय, वाह
1: मैं,
0: वाह, फिर से पढ़िए। वाह वाह वाह
1: मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू,
0: वाह वाह,
1: तेरे ख्वाब
0: ख्वाब
1: में
0: में
1: गढ़ने
0: गढ़ने वाला
1: वाला
0: एक
1: एक
0: भाला
1: भाला हूं
0: हूँ।
1: मैं। और एक और गजल के चंद शेर,
0: जी,
1: अपने तेवर थाम संवरिया,
0: ने तेवर थाम सवरिया,
1: कांप कांप बल खाए सड़क,
0: क्या बात है। अपने
1: अपने तेवर
0: तेवर
1: थाम
0: थाम
1: संवरिया,
0: सवरिया, कांप कांप बल,
1: कांप कांप बल खाए सड़क, चलने वाली तेरी चाल पे जालिम मर ना जाए सड़क।
0: क्या बात है। वाह,
1: और
0: पड़े
1: पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल,
0: पड़े ये दिन भर झोंके, दुनिया की आंखों में
1: पड़े
0: धूल।
1: पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल, रात को एक साए के पीछे पीछे चलती जाए सड़क।
0: हाय हाय, वाह
1: वाह।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: और चलते चलते सोच रहे हो,
0: चलते चलते सोच रहे हो,
1: चलते चलते मत सोचो,
0: वाह वाह वाह, चलते चलते सोच रहे हो, चलते चलते मत सोच,
1: चलते चलते सोच रहे हो,
2: चलते चलते मत
1: चलते
2: सोचो,
1: चलते मत सोचो, सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क।
0: क्या बात है भाई।
2: वाह।
0: वाह वाह वाह,
1: सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क, और दीवानों को चूमने वाले,
0: दीवानों को चूमने वाले,
1: दीवारों को चूमने
0: दीवारों को,
1: वाले तुझ पर कमरे तारी हों,
0: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे
2: कमरे
0: तारी हों।
1: तारी,
0: वाह, तुझ
1: दीवारों को चूमने वाले तुझ
0: पर
1: पर कमरे तारी हों, घर को लौटने वाले तुझको रस्ते में मिल जाए सड़क।
0: क्या बात है।
2: वाह
0: वाह
2: दोस्त,
0: वाह वाह,
2: वाह।
0: बहुत अच्छे भाई,
1: घर
0: क्या
1: को
0: क्या
1: लौटने वाले
0: लहजा है। वाह,
1: तुझको
0: मिल
1: रस्ते में मिल जाए
0: जाए
1: सड़क।
0: सड़क। हाँ,
1: एक और गजल है, दुनिया भर से ऊब गए हो, आओ पधारो
0: दिल हारो। वाह वाह वाह,
1: दिल
0: क्या
1: हारो,
0: बात है, बहुत अच्छी गजल
1: दुनिया भर से ऊब गए हो,
0: है। आओ पधारो,
1: आओ पधारो
0: दिल हारो,
1: दिल हारो, खुद से भी बेजार हुए हो,
0: क्या बात है,
1: मौका मारो
0: दिल हारो।
1: दिल
0: वाह
1: हारो।
0: वाह, बहुत अच्छे
2: वाह
0: भाई, वाह
2: वाह।
0: वाह वाह,
1: और हर बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल गुलाब,
0: क्या बात है। हर
2: क्या
0: बंदूक की काली
1: हर
0: नाल,
1: बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल
0: लाल गुलाब,
1: गुलाब, हर अंधी सरहद की आंख में गोली मारो
0: वाह वाह वाह,
1: दिल
0: दिल हारो,
2: हारो।
0: क्या
2: बहुत
0: बात है
2: अच्छी,
0: भाई, वाह वाह,
2: बहुत अच्छी,
0: कमाल की गजल है, क्या
1: बहुत।
0: शेर
1: जो
0: है।
1: भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो।
0: है,
2: वाह
0: जो
2: वाह।
0: भी
2: जो
0: धड़कता
2: भी
0: दिल मिल
2: धड़कता
0: जाए
1: जो भी धड़कता दिल मिल जाए
0: उससे
1: उससे टूट
0: टूट के
1: के
0: प्यार
1: प्यार
0: करो,
1: करो, ख्वाब भरी सारी आंखों की नजर उतारो
2: दिल हारो।
1: दिल
0: वाह
1: हारो।
0: वाह,
1: और दिन निकले तो सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो,
0: क्या बात है। वाह वाह, दिन निकले तो
1: दिन
0: सूरज
1: निकले तो सूरज
2: सूरज की
1: की हर
2: हर एक
1: एक किरण
2: किरण का
1: का मुंह
2: मुंह
1: चूमो,
2: चूमो,
1: और रातों को चांद का कोमल नूर निहारो
0: दिल
1: दिल
0: हारो। वाह
1: हारो।
0: वाह वाह
2: बहुत
0: वाह, क्या
2: अच्छी,
0: बात है
2: बहुत
0: उसामा,
2: अच्छी।
0: कमाल, बहुत अच्छा,
1: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है,
0: क्या बात है, सच्चाई है बिल्कुल। वाह वाह,
1: पहली
0: पहली दूसरी
1: दूसरी
0: तीसरी
1: तीसरी
0: दुनिया
1: दुनिया
0: सब
1: सब
0: माया,
1: माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे संवारो
2: दिल
1: दिल
2: हारो।
1: हारो।
0: वाह
1: बहुत अच्छा,
0: वाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत अच्छा।
0: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारों, इसे सवारो दिल हारो। सामईन, आप सुन रहे थे अभी उसामा जाकिर को, जिन्होंने बड़े कमाल के अशआर सुनाए, और उनका लहजा आपने महसूस किया होगा कि बेहद मुनफरिद था। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दरमियान मौजूद इस महफिल की आखिरी शायर जनाब विपुल कुमार से, कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं।
3: कुछ शेर,
0: इरशाद,
3: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई नहीं,
0: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई,
3: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई नहीं, तू नहीं है तो मेरे शोला नशीन कोई
2: कोई
3: नहीं।
0: क्या
2: वाह
0: बात,
2: वाह,
0: वाह
2: बहुत
0: वाह
2: अच्छा,
0: वाह,
2: क्या बात है,
3: तू नहीं है तो मेरे शोला नशीन
0: कोई
2: कोई
0: नहीं, क्या
2: नहीं,
0: बात है, वाह वाह,
3: चांद चेहरे भी चमकते हैं गुलो सुंबल भी,
0: चांद चेहरे भी चमकते हैं गुलो
3: चांद चेहरे भी
0: सुंबुल,
3: चमकते हैं गुलो
0: गुलो
3: सुंबुल
0: सुंबुल भी,
3: भी, तेरी दुनिया में मगर दिल सा नगीं कोई
2: कोई
3: नहीं।
0: क्या
2: वाह
0: बात
2: वाह
0: है,
2: वाह।
0: वाह वाह,
3: एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
0: एक आवाज लगाता हूँ कोई
2: एक
0: है भी यहाँ,
2: आवाज लगाता हूँ
3: एक
2: कोई,
3: आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ, एक आवाज सी आती है कहीं कोई
0: क्या
2: नहीं।
0: बात है भाई,
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह वाह,
2: वाह
0: क्या
2: वाह
0: शेर है
2: वाह।
0: भाई, बहुत अच्छा,
3: एक
0: क्या
3: आवाज लगाता हूँ कोई
2: बात
3: है
2: है
3: भी
2: भी,
3: यहाँ,
0: बहुत अच्छा,
3: एक आवाज़ सी आती है कहीं।

0: एक आलम है फरावानी मर्दुम से मगर,
1: एक आलम
0: एक
1: है
0: आलम है
1: फरावानी
0: फरावानी
1: मर्दुम
0: मर्दुम
1: से
0: से
1: मगर।
0: मगर, मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ वहीं कोई
1: क्या बात है
0: नहीं।
1: भाई, वाह वाह
0: वाह
1: बिल्कुल,
0: वाह
1: वाह
0: सर,
1: वाह वाह,
0: मैं जहाँ
1: क्या
0: जिसको
1: शेर है,
0: बुलाता
1: बुलाता हूँ
0: हूँ
1: वही
0: वहीं
1: कोई
0: कोई
1: नहीं।
0: नहीं।
1: बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह।
0: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो,
1: सवाद शाम में
0: शाम
1: सब
0: में
1: वैश्यों
0: सब
1: का जलसा हो,
0: सवाद
1: मतलब
0: शाम में सब वैश्यों का जलसा हो, लहू का राग हो और सुरतराज प्यासा हो।
1: वाह है।
0: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी,
1: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां
0: सुना
1: उसकी,
0: रहे हैं
1: मुझे
0: मुझे लोग
1: लोग
0: दास्तां
1: दास्तां उसकी,
0: उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो।
1: क्या वाह
0: वाह
1: वाह, अरे
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह,
0: सुना
1: बढ़िया
0: रहे
1: बढ़िया भाई,
0: हैं
1: वाह वाह वाह,
0: मुझे लोग
1: क्या बात है,
0: दास्तां
1: बहुत अच्छी
0: उसकी,
1: है, क्या
0: इस
1: बात,
0: एतमाद से
1: इस
0: जैसे
1: एतमाद से
0: वाह
1: जैसे
0: किसी
1: किसी
0: ने
1: ने देखा
0: देखा
1: हो,
0: हो।
1: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह,
0: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते हूँ,
1: किसी के
0: वाह,
1: होंठ सुरों में कलाम करते
0: किसी
1: हूँ,
0: का रंज उदासी की तान लेता हो,
1: आए हैं
0: वाह,
1: वाह
0: किसी
1: वाह,
0: कनार की खुशबू से शेर खुलने लगे, कि
1: आए हैं,
0: बात बात नहीं हो बस एक इशारा हो।
1: क्या बात
0: वाह
1: है भाई,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: अच्छा,
0: अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम,
1: अब आ गए हैं कि
0: अब आ गए
1: आखिर
0: हैं
1: कि
0: कि
1: आखिर
0: आखिर
1: तेरी
0: तेरी
1: गली
0: गली
1: का
0: का
1: भरम,
0: भरम, कहीं किवाड़ की दस्तक ही से ना खुलता हो।
1: क्या बात,
0: वाह
1: अरे वाह,
0: वाह
1: फिर से
0: वाह।
1: बढ़िया,
0: अब आ
1: वाह
0: गए
1: वाह
0: हैं कि
1: वाह,
0: आखिर
1: आखिर
0: तेरी
1: तेरी
0: गली
1: गली
0: का
1: का
0: भरम,
1: भरम, वाह वाह वाह वाह,
0: कहीं किवाड़ की
1: किवाड़, वाह
0: दस्तक
1: वाह,
0: ही से ना खुलता
1: क्या
0: हो।
1: बात है भाई,
0: बहुत
1: क्या
0: अच्छा,
1: जबान है, बहुत अच्छे भाई,
0: मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ,
1: मैं ये समझ के लगे गुल से बात
0: मैं
1: करता हूँ,
0: ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ, कोई तो बाग में मेरा हिसाब लिखता हो।
1: क्या बात है, बहुत
0: बराबर,
1: अच्छा,
0: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझ में,
1: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझ में,
0: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझ में, फिर कोई चश्मा नया फूट बहेगा मुझ में।
1: क्या बात है,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह,
1: अच्छा है,
0: क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज,
1: क्यों ना कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश
0: क्यों न कुछ
1: मिजाज,
0: शोर उठाऊं कि
1: कि
0: वो
1: वो
0: खामोश
1: खामोश
0: मिजाज,
1: मिजाज,
0: बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझ में।
1: क्या बात,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह,
0: क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि
1: कि वो
0: वो खामोश
1: खामोश मिजाज,
0: मिजाज,
1: वाह वाह वाह,
0: बे इरादा ही सही ध्यान तो
1: ध्यान तो
0: देगा
1: दे,
0: मुझ
1: क्या
0: में,
1: बात है,
0: घर में चलते हुए डरता हूं कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझ में।
1: क्या बात है, वाह रे वाह,
0: वाह
1: हाय
0: वाह,
1: हाय,
0: घर
1: डरता
0: में चलते हुए डरता
1: हूँ
0: हूं कि
1: कि
0: कोई
1: कोई
0: साया
1: साया आके
0: आके
1: टकराएगा,
0: टकराएगा और आ ही बसेगा मुझ में,
1: बहुत अच्छे भाई, वाह,
0: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से,
1: इस
0: वाह,
1: कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से,
0: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से, सैर अच्छी है मगर कौन रहेगा मुझ में।
1: क्या
0: वाह
1: बात है,
0: वाह
1: हाय हाय
0: वाह,
1: हाय हाय
0: वक्त
1: हाय,
0: झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर,
1: वक्त
0: वाह,
1: झाड़ेगा नए हिजर
0: हिजर
1: के
0: के वक्त
1: मौसम,
0: झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझ में,
1: क्या बात
0: वाह
1: है भाई,
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह,
1: वाह, क्या
0: और
1: क्या
0: एक
1: शायर है,
0: लम्हा
1: वाह वाह
0: कोई
1: वाह, बहुत
0: आन
1: अच्छे,
0: गिरेगा
1: दोबारा
0: मुझ
1: पढ़ो
0: में,
1: यार, बहुत अच्छा शेर, रुक
0: वक्त
1: कर रुक कर,
0: झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर,
1: आए हैं, वक्त
0: और
1: झाड़ेगा,
0: एक लम्हा कोई आन गिरेगा
1: और
0: मुझ
1: एक
0: में,
1: लम्हा कोई आन
0: वाह,
1: गिरेगा,
0: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
1: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद
0: एक
1: का,
0: ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
1: वाह,
0: सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझ
1: आए
0: में।
1: हैं, वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह,
0: वाह,
1: क्या बात, फिर से पढ़ी, वाह वाह
0: एक
1: वाह,
0: ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
1: आए हैं,
0: सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझ में,
1: क्या बात है,
0: मेरे नाजुक मेरी मिट्टी पे बहुत रक्स न कर,
1: मेरे नाजुक
0: मेरे
1: मेरी
0: नाजुक मेरी मिट्टी पे
1: बहुत
0: बहुत रक्स
1: रक्स
0: न
1: न कर,
0: कर, ध्यान की रुत है कोई फूल खिलेगा मुझ में।
1: क्या
0: बहुत
1: बात है,
0: अच्छा,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया,
1: वाह वाह,
0: आँखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए,
1: आंखों की स्याही बढ़ती
0: बढ़ती
1: है
0: है
1: ख्वाब
0: ख्वाब
1: रकम
0: रकम
1: करने के
0: करने आँखों
1: लिए,
0: की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने
1: करने
0: के
1: के
0: लिए, इस पर भी वो कहता है कम है सुरमे की कलम करने के लिए,
1: वाह वाह वाह,
0: मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं,
1: वाह, मेरे खुश्क बदन की
0: मेरे
1: खा
0: खुश्क बदन की ख्वाहिश में
1: कई
0: कई बादल
1: बादल उड़ते
0: उड़ते
1: फिरते
0: फिरते
1: हैं,
0: हैं, कई नदियाँ बहती रहती हैं मेरी खाक को नम करने के लिए,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: रे वाह
0: वाह,
1: वाह
0: हाय
1: वाह
0: हाय
1: भाई,
0: हाय
1: हाय वाह
0: कई
1: रे,
0: नदियाँ बहती रहती हैं
1: मेरी
0: मेरी
1: खाक
0: खाक को
1: को
0: नम
1: नम
0: करने
1: करने
0: के
1: के लिए,
0: लिए,
1: हाय हाय हाय,
0: तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है,
1: तू किन बागों का हुस्न लिए
0: तू किन बागों का हुस्न लिए इस
1: इस
0: तपती
1: तपती
0: रेत
1: रेत
0: पे
1: पे
0: बैठा
1: बैठा है,
0: है, आए आहुए मस्ती होश में आ एक दश्त है रम करने के लिए।
1: हाय
0: वाह
1: हाय
0: वाह
1: हाय,
0: वाह,

0: कहता है वो जालिम सब्र करो, क्या तेग के नीचे गर्दन है।
1: कहता है वो जालिम सब्र
0: कहता है
1: करो,
0: वो जालिम सब्र
1: सब्र
0: करो,
1: करो,
0: क्या
1: क्या
0: तेग के
1: तेग के
0: नीचे
1: नीचे
0: गर्दन
1: गर्दन है।
0: है। और एक इशारा होता है मुझे गर्दन खम करने के
1: अरे वाह
0: लिए।
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: क्या
0: शुक्रिया,
1: बात
0: बहुत
1: है, क्या बात।
2: सामईन, आप सुन रहे थे विपुल कुमार को। इसी के साथ ये मुशायरा अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ता है, और हमारे साथ मौजूद थे जनाब शहबाज रिजवी, जनाब उसामा जाकिर और जनाब विपुल कुमार, साथ में खाकसार तसनीफ हैदर। उम्मीद है कि आपको ये मुशायरा पसंद आया होगा। शुक्रिया।
3: सामईन, अभी आप मुशायरे से महजूज़ हो रहे थे, मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे जनाब तसनीफ हैदर। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत। मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। आइए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ। तेरी दोस्ती हम इस तरह निभाएंगे, तेरी दोस्ती हम इस तरह निभाएंगे, तुम रोज़ खफा होना हम रोज़ मनाएंगे, पर मान जाना मनाने से, वरना ये भीगी पलके लेके हम कहाँ जाएंगे।

श्रोताओं, जो आपने ये गीत सुना वो हमने लिया था फिल्म जो जीता वही सिकंदर से, और आवाज जतिन जी की थी। आइए चलते हैं अगले नगमे की तरफ। कुछ अधूरी चीजें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। अब चांद को ही देख लो।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म जख्म से और आवाज अलका याग्निक जी की थी। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर IED विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और BCCI ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
3: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने

0: नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज CDOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस CDOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है से फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

0: वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: आपदा को हम अवसर में बदलें, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है, और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
0: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
2: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
3: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे

0: and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. Four security personnel killed in an IED blast near Kanker Narayanpur district border in Chhattisgarh. Renowned lyricist Prasoon Joshi appointed chairman of Prasar Bharati. And in cricket, BCCI announces Indian squad led by Harmanpreet Kaur for ICC Women's T20 World Cup. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। मगरबी बंगाल में दो असेंबली हलकों के 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में तकरीबन 90% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती पीर के रोज होगी। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए इजाफी मुशाहिद और पुलिस मुशाहिद मुतय्यन किए हैं। सरकार ने मुल्क के इमरजेंसी मवासलाती निजाम को मुस्तहकम बनाने और पब्लिक सेफ्टी बुनियादी ढांचे को वसत देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट निजाम का आगाज किया है। छत्तीसगढ़ में कानकेर नारायणपुर जिला सरहद के नजदीक देसी साख्त के एक बम धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो गई है। नामवर नगमा निगार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने आईसीसी खवातीन टी20 वर्ल्ड कप के लिए हरमनप्रीत कौर की जेरे कमान भारतीय खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में जनूबी 24 परगना जिले में आज 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में तकरीबन 90% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इनमें मगराहाट पश्चिम हलके में 11 बूथ जबकि डायमंड हार्बर हलके के 4 बूथ शामिल हैं। दोनों असेंबली हलकों में दोबारा पोलिंग बड़ी हद तक पुरअमन रही। मुतालिका रिटर्निंग अफसरों और मुशाहिदीन की तरफ से मौसूला रिपोर्ट की बुनियाद पर इंतखाबी कमीशन ने वहां दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। इन पोलिंग मराकिस पर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती पीर के रोज होगी। असम में सभी 126 सीटों, केरलम में 140 और पुदुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को हुई थी। तमिलनाडु में सभी 234 असेंबली हलकों और मगरबी बंगाल में पहले मरहले में 152 सीटों के लिए पोलिंग 23 अप्रैल को हुई थी। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग में पिछले महीने की 29 तारीख को 142 हलकों में वोट डाले गए थे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में गिनती के लिए इजाफी मुशाहिदीन और पुलिस मुशाहिदीन को तैनात किया है। असिस्टेंट काउंटिंग मुशाहिदीन की मदद के लिए कुल 165 इजाफी मुशाहिदीन को तैनात किया गया है जबकि गिनती के मराकिस के अतराफ सिक्योरिटी और अमन कानून के इंतजाम को मुस्तहकम करने के लिए 77 पुलिस मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। कमीशन ने कहा है कि इन इकदाम का मकसद वोटों की गिनती के अमल को एक महफूज, पुरअमन, बगैर किसी डर के और शफाफ तरीके से अंजाम देना है। ताहम उसने वजाहत की है कि पुलिस मुशाहिदीन वोटों की गिनती के रोज किसी भी सूरत हाल में गिनती के हॉल में दाखिल नहीं होंगे। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं जो पीर के रोज होगी। रियासत में 23 अप्रैल को सभी 234 हलकों में वोट डाले गए थे। मजमुई तौर पर 4023 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रियासत में 188 आम हलके हैं जबकि 44 हलके रिजर्व हैं। चुनाव कमीशन के मुताबिक रियासत में 85.10% पोलिंग रिकॉर्ड की गई और कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। रियासत में 75,064 पोलिंग मराकिस पर मजमुई तौर पर 5,73,43,291 वोटर्स ने अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया। मुआसलात के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुल्क के इमरजेंसी मुआसलाती निजाम को मुस्तहकम बनाने और पब्लिक सेफ्टी बुनियादी ढांचे को वसअत देने के लिए आज सेल ब्रॉडकास्ट निजाम CBS का आगाज किया। ये एक अंदरून मुल्क तैयार की गई टेक्नोलॉजी है जिसे कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने वाली अथॉरिटी और उमूर दाखिला की वजारत के इश्तराक से टेली मवासलात महकमे के तहत टेलीमेटिक्स के फरोग से मुतालिक मरकज सी डॉट ने तैयार किया है। आज पूरे मुल्क में मजकूरा निज़ाम की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई, जिसके दौरान पूरे मुल्क में लोगों के मोबाइल फोन पर एमरजेंसी अलर्ट के पैगाम पहुंचाए गए। इसके तहत आज दिन में मजकूरा निज़ाम की जांच के लिए लोगों के मोबाइल फोन पर सायरन अलर्ट के साथ नोटिफिकेशन भेजा गया। आज नई दिल्ली में इसके लॉन्च के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के मुल्क के फ्रेमवर्क में एक बड़े कदम से ताबीर किया और कहा कि इससे शहरियों को तहफ्फुज फराहम करने में एक बड़ी तब्दीली की अक्कासी होती है, क्योंकि इसमें पेशबंदी का रवैया इख्तियार किया गया है। जनाब सिंधिया ने कहा कि जदीद तर्ज की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी बरूएकार लाकर सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS के जरिए करोड़ों लोगों तक मखसूस बरवक्त अलर्ट पैगाम फौरी तौर पर पहुंचाया जा सकेगा और इस तरह कोई भी फर्द पीछे नहीं रहेगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि आलमी मियार के अंदरून मुल्क तैयार किए गए मजकूरा निज़ाम से मुल्क की तैयारी मुस्तहकम हो सकेगी, कार्रवाई करने की सलाहियत में इजाफा होगा और एक ज्यादा महफूज और ज्यादा मजबूत मुल्क बनाने के अहद को तकवीत मिलेगी।
2: आज सी डॉट जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस सी डॉट की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: इस मौके पर मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और टेली मवासलात महकमे के सेक्रेटरी अमित अग्रवाल भी मौजूद थे। हमारे नामा निगार ने बताया कि सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तरबियत के साथ साथ पूरे मुल्क में CBS निज़ाम की आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई है।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम एक मखसूस जोग्राफियाई हिस्से पर मबनी होता है जो इंफरादी सेल टावर्स और क्लस्टर्स की सतह पर अलर्ट को यकीनी बनाता है। ये SMS पर मबनी रिवायती निज़ाम के महदूद तरीक़ाकार की बजाय मुतालिक़ इलाकों में बड़ी आबादी तक इंतहाई अहम मालूमात को फौरी और मौसर तौर पर पहुंचा सकता है। ये निज़ाम अचानक सैलाब और गैस के रिसाव जैसी आफात की सूरत में बग़ैर किसी ताखीर के सेकंडों में एहतियाती इकदामात की खातिर बरवक्त और कई जबानों में अलर्ट पहुँचा सकता है। एक बराह रास्त और सरकारी राबते के तौर पर यह कुदरती आफात के बंदोबस्त को मुस्तहकम कर सकता है, उससे निपटने के इकदामात में मदद फराहम कर सकता है, अफरा तफरी को कम कर सकता है और शहरियों के एतमाद में इजाफा कर सकता है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज कांकेर नारायणपुर जिला सरहद के नज़दीक देसी साख के एक बम धमाके में 4 सिक्योरिटी अहलकारों की मौत हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के अहलकार देसी साख के धमाका खेज हरबे को बेअसर करने की कार्रवाई के लिए गए थे। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक टीम को छोटे बेतिया थाने के तहत आने वाले इलाके में बारूदी सुरंगों को हटाने, इलाके में अपना कंट्रोल मुस्तहकम बनाने और तलाश की कार्रवाई के लिए तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान देसी साख्त का धमाका खेज हरबा इसे नाकारा बनाते वक्त फट पड़ा। इस धमाके में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले और परमानंद कोमरा शदीद तौर पर जख्मी हो गए और बाद में जख्मों की ताप न लाकर चल बसे। बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सुंदरराज ने बताया कि खुद सुपुर्दगी करने वाले माओनवाजों और दीगर जराये से हासिल मालूमात की बुनियाद पर हालिया महीनों में बस्तर डिवीजन में देसी साख्त के कई धमाका खेज हरबे बरामद किए गए हैं और उन्हें नाकारा बना दिया गया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने प्रसून जोशी को भारतीय सरकारी नशरियाती इदारे प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया है। प्रसून जोशी एक मकबूल नगमानगार, राइटर और मवासलात की माहिर शख्सियत हैं। जनाब जोशी एक सरकर्दा तख्लीक कार हैं जिनका ताल्लुक ادب، اشتہارات، سینما اور عوامی مواصلات سے ہے۔ ان کی تقرری پر اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ جناب جوشی ایک ایسی منفرد تخلیقی شخصیت ہیں جو ایڈورٹائزنگ، ادب، فن اور سینما سے وابستہ ہیں۔ وزیر موصوف نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کے زیر قیادت پرسار بھارتی میں ایک نئی توانائی پیدا ہوگی۔ اس سے قبل جناب جوشی ممبئی کے فلم سرٹیفیکیشن کے مرکزی بورڈ کے چیئرپرسن کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔

0: इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने 2026 के नीट इम्तिहान के लिए चंडीगढ़ में 6 इम्तिहान मराकज़ कायम किए हैं जो कल होने वाला है। उम्मीद है कि इन मराकज़ पर मजमूई तौर पर 2854 उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए मखसूस रहनुमा उसूल जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ फोटो वाला एक ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाना होगा जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड या राशन कार्ड शामिल हैं। इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक हाजिरी रिकॉर्ड की जाएगी और वो दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक इम्तिहान मराकज में दाखिल हो सकेंगे। गुजरात के शहर सूरत में दरख्शां गुजरात इलाकाई सरबरा कॉन्फ्रेंस आज रिकॉर्ड 2792 मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाने के साथ खत्म हो गई, जिनकी मालियत 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को आलमी सप्लाई निजाम में रुकावटों को मौकों में बदलना चाहिए और एक खुद कफील मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर अपना मकाम बनाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत को बढ़ावा देना और मजबूत निजाम कायम करना मुल्क की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जनाब नड्डा ने कहा कि विकसित भारत के नजरिए को अमली शक्ल देने में इस तरह की इलाकाई सरबराह मीटिंग अहम रोल अदा करती हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए रियासत के नायब वजीर आला हर्ष संघवी ने कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं, उम्मीद है कि उनसे अगले 3 साल में 2,82,000 से ज्यादा नौजवानों के लिए रोजगार के सीधे मौके पैदा होंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जनाब हर्ष संघवी ने तापी, डांग, वलसार और भरोच जैसे कबायली ज़िलों में ऐसी सनतें कायम करने के सरकार के एक कलीदी मंसूबे को भी उजागर किया जिनसे आलूदगी नहीं फैलेगी। इसमें ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस इलाकाई सरबराह कॉन्फ्रेंस में सूरत के रवायती टेक्सटाइल खिते को एक ज़्यादा जाम मलबूसात के शोबे के तौर पर उसत देने पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई, साथ ही मकामी सनतों को इक्तसादी एतबार से बाएख्तियार बनाने पर भी ख़ास ध्यान दिया गया। सूरत से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने वजारत खारजा और वजारत दाखिला के साथ इश्तराक में कमलेश पारिक को मुतहदा अरब अमारात से भारत लाने के सिलसिले में कामयाबी के साथ हवालगी का रेड नोटिस हासिल कर लिया है। एक बयान में CBI ने कहा कि पारिक बड़े पैमाने पर माली धोखाधही के एक मामले के सिलसिले में मतलूब है जिसके सबब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत आने वाले बैंकों को 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। आज गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक इंडियन इंस्टीट्यूट के 63वें यौम तासीस के मौके पर कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने भारत के बैन अलाक़वामी तिजारती और मैनेजमेंट मंजरनामे के फरोग में मजकूरा इदारे की मुसलसल शानदार कारकर्दगी को सराहा और इदारे को मुबारकबाद दी। वजीर मौसूफ ने आलमी तिजारत में पॉलिसी, तहकीक और सलाहियत साजी में एक सरकर्दा इदारे के तौर पर उसके रोल को भी उजागर किया। भारतीय रेलवेज ने रेलवे पुल से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और मेट्रो रेल पावर निजाम को वसूल देने की खातिर 895 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे और सलाहियत बढ़ाने के अहम प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। अर्जियाती साइंस के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने आज आवाम को यकीन दहानी कराई है कि मई के महीने के दौरान गर्मी में तेजी आने की वजह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब सिंह ने कहा कि कुछ खित्तों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रह सकता है और गर्मी में शिद्दत आ सकती है, लेकिन मुल्क भर में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने खवातीन के ICC T20 आलमी कप 2026 के लिए भारतीय खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर कप्तान होंगी जबकि स्मृति मंधाना को नायब कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड की मेजबानी में यह टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा और इसका फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। 15 रुकनी भारतीय टीम में शिफाली वर्मा, जमेमा रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली और रिचा घोष शामिल हैं। बैडमिंटन में आज डेनमार्क के हॉर्सन में थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में मर्दों की भारतीय टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मगरबी बंगाल में 2 असेंबली हलकों के 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में तकरीबन 90% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती पीर के रोज होगी। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए इजाफी मुशाहिद और पुलिस मुशाहिद मुतय्यन किए हैं। सरकार ने मुल्क की एमरजेंसी

मवासलाती निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और पब्लिक सेफ्टी बुनियादी ढांचे को वसत देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट निज़ाम का आगाज किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर नारायणपुर जिला सरहद के नजदीक देसी साख्त के एक बम धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो गई। नामवर नगमा निगार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने आईसीसी खवातीन टी20 वर्ल्ड कप के लिए हरमनप्रीत कौर की जेरे कमान भारतीय खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के अंक में संपादकीय में हम बात करेंगे अशांत समय में वैश्विक शांति के संदर्भ में महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य में साम्य के बिंदु। हमारी अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में कुछ विशेष टिप्पणियाँ। उसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय भाषाओं के साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना के विषय में। और हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगी उनकी पुत्रियां सीमा सागर और सुजाता सहाय।

जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो इतिहास और साहित्य हमें ऐसे अनेक स्रोत प्रदान करते हैं जहां पर मानवता की सबसे उज्जवल आकांक्षाएं अभिव्यक्त हुई हैं। आज जब हम चारों ओर देख रहे हैं, युद्ध की आहटें हैं, भय की परछाइयां हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवारें ऊंची होती चली जा रही हैं, ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य हो या महात्मा बुद्ध का दर्शन और उनकी प्रज्ञा, दोनों ही मनुष्य के भीतर करुणा, सह अस्तित्व और आत्मिक संतुलन की स्थापना पर बल देते हैं। कविगुरु टैगोर की बात करें तो वो केवल बंगाल के कवि नहीं थे, केवल भारत के नहीं थे, वे उस समूची मानवता के कवि थे जो सीमाओं से परे जाकर सोचती है और जो प्रेम को ही जीवन का सत्य मानती है। अशांत समय में टैगोर का काव्य एक दीपक की तरह है जो ये नहीं कहता कि अंधेरा नहीं है, पर ये अवश्य कहता है कि प्रकाश संभव है। टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, मनुष्य की आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, पर वो ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, वो श्रमिक के पसीने में, किसान की माटी में और बच्चे की हंसी में बसा है। ये विचार कितना क्रांतिकारी था उस समय के लिए और आज भी कितना ताजा है। उनकी कविता शांति का केवल आह्वान भर नहीं करती, वो शांति की जड़ें खोजती है, वो जड़ें जो मनुष्य के भीतर हैं, करुणा में, सह अस्तित्व में, प्रकृति के साथ तादात्म्य में, और वही महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा, मध्यम मार्ग और मैत्री जैसे सिद्धांत विश्व शांति की ठोस आधारशिला रखते हैं। बौद्ध साहित्य, विशेषकर धम्मपद, हमें ये सिखाता है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम ही उसका अंत करता है। टैगोर की रचनाओं में बार बार एक ऐसे विश्व का स्वप्न उभरता है जहां सीमाएं नहीं संवाद हो, जहां भय नहीं विश्वास हो। उनकी ये प्रसिद्ध प्रार्थना मन हो निर्भय जहां, दरअसल एक ऐसे वैश्विक समाज की कल्पना है जो शांति और नैतिकता पर आधारित है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि और टैगोर के काव्य में एक गहरा साम्य है, मानव केंद्रित चिंतन, अहिंसा की अनिवार्यता और आंतरिक शांति को बाहरी शांति का आधार मानना। आकाशवाणी, जो दशकों से विचार और संवेदना का सेतु रही है, ऐसे विमर्शों के माध्यम से न केवल अतीत की धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है, बल्कि वर्तमान को भी एक नई दिशा देना चाहती है। संवाद, सह अस्तित्व

और शांति की दिशा में। साहित्य भारती की ओर से ये संपादकीय महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और विश्व कवि को नमन है, जिनकी वाणी में वैश्विक शांति का स्वर आज भी जीवित है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर। 90 वर्षों में कितनी आवाजें, कितने शब्द, कितने स्वप्न इस माध्यम ने सजोए हैं, सवारे हैं। साहित्य का ये विस्तार आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला।
1: एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था कि एक कहानी चुनिए और उसका एक पात्र चुनिए साहब, उस पर एक वार्ता 10 मिनट की। तो जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने तीसरी कसम कहानी चुनी, जिस पर फिल्म बनी है रेणु जी की, तीसरी कसम कहानी चुनी और हीरामन जो उसका कैरेक्टर है वो पात्र चुना मैंने। तो ये एक सिलसिला था उनका पूरा कि अपने से आप कहानी चुनी है, लेकिन बताना पड़ता था कि हमने ये कहानी चुनी है, ये पात्र, ताकि रिपीटिशन ना हो। ये इस तरह के कार्यक्रम हुए। फिर साहित्यकारों पर वार्ताएं हुई, कहा कि साहित्यकार चुनिए साहब। फिर कहना आप उर्दू के साहित्यकारों पर लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब उर्दू मजलिस जो है, अब वह हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य सब अब दूरदर्शन पर तो धारावाहिक बाद में शुरू हुए हैं, रेडियो ने पहले शुरू कर दिया धारावाहिक। एक धारावाहिक कार्यक्रम चला था यहाँ, जिसमें धारावाहिक कार्यक्रम में ये चला था कि एक लेखक और उसकी कोई रचना, वो होगा आधा घंटे का, रिकॉर्डिंग आधा घंटे की होती थी, लेकिन 5-5 मिनट के 6 एपिसोड होते थे। मतलब 6 दिन तक, मंडे टू सैटरडे, वो 5-5 मिनट सुनाया जाएगा। तो एक लेखक चुनना है आपको और उसकी एक किताब चुननी है, तो उसको आपको 6 एपिसोड में बांटना है और 5-5 मिनट के हों, जिसमें लेखक के बारे में और एक जो कृति चुना है आपने उसके बारे में जानकारी श्रोताओं तक पहुंच जाए। ये एक धारावाहिक शुरू किया गया। ये जब चुना गया तो हमसे पूछा गया, हमने उनसे कह दिया कि मैं लेखक तो कालिदास और रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनका नाटक है मुझे। तो फिर मैंने 2 जो एपिसोड हैं वो तो मैंने लेखक के बारे में लिखा। तो रिकॉर्डिंग जब हो गई तो जब प्रसारण उसका हुआ तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रमानाथ अवस्थी, उठकर गले लगा रहे हैं मुझे, सुनला तुमने क्या साहब लिखा है। तो मैंने देखा कि आकाशवाणी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कैसे जन जन तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जिस जमाने में नहीं था टेलीविज़न, जिस जमाने में यह नहीं था, उस जमाने में तो एक ही माध्यम था ना कि लोगों तक पहुंचने का, वो श्रव्य माध्यम था, और श्रव्य माध्यम था रेडियो, ट्रांजिस्टर, तो आकाशवाणी। तो यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
0: 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर ये महज एक संख्या नहीं बल्कि 90 वर्षों की सेवा, 90 वर्षों की साधना और 90 वर्षों की आवाजों का उत्सव है। भारत की आत्मा का संबंध उन भाषाओं से बहुत गहरा जुड़ा है जिन्हें हम जनजातीय भाषाएं या बोलियां कहते हैं। संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी, कुड़ुक, बोडो, ये सिर्फ भाषा या बोलियां नहीं है, ये जीवन दर्शन है। इन भाषाओं के साहित्य में मनुष्य की वो आदिम चेतना है जो आज के भौतिक युग में हम खोते जा रहे हैं। आदिम चेतना यानी वो बोध जो प्रकृति को माँ मानता है, जो नदी में देवत्व देखता है और जो पशु पक्षियों से संवाद करता है, जो धरती को केवल संपत्ति नहीं एक जीवित सत्ता मानता है।

0: संथाली की लोक कथाओं में स्त्री की स्वतंत्रता का उत्सव है। गोंडी गीतों में वन और मनुष्य के बीच का वो रिश्ता है जो आज के पर्यावरण संकट के समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जनजातीय भाषाओं का साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना।
1: यही बात भारत की सैकड़ों जनजातीय भाषाओं के बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है।
2: भारत की जनजातीय भाषाओं में बसा साहित्य कागज के सफेद पन्नों का मोहताज नहीं रहा। ये तो एक ऐसी वाचिक विरासत है जो पुरखों की सांसों से होती हुई हमारी रगों तक पहुंचती है।

0: जब हम इन कथित हाशियों की भाषाओं के भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का साहित्य एक जीवित ज्ञान परंपरा है।
1: अरुणाचल की मिश्मी कहानियों में हवाओं के रुख को पहचानना हो या नीलगिरी की इरुला जनजाति के गीतों में छिपी जड़ी बूटियों का गहन रहस्य जानना हो तो प्रकृति के साथ जीवन ही एकमात्र तरीका है। चाहे वो लद्दाख के ब्रोकपा समुदाय के हजारों साल पुराने आर्य गीत हों, अंडमान की ओंगे जनजाति की लहरों को समझने वाली कथाएं, या मेघालय की खासी लोक कथाओं का मातृसत्तात्मक दर्शन, ये सब हमारी सामूहिक चेतना के शिलालेख हैं।
0: आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रही हैं जनजातीय साहित्य और संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा मीणा।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनजाति जो शब्द है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है, जबकि लोक प्रचलन में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। आदिवासी समुदायों ने हजारों सालों के अपने जीवन के अनुभव, जो उनकी ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात करते हैं उसमें उनके जीवन के अनुभव हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका ज्ञान है, ये ज्ञान है उनकी कहानियों में, गीतों में, परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। मुख्य धारा का जो साहित्य है उसे दो भागों में हम मोटे तौर पे विभाजित करते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी अपने साहित्य को हिंदी के लोक और अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से अलग उसे ओरेचर कहते हैं, ओरल लिटरेचर, जो कि पुरखौती साहित्य है। और इनका जो मौखिक ज्ञान है ये लिपिबद्ध करने का काम अंग्रेज अध्येताओं ने किया था। 600 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं में लिखित परंपरा है। बहुत सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि नहीं थी लेकिन दूसरी लिपि का इस्तेमाल किया गया, जिसे पूर्वोत्तर में बहुत सारा साहित्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कुछ उदाहरण मैं देखती हूँ। देखिए, मिशनरी पीओ बोर्डिंग ने संताल पुरखौती कथाओं का रोमन लिपि में प्रकाशन किया था 1924 में। WG आर्चर ने 1945 में संताल पुरखौती गीतों का संग्रह किया था। और अभी 2006 में अन्विता अब्बी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। फादर हाफमैन द्वारा संकलित मुंडा गीतों का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जब मैं कहती हूँ कि एक भाषा में एक समाज का ज्ञान संरक्षित होता है तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान, क्योंकि एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ बरसात का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में हर एक माह में होने वाली बारिश के लिए एक अलग शब्द है। वहाँ ऊंट के लिए 270 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा है बो, जिसके बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जैसे संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह।

0: बुआ मांझी, गणेश देवी, और इसके साथ ही आप देखेंगे 90 के दशक के बाद आदिवासी भाषाओं में जो लेखक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। रामदयाल मुंडा, हेराल्ड तोपनो, वॉल्टर भेंगरा, मंगल सिंह मुंडा, महादेव टोप्पो, निर्मल मिंज, अनुज लुगुन, हरिराम मीना, शंकरलाल मीना, और स्त्रियां भी आदिवासी लेखन में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं मंजू ज्योत्सना, वंदना टेटे, सरोज केरकेट्टा, एलिस एक्का, जसिंता केरकेट्टा, वासवी कीड़ो, जिन्होंने आदिवासी जो योद्धा महिलाएं हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी किताब उनकी निकली है। शांति खलको है, बिटिया मुर्मू है, सुषमा असुर है, बहुत सारे नाम हैं। सुशीला सामत जो कि पहली आदिवासी कवित्री और संपादक हैं और 1930 के दशक में लिख रही थी जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। सीता रत्नमाला जिनकी आत्मकथा जो अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है, 1968 में उनकी आत्मकथा लिखी गई थी और उससे पहले बहुत सारी कविताएं और नाटक उन्होंने लिखे हैं जो कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी के लोग उससे परिचित नहीं थे। हिंदी में परिचय तब होता है जब अश्विनी कुमार पंकज उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद करते हैं।
1: अकादमिक समझ के साथ साथ इस साहित्य को जमीनी स्तर पर सहेजने की कोशिश भी उतनी ही जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे अगले मेहमान डॉक्टर करमचंद हंसदा बीते कई वर्षों से जनजातीय समुदाय के बीच काम कर रहे हैं।
2: जब हम जनजातीय साहित्य को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह महज शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे समाज के जीने का ढंग है। अक्सर हम बिरसा मुंडा को एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक नए विचार विषेद की शुरुआत की थी जो सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। साहित्यिक दुनिया में अगर हम देखें एलिस एक्का का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो हिंदी की पहली जनजातीय महिला कहानीकार मानी जाती है। वहीं निर्मला पुतुल जब वो आधुनिक समाज से सवाल करती है कि आपकी प्रगति हमारे विनाश की कीमत पर होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तैमसुला आओ जैसे लेखक हैं जिन्होंने नागालैंड की लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। यह लेखक हमें सिखाते हैं कि जनजातीय समाज में कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहाँ पर समुदाय ही नायक है। हमारी कहानियों में चींटी से लेकर हाथी तक और पहाड़ से लेकर नदी तक सबका बराबर का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय साहित्य महोत्सवों की बात करते हैं तो हम दरअसल इसी सामूहिक चेतना को बचा रहे होते हैं। यह साहित्य समाज को बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि इन आवाजों को सुनना और पढ़ना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।
3: जनजातीय साहित्य क्रांति की गर्जना, चेतना की पुकार, सशक्तिकरण का शंखनाद और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस शाश्वत संवाद की अभिव्यक्ति है जो सदियों से अटल है।
1: असल में ये वो साहित्य है जहां एलिस एक्का की संवेदनाएं बोलती हैं और निर्मला पुतुल की कविताएं हमें उन इलाकों में ले जाती हैं जहां हमारी आदिम सभ्यता के गीत बस गए हैं। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं प्रांजल।
4: अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे स्वर्गीय के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर एक लघु चर्चा। एक किताब जब किसी के जीवन की कहानी हो तो वो केवल साहित्य नहीं रहती, वो एक धरोहर बन जाती है। उसने कुछ मुझसे कहा, ये शीर्षक ही अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। किसने कहा, क्या कहा और सुनने वाला कौन था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आज इस पुस्तक के सबसे करीबी साक्षियों से बात कर रहे हैं। उनकी बेटियां सीमा सागर और सुजाता सहाय, जिन्होंने विनोद सहगल के संगीत निर्देशन में अपने पिता की इन रचनाओं को सुरों में भी बांधा है। सुनते हैं ये बातचीत। सुजाता जी, आप पहले तो इस किताब के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
5: पापा सब जानते हैं कि वो बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, बहुत नामी, बहुत ज्ञानी, बहुत जाने माने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो लिखते थे। एक दौर था जब वो मुशायरों में जाते थे बाकायदा, लेकिन फिर वो दौर कुछ दिनों बाद नहीं रहा, पर उनका लिखना

0: तरह वो जो लिखते थे वो खुद के लिए लिखते थे, वो किसी को बहुत आसानी से न सुनाते थे ना वो शेयर करते थे। जब उन्हें लगता था कि सामने वाला इस लायक है कि उसको सुनाया जाए तभी वो सुनाते थे। तो डायरियां थी उनकी बहुत सारी जिनमें वो लिखते थे, वो डायरियां खो गई, सामान इधर से उधर हुआ, तो जो भी हमें मिला, हमें कोई राइटिंग पैड, जिस उनको जहाँ जगह मिलती थी वो थोड़ा सा लिख लेते थे, तो जो जो हमें मिलता गया हम उसको इकट्ठा करते गए। परेशानी ये थी कि वो उर्दू में था। एक और परेशानी ये थी कि उन्हें स्ट्रोक हुआ 98 में, तो उसके बाद उनका हाथ हिलता था लिखने में, तो वो आम आदमी जो उर्दू पढ़ लेता था वो नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो जो
1: उसमें कोई जुम्बिश
0: लिखावट
1: सी रही
0: थी
1: होगी।
0: हाँ
1: हाँ
0: उसमें बहुत शेकी था। तो बड़ी किस्मत से हमें एक शायर साहब मिले, तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने किन्हीं के साथ, ये बहुत हाल ही की बात है, अभी शायद पिछले महीने की, उन्होंने उसको हिंदी लिपि में किया। मेरी बहन ने उसको एक किताब का रूप दिया, क्योंकि हम चाहते थे, इतना खूबसूरत वो लिखते हैं, आप भी पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कहाँ जा रहा है ये, तो आपको भी वो सोचने पे मजबूर करता है। तो हम चाहते थे कि ये जो भी उन्होंने लिखा है वो दुनिया तक।
1: सीमा जी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपको कुछ पुराने लिखे हुए उनके कुछ मजमून मिले जिनको आपने सोचा कि आपको ये को पहले तो आपको लिप्यांतरण ही कराना पड़ा इसका, कि वो उर्दू में
0: जी
1: थी, फिर आपको इसे देवनागरी में करना था,
0: जी
1: अच्छी खासी मशक्कत का काम था। तो सीमा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जब आपके हाथ लगा, आपके पिताजी होते तो क्या चाहते इसे पब्लिश करना या नहीं?
2: पापा शायद ना चाहते, क्योंकि वो बहुत संकोच करते थे, जैसे सुजाता ने बताया कि अपनी शायरी भी वो बहुत गिने चुने लोगों को सुनाते थे। लेकिन मुझे एज अ डॉटर, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको दुनिया को, दुनिया के साथ ये शेयर करनी चाहिए
1: बिल्कुल।
2: इनकी शायरी, और इरादा हमारा बिल्कुल पक्का था, तो ये तो हमको काम करना ही था, और ये बहुत खूबसूरती से ये काम हुआ है।
1: और लगे तो ये सवाल भी पूछते चले, जैसे अभी हमें मौका मिला था कि
2: जी
1: कुछ दिनों पहले आपने जो एक आयोजन किया जहां आपने इनमें से कुछ चुनी हुई गजलों को, नज्मों को आपने संगीत में ढाला है और
2: बिल्कुल
1: आपने गाया, आप दोनों बहनों ने उसमें स्वर दिए हैं
2: जी
1: अपने,
2: बिल्कुल
1: और साथ में विनोद सहगल जी का भी साथ
2: जी
1: आपको
2: जी
1: मिला। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको क्यों लगा कि ये संगीत में इसे ढाला जाना चाहिए, क्या इसके पीछे मोटिवेशन रहा?
2: जी बिल्कुल, हम दोनों को ये लगा कि इसे संगीत में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत बहुत लोगों तक पहुंचता है। सब लोग शायद पोइट्री शायरी को ना पढ़ना चाहें, और लेकिन संगीत तो हर कोई सुनता है, और लगा कि इसको अगर हम संगीत में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। इसमें जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है विनोद सहगल जी, जो अचानक ही एक प्रोग्राम के दौरान लखनऊ में मेरे फादर को मिले, और क्योंकि वो अंबाला में रहते हैं, मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप जा रहे हैं लखनऊ, तो आप उनको, मेरे फादर को ज़रूर मिलिएगा, आपको अच्छा लगेगा उन्हें मिलके। तो वो, उन्होंने वक्त निकाला, वो घर गए, उनसे मिले, और बातचीत के दौरान ही उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये पोइट्री ऐसी है, इतने खूबसूरती से मीटर में सेट है, तो इसको मैं, इसमें मैं म्यूज़िक में इसको कंपोज कर सकता हूँ, वो ख्याल उनको आया। और बाद में जब वो वापस लौटे अम्बाला, तो उन्होंने ऐसे बात करा, इसका प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, जो आप भाषा यूज़ करते हैं और किस तरह से आप उस उन शब्दों को कहते हैं, हम, मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई गलत वर्ड यूज़ करती थी, मेरे फादर मुझे इमिजिएटली टोकते थे कि तुम ये गलत कह रही हो, और फिर मैं ध्यान से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लफ्ज कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी। दैट वॉज माई बैरोमी, आई लर्न लैंग्वेज, आई लर्न डिक्शन
0: कल्चर।
2: फ्रॉम कल्चर। सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। जो युवा पीढ़ी है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाएं और बाखूबी ले जाएं, ये बहुत जरूरी बात है।
0: बस एक आखिरी बात,
1: बिल्कुल
0: आपने पूछा कि पापा, क्या पापा चाहते कि ये किताब छपे,
1: हाँ।
0: तो मैं कहती हूँ शायद वो मना
1: अच्छा
0: करते, ऊपर से कहते नहीं, ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो बहुत
2: दिल ही दिल बहुत

0: होते कि ये
1: खुश
0: छप गई
1: होते।
0: है,
1: नहीं
0: बहुत खुश।
1: हाँ, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज्म या गज़ल कुछ उसकी कुछ पंक्तियाँ आप हमें पहले सुझाता जी।
0: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है वो पहली बारिश, जब जब आई बरखा रुत की पहली बारिश, भीगी भीगी बोराई सी चले हवाएं, चेहरे को छूकर निकले गीले गीले पोरों से पलकें सहलाएं, बरखा भीगी सड़क लगे जब खाली खाली, तभी अचानक एक कोने में हंसते गाते धूम मचाते, सावन की पहली बूंदों का शगुन मनाते आ जाएं अपने साईं जी, लंबी पलके प्यारी आंखें सावन चेहरा, चेहरे पर झूमे लहराए सावन, भीगी लंबी काली घट अलबेली हाथ में चिमटा, ताल से ताल मिलाएं। इसको पढ़ के मैंने सोचा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जब बारिश आती है तो हम निकलते बाहर नहाते हैं खेलते हैं कूदते, ये साईं जी कौन है?
1: कौन है
0: मुझे लगा ये किसके बारे
1: क्योंकि
0: में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद साईं
1: साई
0: जी
1: जी।
0: के बारे में
1: हाँ
0: बात कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जब बारिश होती थी तो एक उनको कहते थे मलंग, वो आते थे और उनका अटायर ये होती थी, लंबे बाल हाथ में चिमटा, यहाँ रस्सियाँ
1: हाँ
0: कमर में रस्सियाँ, और वो नाचते गाते थे बारिश में, जैसे वो बारिश का ऐलान करने आते थे। तो
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: इतनी
1: है।
0: खूबसूरत ये बात लगी, और जो है नहीं अब ना।
2: जिस पर ये किताब का शीर्षक भी दिया गया है, उसने कुछ मुझसे कहा।
1: बिल्कुल सीमा जी स्वागत है।
2: उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे,
1: क्या बात है।
2: नूर ही नूर फजा हो जैसे, फिर किसी लब पे दुआ हो जैसे, आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, कोई पैबंद लगा हो जैसे, अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे,
1: वाह
2: दूर जाते हुए कदमों के निशा, दूर जाते हुए कदमों के निशा, आके वो लौट गया हो जैसे,
1: क्या हुआ।
2: रात ने चौंक के देखा किसको, रात ने चौंक के किस देखा किसको, एक शोला सा उठा हो जैसे, ओस के कांपते मोती थामे, ओस के कांपते मोती थामे, बर्फ ही
1: बर्फी
2: दस्ते दुआ हो जैसे,
1: क्या बात है।
2: वो ही मानूस
0: पुराना
2: पुराना बरगद,
0: बरगद
2: वो ही मानूस पुराना बरगद, कोई
0: कोई
2: कुछ
0: कुछ
2: सोच
1: सोच
2: रहा हो
1: रहा हो
2: जैसे।
1: जैसे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका। आप यहाँ आए, आपने हमें हमारे सुनने वालों को कम से कम के नैयर साहब से कुछ तारुफ तो कराया जो नहीं
0: जी
1: जानते थे उन्हें, और जो हम जो नाम से उन्हें जानते थे उनसे थोड़ा और मिलवाया। बहुत शुक्रिया आप सबका
0: आपका
1: इन्होंने
0: बहुत
1: किया। आपका
0: शुक्रिया
1: भी
0: कि
1: बहुत।
0: हम
3: उसने कुछ मुझसे कहा, नैयर साहब की खुद की आवाज जिसने उनसे जीवन भर संवाद किया, और अब वो संवाद इस किताब के पन्नों में उतर आया है, सबके लिए हमेशा के लिए। साहित्य जीवित रहे, भाषाएं जीवित रहें, और 90 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ साहित्य भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में हम सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगल वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक विशिष्ट संगीत परंपरा में जन्मी ये बहनें सुप्रसिद्ध वायलिन वादक विद्वान A.V. वेंकट नारायण की पौत्रियां हैं, जो संगीत कलानिधि मैसूर टी चौड़ैया के शिष्य थे। इस समृद्ध विरासत ने इनके लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु निरंतर साधना और उत्कृष्टता की अनवरत खोज ने इन्हें आज के सफल कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गान कला भूषण H.K. नरसिम्हा मूर्ति तथा विदुषी H.N. राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन में और विदुषी पुष्पा श्रीनिवासन, श्री T.K. श्रीनिवासन तथा विख्यात वायलिन वादक विद्वान H.N. भास्कर के सानिध्य में इन्होंने ऐसी शैली विकसित की है जिसमें गहनता और गतिशीलता का सुंदर समन्वय है। आपका संगीत एक अनुभूति है जहां भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम होता है। वायलिन पर आपकी सशक्त पकड़ आपकी प्रस्तुति को एक विशिष्ट आयाम देती है, जिससे आपका संगीत अत्यंत भावपूर्ण और आकर्षक बन जाता है। अपनी कला के माध्यम से ये बहनें ऐसा संगीत अनुभव सृजित करती हैं जो श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाता है। अपनी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित सिंधु और स्मिता आकाशवाणी बेंगलुरु की ए ग्रेड कलाकार हैं और उन्होंने गायन तथा वायलिन दोनों ही विधाओं में लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कला को मद्रास म्यूजिक अकादमी, अनन्या युवा पुरस्कार, युवा पुरंदर पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित M.S. सुबुलक्ष्मी फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु और स्मिता केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा की संवाहक हैं, जो कर्नाटक संगीत की अमर धरोहर को गरिमा, नवोन्मेष और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाई सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता। Born into a distinguished musical lineage, the sisters are the granddaughters of the legendary violinist Vidwan A.V. Venkata Narayana, a direct disciple of Sangeetha Kalanidhi Mysore T. Chaudhaya. This rich inheritance laid a strong foundation, but it is their relentless pursuit of perfection that has shaped them into the accomplished artists they are today. Under the guidance of eminent gurus, like Gana Kalabhushana, Vidwan H.K. Narasimha Murthy and Vidushi H.N. Rajalakshmi, along with mentorship from Vidushi Pushpa Srinivasan, Sri T.K. Srinivasan and Vidwan H.N. Bhaskar, Sindhu and Smita have honed a style that seamlessly blends depth with dynamism. Their music is a journey where soulful bhava meets technical finesse. Their command over the violin adds a rare dimension, making their performances both immersive and distinctive. The sisters create an experience that resonates deeply with audiences. Recognized for their excellence, Sindhu and Smita are A-grade artists of Akashvani Bengaluru and have consistently earned top honors in both vocal and violin disciplines. Their artistry has been celebrated with prestigious awards including accolades from the Madras Music Academy, the Ananya Yuva Puraskara, Yuva Purandara Award and the distinguished M.S. Subbalakshmi Fellowship. Sindhu and Smita are torchbearers of a legacy, carrying forward the timeless beauty of Carnatic music with grace, innovation and unwavering dedication.
0: आज के इस प्रसारण में आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं B.S. प्रशांत, घटम पर G. ओंकार राव।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट दे आर अकॉम्पनीड ऑन मृदंगम बाय B.S. प्रशांत, घटम बाय G. ओंकार राव।
0: सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का आरंभ पचनम सुब्रमण्या अय्यर की रचना इरना पाई के साथ कर रही हैं। यह राग तोड़ी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता बिगिन द वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद एरनपाई, अ कॉम्पोजिशन ऑफ

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग देयर कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदिताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक You are listening to Violin Duet Recital.

0: अब सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam presented on Mridangam by B. S. Prashant and on Ghatam by G. Omkar Rao.
0: Sindhu Suchetan और H. M. Smita अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: Sindhu Suchetan and H. M. Smita will conclude their violin duet recital with Tilana in Raag Desh, a composition of विद्वान लालगुड़ी जयरामन।

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर B.S. प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव।
1: With that, we conclude violin duet recital by Sindhu Suchetan and H.M. Smita in the National Program of Music. They were accompanied on mridangam by B.S. Prashant and on ghatam by G. Omkar Rao.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो

0: बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में, जी हाँ, जो कि आपकी फरमाइश से जुड़ा रहता है कार्यक्रम, उसमें मैं हूँ आज आपके साथ चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त 11:10 हो चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसकी रिक्वेस्ट हमें भेजी है शोभापुर गांव से, मेरठ कैंट से हैं ये दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया और दर्शन भाई।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना और ये फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली होगी। राजकुमार जी ने डायरेक्ट करी, राज कपूर ने डायरेक्ट करी इस फिल्म को। काफ़ी लोगों ने पसंद किया और खूबसूरत अदाकारा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। संगीत दिया इस फिल्म के गीतों को रविंद्र जैन ने और

जी हाँ श्रोताओ, ये तो रही रिक्वेस्ट भाई राम तेरी गंगा मैली से, अभी आपने सुनी। लेकिन चलते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ। फिल्म कंगन से सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता और पेंटर बाबू। और बहुत सारे हमारे पास लिसनर्स हैं जो अपने रिक्वेस्ट के साथ हैं। सारे गीत तो पॉसिबल नहीं है हम प्ले कर सके, लेकिन पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी के गीतों को लें। टीडी मल्होत्रा कार्यक्रम से जुड़ गए हैं कल्पना झा, और बहुत सारे नए लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल इस रिक्वेस्ट को, इस फरमाइश को सुनते हैं।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और श्रोताओं वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि 11:20 हो चुके हैं और ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साथ में उषा खन्ना और ये फिल्म रही कंगन। इस गीत को संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। उम्मीद करते हैं इन गीतों को आप पसंद कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएँ लिखना ना भेजें, हमें इंतज़ार रहेगा। चलते हैं अगले गीत की तरफ और ये गीत की रिक्वेस्ट हमें भेजी है आशीष कुमार ने और ये फिल्म कालीचरण से गीत सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। और ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वो आई है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी बरेली उत्तर प्रदेश से। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खन्ना, कैलाश पूरे परिवार के साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत आपने सुना कालीचरण फिल्म से, और आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मैं हूँ आपके साथ चेतना, और समय की जो सुइयां है ना, बहुत तेज़ी से दौड़ रही हैं कि भाई जल्दी जल्दी आप सभी के नाम ले लिए जाए और रिक्वेस्ट भी आपको सुना दी जाए। तो अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं। सुशांत प्रिया झा, ये हमारे नए लिसनर्स हैं और ये हमें सुन रहे हैं टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। इनके साथ हैं मास्टर निवेश कुमार लड्डू कुमारी, और ये हैं सुशांत प्रिया झा। तलत महमूद की आवाज़ में गीत को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब, आप सभी के लिए गीत है, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो नए नए हमसे जुड़ गए हैं, इसके लिए शुक्रिया। आप कार्यक्रम को सुनते हैं, पसंद करते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से, और अभी आप की सुन रहे हैं तलत महमूद की आवाज़ में, और ये फिल्म है जहानारा। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में जितने भी आप गीत सुन रहे हैं आप उन्हें पसंद कर रहे होंगे। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। सुदर्शन शाह जी ने हमें रिक्वेस्ट भेजी लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये हमें नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। राजेंद्र सिंह शाह, मंगला, नीति, प्रखर, सुदर्शन, पल्लवी हैं इनके साथ में। फिल्म बरसात से गीत को सुनना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ अनिल वर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए। राजपाल शर्मा ने भी अपना नमस्कार हम तक पहुंचाया है, और सतीश अनेजा जी ने भी अपना नमस्कार हम तक पहुंचा है। बिट्टू गंगनेजा जी, रेनू मल्होत्रा, आर कुमार, शाहजी पोटके, हरजिंदर शिंदे, अहमद फूल वाले जी ने भी अपना नमस्कार आदाब भेजा है। लिख रहे हैं कि हमारे मेल को नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल हम नहीं करेंगे। फिल्म वक्त का गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन जनाब आपने वक्त फिल्म का गीत सुनने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कौन सा गीत है ये भी भेजते तो थोड़ा आसान हो जाता हमारा काम। दिलावर खान जी भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ साथ वेडल का मीठा भी जुड़े हुए हैं, और स्वर्ण साथ है आरजू गगनदीप, डॉक्टर रमेश कुमार, आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। लेकिन सभी गीत हम यही कहेंगे बार बार कि प्ले नहीं हो पाते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर शामिल करें।

जी हाँ दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये हम में से कोई नहीं जानता है, तो जीना तो सिर्फ इसी पल में चाहिए, जितना भी जैसे भी इसी पल में खुश रहना चाहिए। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:36 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत से। मैं हूँ आपके साथ जीतना।

चलते हैं श्रोताओं आपके संदेशों की ओर। हमारे पर रियासत हुसैन जी ने अपना आदाब भेजा है जसपुर उत्तराखंड से। रियासत हुसैन सिद्दीकी जी, नासिर शेख जी ने भी अपना आदाब नमस्कार हम तक पहुंचाया है। फागुराम यादव जी ने भी एक रिक्वेस्ट के साथ अपने संदेश को हम तक पहुंचाया है। दिलावर खां जी ने भी वक्त फिल्म से गीत की रिक्वेस्ट करी है। आकांक्षा यादव, अंकित संतोष और इन्हीं के साथ साथ नंदू, ये सिटी जबलपुर से हमें सुन रहे हैं और एक गीत की भी इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। बोधराज कोरवाल जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, बहुत सारे संदेश एक साथ भेजते हैं उत्तम नगर से। मोहम्मद कुमार जी ने भी अपना आदाब हम तक पहुंचाया है गन्नौर से। और इसी के साथ साथ हमारे सब मंटू शर्मा जी ने भी अपना संदेश पहुंचाया, लिखते हैं कि चेतना जी आज आपसे फिर मुलाकात हो गई, बिल्कुल आपने याद किया।

हम हाजिर हो गए आप सभी के लिए लेकर आपकी पसंद के कुछ कुछ गीत जो हम प्ले करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो रिक्वेस्ट जो आप सोचते हैं कि नहीं पूरी हो पाती है, लेकिन उसके लिए आप खफा मत होइए, हम अगले कार्यक्रम में आपकी रिक्वेस्ट आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि जितने भी गीत प्ले होते हैं कहीं ना कहीं आपकी पसंद उनमें भी होती ज़रूर है, लेकिन कोई एक गीत खास होता है जिसे हम सुनना चाहते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपके गीत आप तक पहुँचाएँ। ताज मोहम्मद जी हमसे जुड़े हुए हैं, इसी के साथ हाजी मजहर जी ने भी अपनी एक रिक्वेस्ट के साथ अपना संदेश भेजा है। छोटे अंसारी जी ने भी नमस्कार हमें पहुंचाया है संभल से। दिलावर खां जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, अनिल मोहन जी ने भी अपना संदेश पहाड़गंज से हम तक पहुंचाया, ये हरियाणा में है। दिलावर खां जी कार्यक्रम से जुड़े हैं। अहमद फूलवाले जी ने भी नमस्कार भेजा। राजेश वर्मा जी रेडियो श्रोता संघ से हमें सुनते हैं लगातार, शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, जुड़े रहने के लिए।

किशोर कुमार की आवाज़ में भी आपने गीत सुना। फिल्म थी मेरे जीवन साथी और इसी गीत को लिखा मशरू सुल्तानपुरी ने और संगीत या राहुल देव परमर ने।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम है आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त चेतना, और रिक्वेस्ट में फरमाइशों में चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। बोधराज कोरवाल जी ने हमें अपनी जो रिक्वेस्ट भेजी उत्तम नगर से भेजी है, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म तुम्हारे लिए से इस गीत को।

श्रोताओं, वक्त घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:48 हो चुके हैं और चलते हैं आपके संदेशों की तरफ। अनिल मोहन जी ने अपना संदेश भेजा है हम तक। लिख रहे हैं कि पहाड़गंज से हम बोल रहे हैं। ओ, तो जनाब हमने करेक्ट कर लिया है, पहाड़गंज से अनिल मोहन जी थे और ये मैसेज उन्होंने दिल्ली से भेजा है। और इसी के साथ साथ नवी हसन जी ने अपना आदाब हम तक पहुँचा है, लिख रहे हैं कि आपने मेरा मेल शामिल नहीं किया है तो क्या आप नाराज़ हैं हमसे? तो बिल्कुल नहीं नबी हसन जी, हम बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं, आपका मेल हमने शामिल कर नहीं लिया है। मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल, अनब, रसीद और ये सब चीज़ें हैं ये, और बहुत सारे संदेश हैं जो छूट ना जाए। सतीश अनेजा जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया, लिखते हैं कि आज का फिल्म संगीत दिलकश रहा, आज आपकी पेशकश भी अच्छी रही, उसके लिए आभार, शुक्रिया। बहुत सारी बातें होती हैं जो आप सभी हम तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ जो हैं, हमारी जो दोस्त हैं रश्मि, वो भी जुड़ी हुई हैं। शायद उन्हें पहले नहीं पता था आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, लेकिन आपकी मौजूदगी हमें बता देती है कि कहीं ना कहीं आप प्रोग्राम को डेली सुनती हैं और बहुत ही ध्यान से भी प्रोग्राम को सुनती हैं। दिलावर खान जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया। नासिर शेख जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ स्वर्ण सिंह जी ने भी लोहागढ़ से हमें फिर मैसेज भेजा है अपना। शुक्रिया आप सभी का।

जी हाँ श्रोताओं, वक्त स्टूडियो की खड़ी के अनुसार रात्रि के 11:54 हो चुके हैं और चलते चलते हम ले लेते हैं आप सभी के संदेश। उषा मोहन जी पीटीआई संसद मार्ग से इस वक्त कार्यक्रम को सुन रही हैं और लिख रहे हैं कि बिल्कुल आपके करीब से हम मैसेज भेज रहे हैं। और चेतना जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हमें पसंद आ रहा है, शानदार, शुक्रिया। इसी के साथ साथ स्वर्ण सिंह जी ने भी हमें संदेश पहुँचाया। दारा सिंह जी चौटाला हरियाणा से हमें सुन रहे हैं। संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, अनिल मोहन जी ने भी प्रस्तुति को पसंद किया है। इसी के साथ प्रकाश वर्मा जी ने भी किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल कीजिए ज़रूर। छत्तीसगढ़ पलारी से हमें सुन रहे हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। सतीश अनेजा जी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम को उन्होंने पसंद किया। और फागुराम यादव जी, दिलावर खां और नवी हसन जी, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो इस वक्त भी संदेश भेज रहे हैं, लेकिन समय जो है ना वो हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम और संदेशों को लें और मैसेजेस को लें। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो इस कार्यक्रम में ज़रूर पूरी हुई होगी। नहीं भी पूरी हुई आपकी फरमाइश, आपकी गीत, तो अगले कार्यक्रम ज़रूर लेंगे हम। फिलहाल मुझे ये कार्यक्रम से जाना होगा, लेकिन आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 12 बजने को हैं। इन मीटरों पे अब हमारे प्रसारण समाप्त होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:59 और पूरे 50 सेकंड हुए हैं। ठीक 12 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर

0: 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। 24 पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम बट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। मणिपुर में इम्फाल उखरुल मार्ग पर कुछ अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों ने राहगीरों पर गोलीबारी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सामान्य यातायात बाधित हो गया। ये घटना उखरुल जिले के लिल्टन पुलिस थाना के अंतर्गत न्यू हेवन और टीएम कसोम क्षेत्र में हुई। घटना का समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Pargana district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में आज हमने उस आवाज़ को चुना है जिसकी आवाज़ में एक साधना है, जिसके सुरों की सरगम

बहुत सुरीली है, जिसने विभिन्न भाषाओं में हिंदी, मराठी, तमिल सहित कई भाषाओं में 15,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं।

उम्मीद करता हूँ आप पहचान जाएंगे और बात कर रहे हैं फीमेल सिंगर की, तो सुनते हैं उनकी आवाज़ में एक बेहद प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, सुरों का सफ़रनामा में हम बात कर रहे हैं आज साधना सरगम की। मूल नाम साधना पुरुषोत्तम घाणेकर, भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख और बहुमुखी पार्श्व गायिका, जिन्होंने 1980 और 90 के दशक में हिंदी, मराठी और तमिल सहित कई भाषाओं में 15,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। पहला नशा तो सबको याद है, और सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई जैसे गीतों के लिए मशहूर उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई राज्य फिल्म पुरस्कार को जीता, उनसे उन्हें सम्मानित किया गया। साधना सरगम ने 4 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत सीखा और अपनी बॉलीवुड की दुनिया में पहचान बनाई। उनका जन्म 7 मार्च 1969, कुछ स्रोतों से 7 जुलाई 1962 या 74 है, को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दाभोल में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी मां नीला घाणेकर एक शास्त्रीय गायिका और संगीत शिक्षिका रहीं। शिक्षा और संगीत की शुरुआत साधना ने महज 4 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, और सवाई गंधर्व संगीत समारोह में उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी प्रसिद्धि शास्त्रीय गायक पंडित जसराज से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। 6 साल की उम्र में उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसिद्ध गीत एक अनेक और एकता गाया। इस गीत का संगीत वसंत देसाई ने तैयार किया था। सरगम ने मुंबई के गोरेगांव स्थित AB गोरेगांवकर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की। 10 साल की उम्र में उन्हें केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्हें 7 साल तक पंडित जसराज के मार्गदर्शन में अध्ययन करने का अवसर मिला। उन्होंने बचपन से ही वसंत देसाई के साथ नाट्य प्रस्तुतियों, वृत्त चित्रों और बच्चों की फिल्मों में काम किया है। देसाई ने सरगम की माँ से कहा था कि वे हल्के संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में निपुण हैं और दोनों का अभ्यास जारी रखना चाहिए। देसाई ने ही उन्हें जसराज से शिक्षा प्राप्त करने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों, साधना सरगम के बारे में इतनी सारी बातें, इतना कुछ मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, तो लगता है कि बात ही करता रहूँगा तो फिर गीत संगीत कहीं पीछे छूट जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत फिल्म अर्थ से उनकी आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम में साधना और सरगम हो, उनका सुर तो सुरीला होगा ही, उनका संगीत तो मधुर होगा ही, उनकी आवाज़ तो दिलकश होगी ही। साधना और सरगम संगीत की दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा तालमेल, नाम के साथ और संगीत तो लाजवाब। हम बात कर रहे हैं साधना सरगम की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई आने के बाद साधना सरगम ने कई टेलीविज़न शो में काम किया, जिनमें जी टीवी का सुर भी शामिल था। उन्होंने फिल्म के लिए तेरी आँखें गाना भी गाया। इसी दौरान संगीतकार

आनंद मिलन ने सरगम से अपने गीत सुनहरे दिन के लिए एक धुन गाने का अनुरोध किया और यह गीत सफल रहा। साधना ने अपने पार्श्व अभिनय की शुरुआत गुजराती फिल्म कंकु पगली से की। फिल्म रुस्तम का सोलो ट्रैक दूर नहीं रहना उनका पहला हिंदी सिंगल था। हालांकि सरगम की पहली फिल्म सुभाष घई की विधाता थी जो 1982 में आई, जिसमें उन्होंने पद्मनी कोला पुरे के लिए साथ सहेली गाना गाया था। उन्हें 1981 में आई फिल्म यादें और 1982 में आई फिल्म नूम पारिस में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है। साधना ने तकदीर, पिघलता आसमान, राज तिलक और करिश्मा कुदरत का जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया है, जहां वह एकमात्र महिला गायिका थी। फिर भी हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में, जब तक इस गीत के आने के बाद जनता के वे ध्यान में आई, जनता की पहचान में आई। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, उनका सुर बहुत सुरीला है, उनका नाम साधना सरगम है और उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में, गीत संगीत के क्षेत्र में अपने नाम के साथ साथ अपने नाम की पहचान को वाजिब ठहराया है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, आइए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं साधना सरगम की, और मुझे उम्मीद है कि आप जो सोच रहे हैं शायद वही गाना मैं आपके लिए चलाऊं या इस कार्यक्रम में आपको सुनवाऊं। बात कर रहे हैं साधना सरगम की, और जिनके नाम में सरगम है, जिनके नाम में साधना है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि उनके स्वर में अपने आप संगीत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा, उसके स्वर सटीक होंगे और वो दिलकश होगा, हर किसी को प्यारा लगेगा, हर किसी को सुनने में पसंद आएगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1981 में आई फिल्म यादें और 1982 में आई फिल्म नूम पारिकर में अपने अभिनय के लिए उन्हें जाना जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साधना सरगम ने तकदीर, पिघलता आसमान, राजतिलक और करिश्मा कुदरत का जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग खुद गर्ज के बाद आई, और सरगम ने अनु मलिक, आर डी बर्मन, आनंद मिलन जैसे संगीतकारों के लिए गाना शुरू किया, और कभी कभार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए भी उन्होंने अपने स्वर दिए। और सबको याद है महाभारत टीवी सीरियल बी आर चोपड़ा की पेशकश, हिट टेलीविज़न श्रृंखला महाभारत के विभिन्न गाने गाकर साधना सरगम ने अपना योगदान दिया। इतना ही नहीं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और सत्य साई बाबा जैसे आध्यात्मिक संस्थानों के लिए वे एकमात्र पार्श्व गायिका हैं जो सक्रिय रूप से भक्ति और ध्यान के गीत गाती हैं। उनके 2015 के भजन साई राम साई श्याम साई भगवान को यूट्यूब पर 1 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है, जो भारत में बेहद लोकप्रिय है। साधना ने कई भाषाओं, विशेष रूप से बंगाली, गुजराती और हिंदी में कई भक्ति एल्बम रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने 2002 में एक दक्षिण भारतीय गीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और ऐसा करने वाली पहली गैर दक्षिण भारतीय गायिका बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इतना ही नहीं, वे एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 फिल्मफेयर साउथ पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर दक्षिण भारतीय गायिका रही हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा कहें कि कीर्तिमान, ऐसे ही नाम के साथ जुड़ता है संगीत में, जिसमें साधना और सरगम दोनों शामिल हैं।

अभी आपने ये गीत सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म जुर्म से, जब कोई बात बिगड़ जाए। उन एक फिल्म आई थी मोहरा, जिसमें ना कजरी की धार, विश्वात्मा, सात समंदर पार, जुर्म, जब कोई बात बिगड़ जाए, सुबह से लेकर शाम तक निशांत, चुपके से साथिया, दर्द करारा, साई राम साई श्याम, भगवान, बिन साजन झूला झूलूं, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, चंदा रे चंदा रे, हमको मालूम है माही वे क्या मौसम आया है, सलामे इश्क अंगना में बाबा, मेरी नींद मेरा चैन, तेरे नाम लेने की तुझसे क्या चोरी है, आइए आपका इंतज़ार था, सुनो मियाँ सुनो, एतबार नहीं करना, ऐसे मशहूर गीत साधना सरगम ने गाए हैं। साधना सरगम को उनकी मधुर आवाज़ और शास्त्रीय संगीत की समझ के लिए जाना जाता है, और जिन्होंने 90 के दशक में सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक होने का अपना मुकाम हासिल किया। उनकी आवाज़ इतनी दिलकश है, इतनी कहें कि पसंद आने वाली आवाज़ है, आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। लता मंगेशकर, आशा भोसले, चित्रा, सुनीता।

चौहान, रहमान, इलिया राजा, अमिताभ बच्चन, शाशा तिरुपति और अन्य कलाकारों को साधना सरगम की आवाज़ बेहद पसंद है।

दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मन करता है कि ख़त्म क्यों हो जाते हैं, मतलब उनका समय पूरा क्यों हो जाता है, वो चलते क्यों नहीं रहते। ऐसे ही गीत बहुत सारे हैं, जैसा गीत आपने अभी सुना, साधना सरगम ने ऐसे बहुत सारे गीत गाए हैं और उन्हें गीत संगीत के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुरस्कारों में, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 5 बार मिला, गुजरात राज्य फिल्म पुरस्कार 4 बार और 1 बार ओडिशा राज्य फिल्म पुरस्कार 2002 में।

रिहाई के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए मिला। साथ ही उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

साधना सरगम के पास गानों का विशाल संग्रह है जिसमें अकेले हिंदी गाने ही 2000 से अधिक हैं। इसके बावजूद उन्हें केवल 2 बार फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया। चलो ये तो कुछ अलग बात है, लेकिन उनकी प्रतिभा कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। संयोग से कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेली सगु के साथ उन्होंने काम किया, जिनके साथ उन्होंने लोकप्रिय गीत कभी कभी मेरे दिल के रीमेक और समटाइम्स को लिखा था। 2013 में सरगम ने विक्रम बेताल नामक एक एनिमेटेड फिल्म में शांता के किरदार को अपनी आवाज़ दी थी। यह एनिमेशन में उनका पहला कदम था। साथ ही उन्होंने स्टाइल एक्सप्रेस नाम से एक फैशन ब्लॉग भी शुरू किया है। वर्तमान में वे 57 वर्ष की हैं और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं।

हम उनके कहें कि इस जितना भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अर्जित किया है उनको उसकी शुभकामनाएं देते हैं और दर्शकों का प्यार उनके साथ बेशुमार हमेशा बना रहे, दिनों दिन बढ़ता रहे, उनके गीत सुनने को मिलते रहें, उनकी मधुर आवाज़ दुनिया में चारों ओर गूंजती रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। कार्यक्रम के इस आखिरी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा समाप्त होता है। अपने दोस्त मोहन को आप दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का ख्याल रखिए, ज़िंदगी में प्यार बनाए रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी और अपने दोस्त मोहन को याद रखिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव्स न्यूज़ 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि का 1 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख

को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान

0: विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर सहित कई राज्यों में कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and the first phase

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। 1:10 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम।

0: तुम अचानक उजाला बनकर आ गई। मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
1: अनिल, वो देखो, सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है। फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं?

अभी आपने गीत सुना फिल्म अर्पण से, 1982 में आई फिल्म, स्वर लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। गीत सुनहरे कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म रिफ्यूजी।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर

पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक को फिल्म रिफ्यूजी में। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में अगला गीत फिल्म तुम बिन से।

आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। अभी आपने गीत सुना कोई फरियाद जगजीत सिंह के स्वर में फिल्म तुम बिन से, और आइए आप सुनते हैं जीत फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में अगला गीत।

और ये गीत चुना है हमने फिल्म आखिरी बाजी से, अमित कुमार साधना सरगम की आवाज़ में। चोरी चोरी आप मेरे दिल के मेहमान हो गए।

श्रोताओं माफ़ी कीजिएगा कि जो शब्द बोल मैंने आपके बताए थे कि चोरी चोरी आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, वो गीत नहीं, गीत जो आप सुन रहे हैं ये गीत है फिल्म आखिरी बाजी का, अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज़ में। अपनी भूल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये आखिरी गीत फिल्म हीरो हिंदुस्तानी से दीवाना दीवाना मैं तेरा, शब्द के बोल कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा और मुझे आपसे लेनी होगी अनुमति। इतना कहना चाहूँगा कि अपना अपनों का ख्याल रखिए, ज़िंदगी में प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्त मोहन को याद रखिए, साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे गीत सुनहरे कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया।

0: क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, बिहार, पंजाब में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 114 Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The commission said these measures are aimed to ensure at ensuring

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 और ठीक 35 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, जिसमें आप सुनेंगे बेहतरीन फिल्म संगीत, फिल्मी गीत लगातार एक के बाद एक बिना रुकावट के।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है। इस गीत के साथ गीत बहार कार्यक्रम संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि ये फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर

0: 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति, जिसमें भारत के लिए 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 मई को इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May 2026 across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May 2026. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April 2026. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोटू वाद्यम उषा विजय कुमार, कलाकार हैं, और रागम है चारू केसी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आपने सुना गो टू वैद्यम। उषा विजय कुमार कलाकार थी और रागम था चारू केसी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 मई 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं कार्यक्रमों की

0: संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 5 बजे होंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे। 5:10 पर कार्यक्रम आओ योग करें में आज अश्वथासन और तितली क्रिया के बारे में जानेंगे। 5:20 पर हिंदी देशभक्ति गीत होंगे और 5:30 पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कार्यक्रम स्वर रंजनी में आप सुनेंगे बिमल मुखर्जी का सितार वादन राग भतियार में। 6:10 पर कार्यक्रम वंदना होगा और 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ आप सुनेंगे 6:45 पर और 6:55 पर होंगे संस्कृत में समाचार। में संगीतिका में आज आप सुनेंगे भजन बाय आश्वर्या आनंद का। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम होगा 7:30 पर और साहित्यिकी होगा 8:45 पर। हमारे अतिथि डॉक्टर दीविक रमेश की ये भेंट वार्ता और प्रस्तुति होगी, भेंटकर्ता और प्रस्तुति करने होगी काजल सूरी की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि ये फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर से इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों को उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरे की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उससे विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 202 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के

0: नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held tomorrow. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joy Mallya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG for admission to undergraduate medical education will be held today. The examination will begin at 2 p.m. and will conclude by 5 p.m. According to the NEET's information bulletin, last entry to the examination center will be allowed till 1:30 p.m. The NEET UG is being conducted by National Testing Agency since 2019 for admission to the undergraduate medical education with the approval of the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Education. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania on being appointed as full-time members of Niti Aayog. In a social media post, Mr. Modi said their rich experience and deep understanding of various issues will greatly strengthen policy making. He expressed confidence that their contributions will help drive innovation and growth across sectors. The Prime Minister wished them a very productive and impactful tenure ahead. The Government of India has appointed Rohit Jain as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India, according to an official notification released yesterday. Currently serving as Executive Director at the Central Bank, Jain will hold the post for a period of 3 years. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में आइए सुनते हैं बिमल मुखर्जी का सितार वादन राग भतियार में।